0: इथोस इन प्रैक्टिस. और इसके अलावा एडल्ट्स के लिए मैं रेगुलरली टॉक्स करता हूँ. हर महीने एक टॉक सेशन मेरा चलता है विच इज कॉल्ड वॉक द टॉक सीरीज. और इसमें जैसे कोई भी टॉपिक हो जिसमें हमें रुचि हो या फिर किसी में किसी की शंका हो उसको लेके चलते हैं. जैसे डर है या फिर गुस्सा है, एंगर है. अभी हाल फिलहाल में मन की 3 क्वालिटीज, उसको लेके एक टॉक लिया था. तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में जो जीवन में हमें काम आएगा, जो हमसे जीवन साक्षात कर जीवन को अच्छा हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टॉक्स है वो करता हूँ. सो दिस इज माय लाइफ टुडे इन मुंबई.
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा साधुवाद, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, शुक्रिया है आपका सुरेश सर. अभी तक आपने जो कुछ भी बताया ना, मुझे तो उसमें सारा अध्यात्म, सारी स्पिरिचुअलिटी सुनाई दे रही है, आपकी कसम. देखिए ना, आपने म्यूजिक की बात करी, आपने उस यूनिवर्सिटी की बात करी या शायद उस कॉलेज की बात करी जहां पर आप इंडियन सिस्टम्स पढ़ाने के लिए उसको पूरा एस्टैब्लिश किया आपने. फिर आपने बात करी उस संस्था की जहां पर आप संगीत सिखा रहे हैं जो कि शुद्ध स्वर है, बिल्कुल शुद्ध स्वर. अब हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते भी हैं कि म्यूजिक या संगीत अपने आप में ही एक मेडिटेशन है, आध्यात्म है. क्योंकि जब व्यक्ति संगीत से जुड़ जाता है तो फिर वो गलत सोच ही नहीं पाता ना. तो जब गलत नहीं सोच पाता तो आदमी शुद्ध हो गया ना, व्यक्ति शुद्ध हो गया.
0: सही है,
1: वही तो स्पिरिचुअलिटी है. हम उसी के बारे में तो आज बात करने वाले थे. तो आप ही ने मुझे इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए कि मैं उन्हीं के ऊपर आपसे घंटों बात करता रह सकता हूं. बहुत खूब, बहुत खूब. और आपने अभी कहा कि आप कुछ टॉक्स देते हैं इंडियन ईथोस के ऊपर, एम आई राइट सर, है ना?
0: यस यस यस, सही है.
1: उसमें जो आपने 2-3 सब्जेक्ट्स के नाम लिए, मैं पर्सनली आपसे मतलब रादर मैं ये टॉक्स जरूर अटेंड करना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा. क्योंकि अगर मैं इस वक्त पूरी जो हमारे सुनने वाली जनता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर मेरे मन में कोई एक प्रॉब्लम है तो हो सकता है हमारे सुनने वालों के मन में भी हो. तो वो चीज अगर हम यहाँ बात कर लेंगे तो उनके लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी, मेरे लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी.
0: सही बात है, सही बात है, सही बात.
1: चलिए अभी तो हम लोग टच करते हैं अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को. तो जितना आपने बताया सुरेश सर, उसी के हिसाब से, आपके हिसाब से अध्यात्म की परिभाषा क्या है?
0: तो आप इस वाक्य को ही ले लीजिए, अध्यात्म. इसको अगर दो भाग करेंगे, एक तो अध्या और दूसरा आत्मा. जो अध्या उसका मतलब होता है फर्स्ट, आत्मा जो अपना इनर सेल्फ है, जो अपना इनर सेल्फ है, जो अपनी अंतरात्मा है, जिसको अंतरात्मा कहते हैं हिंदी में, साधारण लैंग्वेज में हम कहते हैं अंतरात्मा कहते हैं. तो द इनर सेल्फ, जिसकी वजह से मैं हर चीज अपने जीवन में महसूस कर पाता हूं. यदि वो जीवन का जो इनर सेल्फ, वो जो इनर सेल्फ है अगर नहीं होता तो मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता हूं. मेरे हाथ हैं लेकिन मैं किसी को छू नहीं सकता हूँ. मेरी जीवा है लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ. मेरा नाक है लेकिन मैं कुछ सूंघ नहीं सकता हूँ. मतलब द कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ विच वी आर अलाइव इज माय इनर सेल्फ. ये हुआ आत्मा. और जो अध्या फाउंडेशन फर्स्ट, उसको एक्चुअली कहा जाता है फर्स्ट है, जो फर्स्ट इज ऑलवेज द फाउंडेशन. तो उसके बगैर मैं हूं ही नहीं. तो जिसके बगैर मैं नहीं हूं, मैं रह के भी मैं नहीं हूं, दैट इज अध्यात्म. तो उसका, उसकी जानकारी यदि ना हो तो जीवन जी के क्या लाभ. तो उसका जानना जरूरी है कि मैं क्या हूं, हु एम आई. एक सवाल, सिंपल सा सवाल है, मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है. हम लोग अक्सर ये कहते हैं, अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हो, मैं कहूंगा मैं सुरेश सुब्रमण्यम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये फलाना करता हूं, डिम का, ये मेरा विजिटिंग कार्ड हुआ. लेकिन ये मैं नहीं हूं. मैं इसके अंदर हूं. उसको जानने के लिए अगर मैंने चेष्टा ही नहीं की तो इस जीवन का क्या लाभ. तो दिस इज अध्यात्म मेरे हिसाब से.
1: बहुत बहुत सुंदर सुरेश सर. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेरे मन के ही सारी बातें कह रहे हैं. ऐसा लग रहा है आप सिर्फ मेरे लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी कसम. द वेरी फर्स्ट थिंग, जितना मैं समझा था, जितने भी मैंने लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को सुना, जैसे मीना मैम ऑफकोर्स, संजीवनी जी हैं, बहुत सारे लोगों को सुना मैंने, तो

0: टाइम एंड अगेन अध्यात्म की जो डेफिनेशन निकल निकल के आ रही थी वो यही थी कि अपनी आत्मा का अध्ययन, वी नीड टू यू नो लर्न अबाउट अवर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद बात करें ना. तो वही चीज आपने बहुत खूबसूरती से कुछ अलग शब्दों में हमें बताई, लेकिन मुद्दा यही है कि हम अपने आप को तो पहचाने. सेकंड, बहुत बहुत ही मजेदार बात कही आपको आपने, जिस वजह से मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूं, आई एम हाईली हाईली इंप्रेस्ड. सर, काफी समय पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, द आई फैक्टर, वैन मूडी एक प्रीचर है, उन्होंने ये लिखी थी द आई फैक्टर. मैं इस बुक के टाइटल से अट्रैक्ट हो गया था. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ये आई फैक्टर क्या चीज है. और जाहिर सी बात है आपने जो बात कही ना प्रिसाइसली बिल्कुल वर्ड बाई वर्ड उसमें ये चीज लिखी हुई थी. और इसके बाद मैंने उसको अपनाया. सालों साल गुजर चुके हैं, मैं लोगों को छेड़ने के लिए पूछता भी हूं, लेकिन आज आप में मुझे पहला व्यक्ति मिला है जिसको एक्चुअली उसका मतलब पता है. वो ये कि जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो, तो आप बोलते हो कि आप सुरेश सुब्रमण्यम साहब हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट. मैं किसी से भी पूछता हूं कि आप कौन हो, तो वो कहते हैं मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं आर्मी पर्सनल हूं, मैं पुलिस वाला हूं. मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई साहब ये वो काम है जो आप करते हो. दिस इज आपने इसको बहुत खूबसूरती से कहा कि दैट इज माय विजिटिंग कार्ड. ये वो काम है जो आप करते हो. एक्चुअली आप कौन हो?
1: करेक्ट.
0: तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. वो अपने काम को ही अपना समझ बैठते हैं.
1: सही बात है, सही बात है. लोगों में यही यही एक गलत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है. मिसअंडरस्टैंडिंग है. तो जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा, तो मैं कौन हूं, अभी इसमें दो दो फ्रेजेस के साथ में, इंग्लिश के फ्रेजेस के साथ में आपको इसकी इसका इसका एक, एक कुछ रिलेट कर पाऊंगा मैं. इफ यू से आई थिंक सो आई एम, आई थिंक सो आई एम, अभी इसको रिवर्स कीजिए, आई एम सो आई थिंक.
0: ओके,
1: थिंकिंग इज एन एबिलिटी, मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, मतलब वैसे प्राणी है और उसमें बुद्धि है, तो बुद्धि के हिसाब से वो सोच सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, ये सोच सकता है. लेकिन मैन इस वो है, तो आई एम सो आई थिंक, मैं हूं तभी तो मैं सोच पाता हूं. क्या मैं सोचने की वजह से मैं हूं? अक्सर लोगों में यही धारणा है, ये सोचते हैं. जब भी आप किसी को पूछते हैं कि आप कौन हो, तो ये सोचते हैं कि मैं कौन हूं. अच्छा, मैं सोइंसो का बेटा हूं, अच्छा मैं सोइंसो का भाई हूं, अच्छा मैं सोइंसो काम करता हूं, अच्छा मैं सोइंसो मैंने काम पढ़ाई की है. दे आर ऑल यूर एक्सटेंशंस, दे आर नॉट यू.
0: अमेजिंग, ये बिल्कुल ही एक नई बात आपने बताई. सर देखो दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझ लीजिएगा जो सुब्रमण्यम सार साहब ने बताई है.
1: यू डोंट, आप मुझे आराम से सुरेश जी कहिए, क्योंकि सुब्रमण्यम इज माय फादर्स नेम.
0: ओह ओके, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू योर फादर ऑफ कोर्स सुरेश जी,
1: एब्सोल्युटली.
0: हम सोचते नहीं है कि हम क्या हैं, हम हैं इसलिए हम सोचते हैं. वाह क्या बात कही, बहुत खूब. चलिए सुरेश जी, बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुन के अब मैं वापस आता हूं आपके पास.
1: जरूर जरूर जरूर, मैं भी एंजॉय करूंगा.
0: तो दोस्तों, हम भजन पेश करते हैं जो हमारे ही मेहमान सुरेश सर ने ही गाया.

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। सुरेश जी, जैसे आपने बताया कि आपने दो संस्थाओं का स्थापना की, एक तो वो वाली जिसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें आप इंडियन सिस्टम्स वगैरह को पढ़ाने की आपने बात की, दूसरे आपने बात करी कि शुद्ध संगीत का आपने जो विद्यालय या एकेडमी ओपन की। तो जाहिर से बात, आप शुद्ध संगीत की बात कर रहे हैं, प्योर चीज की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों चीजें ना सुरेश जी आज के जमाने में हुई हैं, टुडेज वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न एरा। जाहिर सी बात है, कोई एक एरा आया था जब एग्रीकल्चर था, फिर कोई एक एरा आया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन था, फिर आज का एरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो मुझे उससे रिलेट करके बताइए सुरेश जी, सही रहेगा ना? मतलब हम लोग बहुत ज्यादा गुडी गुडी और थियोरेटिकल बातें ना करके बिल्कुल प्रैक्टिकल आज के जमाने से जुड़ी हुई बातें करें,
1: बिल्कुल सही बात,
0: ज्यादा रेलिवेंट रहेंगी। कि आज का जमाना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आज का जमाना है यूथ का, वो हमेशा ही होता है। आज का यूथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्लीटली मर्ज्ड है, डिप्ड है। मोरओवर मुझे ऐसा लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज गॉन इनटू देयर डीएनएस। तो आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, शुद्ध स्वर जो आपने बोला ना, वो सब हम आज के यूथ में कैसे इनकॉर्पोरेट करें? देखिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ये कहें कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने तो पेश कर दिया, ले लो, नो, वी नीड टू टेल देम इट इज गुड फॉर यू। हाउ, कैसे करें सुरेश जी?
1: ये अभी आपको जो बताऊंगा ये पूरा मेरे अनुभव से बताऊं।
0: ऑफ कोर्स,
1: जैसे मैंने कहा कि मैं एक कॉलेज में एक कोर्स चलाता हूँ विच इज कॉल्ड इंडियन इथोस इन प्रैक्टिस। और इसके जो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने अटेंड किया है वो सारे फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के हैं, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन के हैं, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन के हैं, या मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है। मतलब समझ लीजिए जो एज ग्रुप है उनका 18 से लेके 20 21 तक होगा, उससे ज्यादा नहीं। अभी आज के तारीख में अगर हम यूथ की बात करें तो बाय द एज ऑफ 16 मोस्ट यंगस्टर्स हैव अ विंडो टू एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हो उसका सबसे बड़ा क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट है वो मोबाइल फोन।
0: करेक्ट,
1: क्योंकि वो उसके बगैर कोई भी यंगस्टर तो जीता नहीं है, क्योंकि दैट इज लाइक देयर विंडो टू द लाइफ, टू देयर फ्रेंड्स, टू देयर फैमिली, टू देयर म्यूजिक, टू देयर नॉलेज, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट दे कनेक्ट विद इज थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट। आप राह चलते यदि देखोगे ज्यादातर आपको यंगस्टर्स ईयरफोन पहने हुए मोबाइल को नीचे देखते हुए रस्ते में बाई चांस नीचे कोई चीज पैरों के नीचे आ गया तो भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका पूरा अटेंशन मोबाइल में रहता है। और मैं जब वॉकिंग करता हूं तभी भी देखता हूं सवेरे मेरे लोकेलिटी में कि वो दे कैनॉट वॉक स्ट्रेट बिकॉज देयर फोकस इज ऑन व्हाट इज इन देयर हैंड। ये एडल्ट्स का भी है, मैं बच्चों को सिर्फ नहीं बोल रहा, एडल्ट्स का भी है। तो दैट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अभी जब भी मैं इन बच्चों को, मैं लगभग 2,500 स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूं अभी तक, तो ये कोर्स जो चलाता हूं इसमें उनको परिचय देता हूं कि हमारी परंपरा कहां से शुरू हुई है, जो 5,000 6,000 7,000 साल पहले जो हमारी परंपरा है वो क्या है। और लेकिन वो जैसे आप कह रहे हो कि थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, एंशियंट नॉलेज ऐसे नहीं, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। जैसे यदि आप कहोगे कि भगवत गीता क्या है, ज्यादातर लोग उसको एक भक्ति का किताब मानते हैं, अध्यात्म का किताब मानते हैं, और उसको लाल कपड़े में लपेट के वो अपने जो मंदिर है वहां पे रख देते हैं। उसको खोल के यदि पढ़ें तो समझ में आएगा कि उसका एक एक शब्द, उसमें एक एक जो अनुभव दिया गया है, वो हर चीज हमारे आज की जिंदगी में बहुत रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स की ही बात करूंगा, सबसे ज्यादा डर स्टूडेंट्स को क्या लगता है? फेलियर का। तो फेलियर के डर से क्या करते हैं, जो प्रिपरेशन है ना वो प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि अंदर डर बैठ गया है। अंदर यदि डर बैठ गया है तो प्रिपरेशन के वक्त ये सोचेंगे कि ये गलत आएगा, ये चैप्टर फलाना सही, मुझे समझ में नहीं आता है, ये सब्जेक्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरा दोस्त जो है मुझसे बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता हूं, ये सारी चीजें माइंड को मडल कर देती हैं। तो जो सफाई होनी चाहिए मन में जब अभ्यास करते हैं वो सफाई नहीं हो पाती, और जब सफाई नहीं होगा प्रिपरेशन के वक्त तो ऑब्वियसली जो प्रिपरेशन होगा वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, ऑब्वियसली जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा होने की संभावना है। लेकिन यदि अगर वो समझें कि जो तीव्रता उनको उस प्रिपरेशन में लानी चाहिए, उस वक्त मन एकदम साफ रखना चाहिए, उसके लिए क्या क्या हमारा प्रिपरेशन, मतलब माइंड को कैसे प्रिपेयर किया जाए, वो यदि वो समझ गए तो उस प्रिपरेशन में उनको सफाई मिलेगी। प्रिपरेशन सफाई साफ होगा तो अपने आप अपना अटेम्प्ट जो है, एफर्ट है, वो साफ होगा। एफर्ट यदि साफ होगा तो सक्सेस भी आएगा। जाहिर सी बात है, somebody will be little more talented, little more capable than somebody else. तो जो मार्क आएंगे उसमें ऊपर नीचे होगा, लेकिन सक्सेस तो आएगा ना। और तो दैट आइडिया ऑफ व्हाट आर द पाथ टू सक्सेस यू विल अंडरस्टैंड। सिमिलरली व्हेन यू फेल, अभी बचपन में हम लोग बच्चों को साइकिल सिखाते थे, तो साइकिल सिखाते वक्त क्या करते थे, पिताजी या माँ पीछे साइकिल की सीट को पकड़ के उसको बोलते थे पेडल करो पेडल करो, और जब पिताजी या माँ उसको साइकिल की सीट को छोड़ देते थे वो बैलेंस डगमगा जाता था, बच्चा गिर जाता था, बच्चा रोएगा, लेकिन माँ बाप बोलते हैं दोबारा बैठो दोबारा चलाओ, तो वो चलाते चलाते बच्चा सीख जाता है कि कैसे साइकिल करना है। ये एक प्रमाण अगर हम जिंदगी में लाएंगे कि फेलियर इज डेफिनेटली पॉसिबल इन लाइफ, बट फेलियर के बाद में मेरा एफर्ट मैटर करता है कि मैं कैसे सक्सीड करूं, तो मेरे एफर्ट पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे सक्सीड करूंगा। ये जानकारी, ये बुद्धि, ये विवेक जो अगर मन में आ जाता है, इसके लिए अध्यात्म बहुत काम की चीज है। अध्यात्म समझ में आएगा तो अपने आप ये इसका हम लोग उपयोग कर पाएंगे।
0: You're right. Very true. यहां पर वी आर डिस्कसिंग सुरेश सर, तो एक जो बात मेरे दिमाग में आ रही है, आपने गीता का जिक्र किया और आपने वहां पर बड़ी खूबसूरती से ये बात कही कि लोग अगर लोग या कोई बच्चे भी अगर उसको पढ़े तो एक एक शब्द उसका जो लिखा हुआ है उसका रेलेवेंस आज के टाइम पर भी है। और उसके बाद आपने बतलाया कि बच्चे डर जाते हैं, इस वजह से वो प्योर हार्ट से या कंप्लीटली पढ़ नहीं पाते और वहां पर गड़बड़ होती है। तो जो चीज मुझे सुनाई दी ना, वो गीता का जो सार है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगा, इफ एट ऑल आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, मुझे ऐसा लगा आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई बच्चा पढ़े लेकिन डरे नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा। एम आई राइट सर?
1: टू सर, बिल्कुल सही बात है।
0: बच्चा पढ़े, खुल के पढ़े, लेकिन ये बात दिमाग में ना रखे कि क्या रिजल्ट आने वाला है, जस्ट उसको पढ़े। लेकिन होता क्या है ना सर, प्रैक्टिकल लाइफ में इस बच्चे को पढ़ाई करके अपना करियर भी बनाना है, अपना परिवार भी चलाना है, दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। उसे साधु संत नहीं बनना पढ़ाई लिखाई करके।
1: सही बात है, सही बात है।
0: अब उस काम के लिए, उस ऑब्जेक्टिव के लिए, उस पर्पस के लिए उसको उस तरीके से पढ़ाई करनी है जिससे कि रिजल्ट उसके अच्छे आए, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड रिजल्ट मांगता है। दर्द की बात है, थोड़ा सा ये आयरनी है कि हमारी जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है ना, वो मार्क्स को अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है, तो इसलिए माँ बाप भी अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, बच्चा भी प्रेशराइज्ड रहता है कि साहब मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अब पढ़ाई चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं, तो डर पैदा हो जाता है। तो सर इस चीज को एलिमिनेट करना या इस चीज को उस बच्चे को समझाना कि बच्चे डरो मत, निकाल दो डर को, तुम अच्छी तरीके से पढ़ो, उससे जो भी रिजल्ट आएगा उससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, तुम्हारा परिवार चले, इतनी छोटी उम्र के बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर, नहीं आता। मुझे आपको आ रहा है आज, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी दुनिया देख ली। माई पॉइंट वॉज, इस ही चीज को आपने बताया, आपके इतने स्टूडेंट्स आपने इंडियन इथोस के ऊपर पढ़ाए, हाउ फार एक्चुअली, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये सक्सेसफुल रहा?
1: सक्सेसफुल तो बहुत रहा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्स को अटेंड करने के बाद में उनको वो रिपोर्ट किसको देते हैं, मैं तो विजिटिंग फैकल्टी हूँ, मैं तो उनका परमानेंट लेक्चरर तो हूँ नहीं, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट इतना ही है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्स को अटेंड करते हैं उनका फीडबैक जाएगा उनके जो टीचर हैं क्लास में, उनका जो कोऑर्डिनेटर है, टीचर दी प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर या फिर उनके प्रिंसिपल, उनसे मुझे फीडबैक आता है कि बच्चों को इंडियन नॉलेज सीखने के लिए, उनके पास इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का एक पूरा कोर्स है, जो कोई और सिखाता है, क्योंकि उनका देयर इज अ यूनिवर्सिटीज बिल्ट करिकुलम, तो वो चलाना है उनको, ये जैसे वेद क्या है, ये जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, हर चीज के बारे में इंडियन नॉलेज के लिए एक करिकुलम है, वो सिखाते हैं. तो प्रिंसिपल जो मुझे कहते हैं उसमें से मुझे समझ में आता है कि उसमें उतना उनको इम्पैक्ट नहीं होता जितना आपके कैप्सूल्स में होता है. जो कैप्सूल्स में आप उनको सिखाते हो कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, वो जिया जाना चाहिए थियोरी में नहीं है, वो जिया जाना चाहिए अपने फेलियर से, अपने सक्सेस से, अपने परिश्रम से. हम जो सीखते हैं उस सब को एक एक स्टेप करके समझना है, क्योंकि यू कैनॉट क्लाइंब, जैसे अभी स्नेकर लैडर है हमारे यहाँ, हम बचपन में खेलते थे, वो भी एग्जाम्पल उनको देता था. स्नेकर लैडर में कैसा है, आप कॉइन डालोगे, लैडर आ गया, ऊपर चले गए, कॉइन डालोगे, आगे स्नेक आ गया, नीचे उतरोगे. लाइफ इज लाइक दैट. तो वो करते करते करते करते आप जब 100 में पहुंचोगे टॉप में, दैट इज व्हेन यू आर सक्सेसफुल. ये गीता का सारांश भी यही है कि तुम केवल और केवल ये समझो कि जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा काम है, तो आज की तारीख में बच्चों का काम क्या है,
0: पढ़ाई करना.
1: उनका जैसे आपके पढ़ाई करना, क्यों करना पढ़ाई, सिर्फ इसलिए करना कि आपको ऐसे काम में लगना है जिससे आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी सुखी बना सको.

0: तो ये करने के लिए आपको अभी पढ़ाई करना, हम लोग कह रहे हैं कोई कोई बच्चा क्या बोलते हैं उसको कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा. अभी जैसे सचिन तेंदुलकर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन स्कूल, ही वाज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट. तो पढ़ाई वो करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, पढ़ाई वो करो जिसमें तुमको लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा. तो उस फील्ड में अपने आप को झोंक दो. जब तक तपोगे नहीं तब तक बाहर से निखर के सोना बन के आओगे नहीं.
1: Right.
0: तो तपना जरूरी है. तपने के लिए आप तैयार रहना चाहिए. अभी आपको दो फ्रेजेस हिंदी में बताता हूं, ये समझ लीजिए. इसमें अंतर भी मैं बच्चों को भी बोलता हूं ये चीज. एक है अपना जो मन है उसको खालिस्तान से खुलास्तान बनाइए.
1: वाह.
0: अभी खाली है क्योंकि उसमें जो ज्ञान चाहिए वो नहीं है, वो खाली है. उसको खुला स्थान बनो. मेक इट ओपन. वंस इट इज ओपन यू विल स्टार्ट रिसीविंग थिंग्स एंड देन यू विल नो उसमें सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरे लिए फायदेमंद क्या है, मेरा क्या नुकसान करेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा. ये एक चीज है. और दूसरा है फ्रॉम उपाध्याय टू स्वाध्याय. उपाध्याय जो अपने को अपने शिक्षक सिखाते हैं उनके साथ में बैठ के जो हम सीखते हैं.
1: करेक्ट.
0: स्वाध्याय जो हम सीखते हैं उसको अपने जीवन में कैसे काम में लाते हैं. तो ये बच्चों को सिखाना जरूरी है. सिंपल सी बात है. इसमें कोई थियरी नहीं है, इसमें कोई हाई फंडा फिलोसफी नहीं है. ये आप लेके आओ अपने आप में फर्क पता चल जाता है छोटी चीज में. फॉर एग्जाम्पल मैं उनको बोलता हूँ कि टीम में तुमको एक प्रोजेक्ट दिया है, टीम प्रोजेक्ट दिया है. जाहिर सी बात है टीम प्रोजेक्ट में कोई ज्यादा काम करेगा, कोई कम काम करेगा. क्योंकि क्षमता उनकी अपनी अपनी अलग है. लेकिन टीम प्रोजेक्ट है. जब भी आप टीम का प्रोजेक्ट प्रेजेंट करोगे तो जो सबसे वीक है या फिर वीकर में से जो एक दो जन को चुनो जो उसको प्रेजेंट करेंगे, दैट मेक्स द प्रोजेक्ट एज अ टीम प्रोजेक्ट. इसका मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कलाम साहब का. कलाम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था when he जब इंडिया का जो पहला स्पेस लॉन्च व्हीकल निकला था. सो एट दैट टाइम The launch over Sriharikota, the launch collapsed. ये लोग सब साथ में थे. कलाम साहब बॉस वॉज विक्रम साराभाई. सतीश धवन, सॉरी सतीश धवन वॉज देर एंड हिज बॉस वॉज विक्रम साराभाई. सो धवन टोल्ड कलाम साहब दैट यू गो मीन आई धवन वेंट टू द प्रेस इंटरव्यू सेड वी हैव फेल्ड बट वी हैव नॉट लॉस्ट होप. फिर दोबारा उन्होंने लॉन्च किया व्हीकल को. जब भी सक्सेस हुआ he told कलाम, he was a junior, You go and tell the press that we succeeded. ये अंतर होता है टीम वर्क का. तो ये जब भी स्टूडेंट समझ जाते हैं, they understand the value of साथ में रहना, साथ में एक दूसरे से जो जो सीख मिलती है उसको अपने जीवन में basically how it can make a difference to my life. That's it.
1: Right. Amazing. बिल्कुल practical बात है सर, बिल्कुल practical बात है. तो दोस्तों practicality की तरफ ही चलिए. चलिए सर यहां पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर एक बहुत प्यारा सा भजन हम सुन लेते हैं एंड देन वी विल कम बैक फॉर डिस्कशन.
0: श्योर श्योर.
1: तो दोस्तों हम भजन पेश करते हैं जो हमारे ही मेहमान सुरेश सर ने ही गाया.

0: बहुत खूब सॉरी सर, अब बिल्कुल दूसरी प्रैक्टिकल बात करता हूँ। हम लोग यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, तो मुझे कुछ मेथड्स बताइए कि कोई भी बंदा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई यूथ हो, घर पर कहीं पर भी, ट्रेन में कहीं पर भी, उन मेथड्स को यूज़ कर ले और इन सब ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़े। तो सबसे पहला मेथड जिसके बारे में मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ वो है मेडिटेशन। So how should we do it? देखिए, मेडिटेशन के ऊपर हजारों किताबें अवेलेबल हैं, हर गुरु अपने अपने तरीके से मेडिटेशन के बारे में बताता है। मेरा मानना भी यह है पर्सनली कि मेरा अपना मेथड है मेडिटेशन का, किसी और का दूसरा होगा, मेरी माँ का दूसरा है, मेरी वाइफ का दूसरा है, मेरे बेटे का मे भी कुछ अलग होगा, लेकिन फिर भी मेडिटेशन का, देखिए इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मेरे मेथड से कुछ लोग कन्विंस ना हो, लेकिन हो सकता है आपके मेथड से कन्विंस हो। तो कम से कम अपन हम अपना मेथड, जैसे आपने बताया ना, कैप्स्यूल की तरह बताएं तो सही लोगों को। सो टेल मी अ मेथड विच शुड बी एक्सट्रीमली सिंपल और आज की जनरेशन उसको कर सके, सो दैट दे कैन लर्न समथिंग बेटर। मेडिटेशन का मेथड बताइए सर।
1: देखिए, अलग अलग किताबों में, अलग अलग ट्रेडिशंस में, अलग अलग तरीके से मेडिटेशन को बताया गया, और अक्सर जो मिसकंसेप्शन है कि मेडिटेशन इज समथिंग टू डू विद प्रेयर, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मेडिटेशन इज ओनली समथिंग टू ट्रैवल इनवर्ड्स, इट्स अ रोड टू ट्रैवल विद इन यू। अभी वो रोड अलग हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बता रहे थे योर सन मे बी हैप्पी टू लिसन टू सम म्यूजिक इन विच देर इज मेडिटेटिव म्यूजिक,
0: करेक्ट।
1: फॉर एग्जांपल आई डू सम सेशंस ऑन मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, तो सन मे बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, माय वाइफ मे बी इंटरेस्टेड इन डूइंग मेडिटेशन थ्रू व्हाट इज टॉट इन हर योगा क्लास, आई मे बी डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो मेरे जीवन में जो मेडिटेशन का जो मुझे क्या बोलते हैं जो इट मेड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी वॉज विपश्यना। विपश्यना इज अ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड इसमें सिंपल सी बात है कि जो चीज जैसा है वैसा उसको स्वीकार करने का तरीका है।
0: राइट सर,
1: बट हाउ डू यू डू इट ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल? देखिए, व्हेन वी आर ऑल अलाइव, हम जिंदा है, तो हम जिंदा है तो हमारे साथ एक चीज है जो हमारे साथ जिंदगी भर चलेगा और वो है हमारी सांस।
0: ओके,
1: सांस रुक गया तो जीवन खत्म। सो फ्रॉम द टाइम आई एम बॉर्न टिल द टाइम आई डाई देर इज ओनली वन थिंग विच इज परमानेंट विथ मी एंड दैट इज माई ब्रेथ। अगर वो ही नहीं है तो मैं नहीं हूं। तो उसको ऑब्जर्व करना, शुरुआत वहां से होती है, विपश्यना में शुरुआत वहां से होती है। तो मैं अभी स्कूल में, अभी जैसे कॉलेज में लेक्चर्स भी लेता हूं तो उनको मैं एक छोटा सा एक क्या इंट्रो इसमें देता हूं कि उनको 15 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस का अनुभव लेने को कह रहा हूं। अनुभव, डोंट ब्रीद, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अभी ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा, ऑब्जर्व करने की कोशिश में ही हम समझते हैं कि मन में इतने सारे विचार आते हैं। इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स सो मेनी थॉट्स कम टू अवर माइंड, दिस इज अ नेचर ऑफ अवर ह्यूमन माइंड। तो उसकी उसका जो अटेंशन है हमको ट्रांसफर करना है कहां पर? सिर्फ अपनी सांस में। सांस में कहां पर? जहां से सांस बाहर निकलती है और अंदर जाती है, विच इज अबव द अपर लिप, अपर लिप और नोस्ट्रिल के बीच वाला जो हिस्सा है वहां पे ही सांस बाहर आती है, वहीं से अंदर जाता ही है। सिर्फ और सिर्फ वहां उसको ऑब्जर्व करो एंड दैट इज अ लेसन, बिकॉज हर बार मन भटकता है, मन हमेशा भटकता है, मन का नेचर ऐसे ही है ना, क्योंकि इट कैन नेवर स्थिर तो रहता ही नहीं है। कोई विचार आएगा तो क्या करोगे? स्माइल एट यूर सेल्फ फूलिश फेलो, यू आर मेंट टू फोकस ऑन दी ब्रेथ। तो वो जैसे जैसे वो प्रैक्टिस होता है उसकी तीव्रता बढ़ती है, जैसे उसकी तीव्रता बढ़ती है, मैं सिर्फ उसको विपश्यना को कैप्सूल में बताता हूं, जैसे उसकी तीव्रता बढ़ती है हम उसका जो ब्रेथ का जो अटेंशन है वहां से लेके वी टेक इनसाइड अवर नोस्ट्रिल्स एंड ग्रेजुअली वी ट्रांसफर दैट अटेंशन टू ऑल ओवर अवर बॉडी एंड व्हेन वी डू दैट साइंटिफिकली वी अंडरस्टैंड जो हम साइंस में सीखे थे फ्रॉम स्कूल कि द बॉडी इज 67% वाटर एंड ओनली 33% मास। जो फ्लूइड्स है अंदर, वो अंदर एक तैर रहे हैं, वो दे आर मेकिंग डिफरेंट सेंसेशंस इन आवर बॉडी एट डिफरेंट प्लेसेस, नथिंग इज परमानेंट। वो कहीं दर्द होता है, कहीं एक खुशी की अनुभूति होती है, कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ग्रॉस है, बहुत भारी है, ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस विल कम, देन यू अंडरस्टैंड दैट नन ऑफ दीस आर परमानेंट। द ओनली परमानेंट थिंग विथ यू इज योर ब्रेथ, एंड दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि यार जब मैं हूं तभी तो सब कुछ कर सकता हूं। तो मुझे जानना, मतलब बेसिकली इट इज अ वे टू ट्रैवल इनसाइड, मुझे जानना जरूरी है कि बाकी सारे इम्परमानेंट है, एवरीथिंग एल्स इज इम्परमानेंट। तो व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट कोई फेलियर है, दैट इज इम्परमानेंट, कोई किसी ने मुझ पे गुस्सा कर दिया, दैट इज परमानेंट, मुझे नौकरी मिल गई, ये जो अभी मिला है दैट इज नॉट, दैट इज टेम्पररी, आई एम सॉरी, मुझे नौकरी मिल गई है वो भी टेम्पररी है क्योंकि मैं कहीं और नौकरी करूंगा,
0: करेक्ट,
1: मुझे आज ये सैलरी मिला है, कल के बाद में एक साल बाद में रेज मिलेगा, दैट इज टेम्पररी, दैट समथिंग एल्स विल बिकम माय सैलरी। तो हर चीज जो है पासिंग है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। उसको समझने के लिए मेडिटेशन इज अ टूल, तो उसको टूल की तरह यदि ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे भी हमारे लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस आएगा, वी अंडरस्टैंड दैट दैट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो टेम्पररी, आया गया, कुछ और आएगा जाएगा। तो ये बुद्धि के स्तर पर हम लोग उसको जान पाएंगे और उसको जीवन में क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली लेके आना है। एक समझना इज वन थिंग, अगर मैं कोई अच्छी बात आपको कहूं, आपकी बुद्धि से आप उसको बोलोगी यार बहुत अच्छी बात है आपने कही, जब तक मैं उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करूंगा, छोटी छोटी चीजों से, हम इसको चींटी देखते ना सर, चींटी अपने आप में एक शुगर का छोटा सा क्रिस्टल है ना, वो लेके नहीं जा पाएगी, तीन चार चींटियां लगेंगी एक शुगर क्रिस्टल को लेके जाने के लिए, और एक पूरा उनका झुंड लगेगा लगभग एक टीस्पून शुगर लेके जाने के लिए। और वो क्या करते हैं, एक अपने बिल में जाके, एक या अपने होल में जाके उसको छुपाते हैं, सो दैट एट अ टाइम व्हेन दे नीड फूड दे कैन पिक इट अप। तो वो चींटी से हमको सीखना चाहिए कि लिटिल बाय लिटिल इफ यू स्टार्ट वर्किंग एनीथिंग इज पॉसिबल।
0: राइट, ब्यूटीफुल, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। एक नया ही आयाम, एक नया ही होराइजन हमारे सामने खुल रहा है। दोस्तों, जैसा शुरुआत में ही सुरेश सर ने कहा कि सारी की सारी बातचीत अपने आप को समझने की ही है, ये भी जो अभी अभी सुरेश सर ने कहा वो भी उसी का एक कड़ी है। सोचते चलिए, यहां पर रुकते हैं हम सर, और एक प्यारा सा भजन, और फिर वी विल कम बैक। तो दोस्तों, हम भजन पेश करते हैं जो हमारे ही मेहमान सुरेश सर ने ही गाया।

0: राइट सर। सुनिए सर, आपसे बातचीत का ये दौर, मेरी इच्छा तो यह है चलता ही रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मेरे दिमाग में आ रही हैं, फॉर विच आई एम सीरियसली एंड जेन्युइनली थैंकफुल। लेकिन बस प्रोग्राम की टाइमिंग का भी एक रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से मैं एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि फर्ज कीजिए मेरी तो समझ में आ गया, मैंने आपसे बातचीत की, लेकिन मेरे से आपकी बातचीत बहुत सारे लोगों ने सुनी है। हमारी बातचीत को सुनकर अगर किसी को भी लग जाए कि ऑल राइट डन, आज से मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस शुरू करूंगा जैसा सुरेश सर ने कहा, तो मुझे दो तीन आसान स्टेप्स बताइए किसी भी साधारण, बिल्कुल साधारण व्यक्ति के लिए, लेमैन जो बहुत ज्यादा गूढ़ न सोच पाता हो, उसके लिए तीन चार स्टेप्स बताइए कि वो क्या करे और प्यार से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पड़े।
1: दो एग्जाम्पल दूंगा सर, दो एग्जाम्पल इज अ वे वी कैन लर्न। अभी अध्यात्म ऐसी चीज है जिसको, अगर जैसे शुरुआत में हमने कही थी कि इट इज अबाउट लर्निंग अबाउट योरसेल्फ, अपने आप को जानने के लिए है, तो ये अपने आप को जानने के लिए नॉलेज एक्चुअली बहुत आसान है, यही जानना है ना। बट इसके बावजूद भी इसमें इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, इतने सारे लोगों ने बोला हुआ है, इतने सारे लोग अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्यों? इट बिकॉज इवन दिस सिंपल थिंग

0: किया, क्योंकि आप तो वही हो जो बचपन में जो पैदा हुआ था अपनी माँ के कोख से, आप तो वही हो ना। जब आपकी चिता जलेगी या फिर आपका आपको अंदर दफनाया जाएगा, आप तभी खत्म हो जाओगे ना। उसके बीच में आप तो वही हो ना। आपको जानने के लिए आपको आपकी आपको चेष्टा कभी करनी चाहिए। जहां जागे वहां सवेरा, जैसे कहते हैं ना वो
1: जब जागे
0: कहावत है ना, जब जागे जहां जागे वहां सवेरा। सो वेयर एवर यू आर, वॉट एवर टाइम यू रियलाइज दैट मैं अभी अपने आप को जानना चाहता हूं, उस वक्त शुरू करना है। तो क्या शुरू करना है? दो एग्जाम्पल देता हूं सर। अभी हमारे गांव में, मैं साउथ से हूं, हमारे गांव में, इवन इन नॉर्थ इंडिया इट विल बी द केस, जो फसल चावल का जो फसल है ना, चावल की फसल के बाद में दी हस्क एंड राइस आर सेपरेटेड, और उस राइस को एक बड़ा सा एक बैरल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि साल भर अपने कुकिंग के लिए वो बैरल की जरूरत है। तो एक टीम होता है जो उसको राइस को छांट के हस्क निकालता है, पत्थर निकाल कंकर निकालते हैं और उस राइस को बैरल में डालने का काम है। और बैरल के नीचे से छोटा सा एक कॉर्क जैसे रहता है, उस कॉर्क को निकाल के एक बर्तन में जितना अपने को चावल चाहिए पकाने के लिए वो लेके वो कॉर्क बंद कर देते हैं। दिस इज हाउ पीपल यूज राइस एट होम, करेक्ट? अभी एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हम राइस भरते जा रहे हैं, कोई नटकर बालक जैसे मैं हूं, वो कंकर जो सेपरेट किया था उसको निकाल के उस चावल के बीच में डाल देता है, और हम नीचे से खोल रहे हैं, नीचे से खोल रहे हैं, फिर भी चावल निकल रहा है, क्योंकि चावल पहले से डला हुआ है। फिर मेरी माँ है जो समझ लिया गया ये नटकर बालक ने कंकर डाल दिया, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि वापस वहां से छांटना मुश्किल है, तो ऊपर से माँ ने फिर से चावल डाल दिया। लेकिन अभी मैं जब मैं नीचे से खोलता हूँ कंकर निकलते हैं, क्योंकि मैंने बीच में डाला हुआ था। Your life is also like that. आप जिंदगी में जितनी अच्छाइयां भरते जाओगे, उन अच्छाइयों का फल आपको रेगुलरली मिलते जाएगा। So first and foremost is make sure that जो आप कहते हो, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, जो भी आप सुनते हो, we are all good. गांधी जी की तीन बंदर नहीं, चौथा बंदर भी है जो सोचता है वो। तो everything that comes in contact with your senses, वो सारे अच्छे हो। बाई चांस गलत भी आ सकता है ना, गलत आप किसी के बारे में सोचोगे, गलत कुछ करने के लिए जाओगे, उसका भी आपको परिणाम आएगा ही आएगा। आज नहीं तो कल जब वो कॉर्क खुलेगा और उसका परिणाम निकलना है तो निकलेगा ही निकलेगा। ये साधारण सी बात यदि समझ लेंगे तो यू विल स्टार्ट इन अपने गुण में, यू विल स्टार्ट फिलिंग योर लाइफ विथ ओनली गुड थिंग्स, गुड पीपल, गुड थॉट्स, गुड एक्शंस, यू विल स्टार्ट डूइंग दैट और उसका आपको ब्लेसिंग मिलते ही जाएगा। ये एक बात है। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं, दूसरा कि आपने अपने फिजिक्स में हम लोगों ने देखा प्रिज्म, त्रिकोण, ट्रायंगुलर ग्लास क्यूब, प्रिज्म कहते हैं उसको। वो प्रिज्म को यदि हम उसके जो तीन कोने हैं उसको मान लें कि एक कोना है मेरा बॉडी, एक कोना है मेरा माइंड, तीसरा कोना है मेरी बुद्धि, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये अगर हम साफ रखेंगे, इफ माई कीप द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माई लाइफ, इसको हम साफ रखेंगे, तो जो अनुभव मुझे बाहर से आता है वो जब भी निकलेगा मेरे से, जब भी बाहर निकलेगा वो रंगीन निकलेगा। द प्रिज्म विल रिसीव अ सनलाइट एंड इट विल गिव आउट अ रेनबो। सो सिंपल थिंग यहां से शुरू करें कि मैं अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने शरीर को जितना हो सके मुझसे शुद्ध रखूंगा, ताकि जो अनुभव मुझे बाहर से आएगा, सूरज की रोशनी जो बाहर से आएगी, वो मेरे से जब बाहर निकलेगा, मुझसे जब बाहर निकलेगा वो रंगीन होगा। दिस टू सिंपल थिंग्स यू स्टार्ट विद, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट इज गुड फॉर यू, धीरे धीरे धीरे धीरे, बिकॉज धीरे धीरे ही होता है ये, एक साथ में ओवरनाइट तो होता नहीं है। तो दिस स्लो प्रैक्टिस विल मेक अस लीड टुवर्ड्स दैट पाथ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सिंपल, जैसा मैंने रिक्वेस्ट की थी सुरेश सर से, सुरेश सर ने उसी हिसाब से बिल्कुल सिंपल मेथड्स बताए हैं। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, बात सुनने में कई बार थोड़ा मदरहुड स्टेटमेंट जैसी लगती है, लेकिन है तो यही सच्चाई तो अपना के तो हमें देखना पड़ेगा, नहीं अपना के देखा था तब भी वही एक एक एक परसेप्शन बना था, एक बार अपना के देख लीजिए क्या फर्क।

0: सकता है।
1: सुरेश सर, आपका बहुत बहुत आभार है कि बिल्कुल ही ओपन आज के प्रस्पेक्टिव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज के से रेलेवेंट बातें आपने आज हमें बताई हैं टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स मेडिटेशन एंड टूवर्ड्स प्रैक्टिसिंग इट। जाहिर से बात है जो भी इस प्रोग्राम को सुनकर अगर आप मैं मानता हूं लोगों दोस्तों कि अगर आपको 1% 2% भी इसमें से अटक जाता है ना तो एंटायर प्रोग्राम इज वर्थ इट। बस यही हमारा पर्पस है। सुरेश सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू वेरी मच समीर जी, थैंक यू वेरी मच समीर जी, आपने मुझे बुलाया, मैं आपसे बात कर सका और आपके श्रोताओं से बात कर सका, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
1: थैंक यू।
3: ओम भास्कराय नमः।
1: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM, और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर RJ तनुषा। आज की बातें इधर की उधर की में एक बड़ा फिल्मी सवाल, जी हाँ, बड़ा वाला फिल्मी सवाल। अगर आपका जोडियक साइन यानी कि आपकी राशि कोई आइकॉनिक बॉलीवुड कैरेक्टर होती तो वो कौन होती? सोचिए सोचिए सोचिए। क्या आप गीत होते, पू होते, पीकू होते, मुराद होते, या फिर आनंद होते? आज हमारी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं। और हाँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूं, इसे कुंडली से मत समझिए, बस एंटरटेनमेंट समझिए। हो सकता है आपकी राशि का कैरेक्टर आपसे बिल्कुल मैच करे, और हो सकता है कि सुनते सुनते आप बोल उठें, मेरी राशि को मेरी इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। तो चलिए शुरू करते हैं। फायर साइंस, सबसे पहला फायर साइन एरीज, और इसे हम रिलेट करते हैं हमारी गीत के साथ। जी हाँ, जब वी मेट की वो गीत। अगर आप एरीज हैं तो आपके अंदर गीत वाली एनर्जी जरूर होगी। सीधी बात, दिल में जो आया बोल दिया, जो मन में आया कर दिया, और जिंदगी के लिए एक ही नियम, मैं अपनी फेवरेट हूं। एरीज लोग फियरलेस, एनर्जेटिक, स्पॉन्टेनियस होते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि कभी कभी दिमाग के ब्रेक से पहले मुंह और पैर दोनों चल पड़ते हैं, और फिर बाद में रिग्रेट होता है, हाय मैंने ये क्या कर दिया। अगर आप एरीज हैं तो एक सवाल, क्या आप भी प्लान बनाने के बजाय प्लान के बीच में एडवेंचर शुरू कर देते हैं? सोच के देखिएगा। फिर आता है सेकेंड फायर साइन लियो, और वो है हमारी पू। जी हाँ, कभी खुशी कभी गम की पू। लियो आए और स्पॉटलाइट ना हो, इम्पॉसिबल। पू की तरह ड्रामा, ग्लैमर, कॉन्फिडेंस, और हाँ, बहुत सारा अटेंशन चाहिए लियोस को। ऐसे लोगों को एंट्री भी कोई नॉर्मल नहीं चाहिए, एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि बैकग्राउंड म्यूजिक खुद ही बजने लगे, हु इज शी, और आप कहें मैं पू हूं। लियो पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस और वार्म्थ होती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही नोटिस मी एंड नोटिस मी। तो लियो वालों, सच सच बताइए, आप फोटो में सेंटर में ना हो तो फोटो क्या आपको पसंद आती है? सोच के देखिएगा। फिर आता है थर्ड फायर साइन सैजिटेरियस, ये हैं हमारे बनी, ये जवानी है दीवानी के। सैजिटेरियस का दिल एक जगह कभी नहीं टिकता। बनी की तरह नई जगहें, नए एक्सपीरियंस और नए एडवेंचर्स। आज जयपुर, कल मनाली, परसों पता नहीं, देख लेंगे।
फ्रीडम इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. रूटीन बहुत बोरिंग. एडवेंचर कब चलना है. ऐसे लोग सपने देखते भी हैं और उनके पीछे भागते भी हैं. मैं दौड़ना चाहता हूं, भागना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता. याद है ना ये डायलॉग. कभी कभी बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि अगला एडवेंचर ढूंढते ढूंढते पिछला वाला प्रॉपरली एंजॉय ही करना भूल जाते हैं. फिर आते हैं हमारे ग्राउंडेड सॉलिड रूटेड अर्थ साइंस. सबसे पहला अर्थ साइन है टॉरस और इसे हम जान सकते हैं सिमरन के कैरेक्टर से. हमारी अपनी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन. टॉरस वालों में सिमरन वाली लॉयल्टी होती है. दिल से जुड़े होते हैं. अगर दिल से जुड़ गए तो फिर आसानी से छोड़ेंगे नहीं. ट्रेडिशंस को समझते हैं, फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो अपनी बात के लिए खड़े भी हो सकते हैं. और टॉरस का एक और ट्रेट है उनकी जिद. बाप रे बाप, एक बार दिमाग में बैठ गई ना तो बस राज क्या पूरी दुनिया समझा ले. नहीं मतलब नहीं. वो बोलते हैं ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. बस इनकी भी कुछ यही कहानी है. आप टॉरस हैं तो बताइए आप लॉयल ज्यादा हैं या जिद्दी ज्यादा हैं. फिर आता है हमारा दूसरा अर्थ साइन वर्गो और ये है हमारे कबीर फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. वर्गो को लाइफ अगर मिल जाए तो वो उसकी स्प्रेडशीट बना देते हैं. कबीर की तरह प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड, ओवरली एम्बिशियस और हर चीज का एक प्लान होता है. और प्लान का भी बैकअप प्लान होता है और बैकअप प्लान का भी कभी कभी एक और बैकअप प्लान होता है. उफ, वर्गो वालों को चीजें ठीक तरीके से करना बहुत पसंद है. ये बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होते हैं. लेकिन कभी कभी इतनी प्लानिंग हो जाती है कि जिंदगी प्लान के बाहर कुछ कर दे तो सिस्टम हैंग. जी हाँ, इनका सिस्टम हैंग हो जाता है. अगर आप वर्गो हैं तो एक सवाल, क्या स्पॉन्टेनियस ट्रिप का आइडिया सुनकर पहला सवाल होता है आइटिनरी भेजो. सोचिएगा. फिर आते हैं हमारे थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न. ये होते हैं हमारे पीकू फ्रॉम द फिल्म पीकू. कैप्रिकॉर्न के सामने जिंदगी की कितनी भी उलझने डाल दो, जवाब आएगा ठीक है देखते हैं. पीकू की तरह ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल और फियर्सली इंडिपेंडेंट होते हैं. ड्रामा के बीच भी कॉमन सेंस जिंदा रहता है. फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, करियर हो या डेली लाइफ का क्योस हो, हैंडल कर लेंगे. और इनका यूमर थोड़ा ड्राई, थोड़ा सरकास्टिक होता है. मतलब सामने वाला इमोशनल स्पीच दे रहा है और कैप्रिकॉर्न अंदर ही अंदर सोच रहा है इसका सोल्यूशन क्या है. जी हाँ, कैप्रिकॉर्न वालों, आप इमोशनल सिचुएशन में भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं ना. सोचिएगा. फिर आते हैं हमारे एयर साइंस. उफ, ये तो उड़ते ही रहते हैं. सबसे पहला एयर साइन होता है जेमिनाई और इसे मैं जानूंगी हमारे राजू गाइड की तरह फिल्म गाइड से. जेमिनाई मतलब क्यूरियोसिटी प्लस कॉन्वर्जेशन. चटर पटर चटर पटर चटर पटर. राजू की तरह अडेप्टेबल होते हैं और जैसे ही सिचुएशन बदलती है ठीक है नया प्लान बनाते हैं. बात करनी हो जेमिनाई रेडी, नई जगह जाना हो जेमिनाई रेडी, नया एक्सपीरियंस लेना हो और रेडी रेडी रेडी. इनकी एक खासियत होती है, ये मुश्किल सिचुएशन में भी रास्ते निकाल ही लेते हैं और कभी कभी रास्ता निकालते निकालते खुद नहीं जानते कि डेस्टिनेशन थी क्या.
जेमिनी वालों, आप एक वक्त में कितनी कॉन्वर्सेशंस चला सकते हैं? 3-4 या व्हाट्सएप में 17 चैट्स अनरेड हैं, सोच के देखिएगा। फिर आते हैं हमारे दूसरे एयर साइन लिब्रा, और ये होते हैं राहुल कुछ कुछ होता है वाले। लिब्रा का मतलब ही होता है बहुत सारा चार्म। सोशल हैं, फ्रेंडली हैं और ऐसे इंसान हैं जिनके आसपास लोग रहना पसंद करते हैं। ऑलमोस्ट सभी को इन पे क्रश होता है, गर्ल और बॉय। राहुल की तरह दोस्त बहुत होते हैं, स्टाइल बहुत होता है, चार्म बहुत होता है, लेकिन डिसीजन यार सोचते हैं। लिब्रा को बैलेंस पसंद है, सबको खुश रखना चाहते हैं। प्रॉब्लम बस छोटी सी है कि कभी कभी सबको खुश करते करते खुद डिसाइड ही नहीं कर पाते कि टीना के साथ जाना है या अंजलि के साथ। याद है ना लिब्रा वालों, रेस्टोरेंट में मेन्यू देखने में कितना टाइम लगता है जरा सोच के बताना। फिर आते हैं हमारे थर्ड एयर साइन अक्वेरियस, और ये है गली बॉय के मुराद की तरह। अक्वेरियस थोड़े हटके हैं, मुराद की तरह बहुत ऑब्जर्वेंट, डीप थिंकर और अपनी आवाज ढूंढने वाले होते हैं। भीड़ में खड़े होकर भी अपनी दुनिया देख सकते हैं। ऐसे लोग हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, सवाल करते हैं, नया सोचते हैं और कभी कभी सोसाइटी बोले ऐसा कौन करता है, और अक्वेरियस बोले मैं करता हूं। अगर आप अक्वेरियस हैं तो शायद आपका फेवरेट सेंटेंस है मुझे कुछ अलग करना है। जी हाँ, ओहो, अब आते हैं हमारे वाटर साइंस, इनका क्या कहना। पहला वाटर साइन है कैंसर, और ये है हमारी कल हो ना हो की नैना। कैंसर का दिल बहुत बड़ा होता है, नैना की तरह सेंसिटिव, केयरिंग और फैमिली की तरह फियर्सली प्रोटेक्टिव होते हैं। बाहर से थोड़े रिजर्व्ड, लेकिन अंदर पूरा एक इमोशनल यूनिवर्स होता है। आपके अपने लोग खुश हैं, आप खुश, उन्हें प्रॉब्लम है और आपकी नींदें उड़ गईं। कैंसर का एक हिडन टैलेंट होता है दूसरों की चिंता करना, कभी कभी इतनी कर लेना कि सामने वाला बोले मैं ठीक हूं, तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं, मैं तुम्हारी आंखों से समझ गई कि कुछ गलत है। ऐसे ही होते हैं कैंसर्स। फिर आते हैं स्कॉर्पियो। लम्हे की पूजा याद है आपको? एक स्कॉर्पियो के इमोशंस हल्के वर्जन में नहीं आते, जो फील करेंगे पूरा फील करेंगे। पूजा की तरह इंटेंस है, पैशनेट है, प्राइवेट है और इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। इन्हें अपनी फीलिंग्स हर किसी को बताना पसंद नहीं, लेकिन जिससे दिल से जुड़ जाए उसके लिए कमिटमेंट गहरा हो सकता है, डीप रनिंग वाटर्स जैसा। स्कॉर्पियो को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके दिमाग में एक फिल्म चल रही होती है और बाकी दुनिया को ट्रेलर भी नहीं मिला अब तक। स्कॉर्पियो वालों, आप क्या सीक्रेट रख सकते हैं? या बेस्ट फ्रेंड को 11:30 बजे एक बात बताऊं? किसी को मत बताना। जी हाँ। फिर आते हैं पाइसिस, और पाइसिस को हम जान सकते हैं आनंद फिल्म के आनंद से। आनंद जैसे पोएटिक, सोलफुल और एम्पथेटिक, और दूसरों की जिंदगी में रोशनी बांटने वाले लोग होते हैं ये। ऐसे लोग खुद को मुश्किल में डाल सकते हैं लेकिन सामने वाले को हंसा देंगे। किसी को दर्द हो तो अपना दर्द भूलकर उनके पास बैठ जाएंगे। पाइसिस की खूबसूरती यही है, ये सिर्फ जिंदगी जीते नहीं, हर लेवल को, हर मूड को महसूस करते हैं। और आनंद की तरह
कभी कभी किसी इंसान का सबसे बड़ा असर उसके जाने के बाद समझ आता है। कहते हैं ना, बाबू मशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। अपनी ज़ोडियक साइन याद कीजिए और सोचिए, क्या आप वैसे ही हैं जैसे आपकी बॉलीवुड पर्सनालिटी है, या फिर आप कह रहे हैं कि मेरी पर्सनालिटी तो 12 कैरेक्टर्स का कॉम्बो है। और सच कहूं, शायद हम सब थोड़े गीत हैं, हम सब थोड़े पीकू हैं, थोड़े पू हैं, और कभी कभी थोड़े आनंद भी हैं। क्योंकि इंसान सिर्फ एक राशि नहीं होता, एक पूरी फिल्म होता है। कभी रोमांस, कभी कॉमेडी, कभी ड्रामा, और कभी इंटरवल के बाद ही समझ आता है कि कहानी जा कह रही है। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन एसएन रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आप अपनी जोडियक साइन के साथ कमेंट या मैसेज करके बताइए कि क्या आपका बॉलीवुड कैरेक्टर आप पे फिट बैठता है। तब तक अपनी जिंदगी की फिल्म एंजॉय कीजिए। हीरो भी आप हैं, हीरोइन भी आप हैं, और स्क्रिप्ट राइटर भी आप ही हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से कहा, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि 7 जन्मों तक बस तुम ही मेरी पत्नी बनो, मैं यही चाहता हूँ। दूसरी सहेली बोली, अरे ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, 7वें जन्म के बाद ना किसी और को वादा कर रखा होगा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे बातें इधर की उधर की, और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपके तरानों की हमसफर आरजे तनुषा। दोस्तों, आज की बातें इधर की उधर की में बात होगी एक चीज की जो हम सबके आसपास है और जिसे हम सब रोज देखते हैं। क्या है, क्या है, क्या है? कलर्स। जी हाँ, एक रेनबो ऑफ कलर्स की बात करेंगे आज हम। सवाल ये है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक या व्हाइट? और अगर मैं कहूं कि आपका फेवरेट कलर आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग हिंट्स और हाइलाइट्स दे सकता है, तो जरा अपना फेवरेट कलर दिमाग में फिक्स कर लीजिए एक बार, और आज देखते हैं कि आपका कलर आपके बारे में क्या कह रहा है। बस एक छोटी सी बात, ये कोई पर्सनालिटी टेस्ट या फाइनल जजमेंट नहीं है दोस्तों। कलर साइकोलॉजी में कलर्स को कुछ पर्सनालिटी ट्रेट से जोड़ा जाता है, तो इसे एक फन एक्सरसाइज की तरह लीजिए, बहुत सीरियस मत हो जाइएगा, अपने बारे में थोड़ा सा जानने और हंसने के लिए। चलिए, अगर आपको रेड पसंद है तो भाई आप में थोड़ा जोश तो जरूर है। रेड को अक्सर एनर्जी, हिम्मत, पैशन और एम्बिशन से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग कुछ करना चाहते हैं और सिर्फ सोचना नहीं, करके दिखाना चाहते हैं। इन्हें एक्साइटमेंट पसंद होती है, कंपटीशन से भी इन्हें कोई डर नहीं लगता, लेकिन कभी कभी एक्साइटमेंट में ब्रेक थोड़ा लेट लग सकता है। जी हाँ, अगर आप रेड लवर हैं और शॉपिंग में रेड ड्रेस, रेड शूज और रेड लिपस्टिक या रेड कार देखकर आंखें खुल जाती हैं, रुक जाती हैं, थम जाती हैं, तो हो सकता है आपके अंदर का एडवेंचरस इंसान कह रहा हो, थोड़ा ड्रामा तो बनता है ना। जी हाँ, ब्लू वाले लोग, तो अगर आपका फेवरेट कलर ब्लू है तो शायद आप थोड़े शांत, भरोसेमंद और सोचने समझने वाले इंसान हैं। आपको शोर से ज्यादा सुकून पसंद है। आपके लिए दोस्ती का मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज पे टैग करना या बर्थडे विश करना नहीं, रिश्ते निभाना है। आप लॉयल्टी, स्टेबिलिटी और गहरे रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में वो कौन है जिसे सब अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं? अगर वो आप हैं, तो ब्लू वाली बात थोड़ी फिट बैठती है। येलो पसंद है तो नमस्कार, आपके अंदर का सनशाइन जिंदा है। येलो को ऑप्टिमिज्म, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसे लोग नए आइडिया से एक्साइट होते हैं। प्रॉब्लम आई, बाकी लोग बोलेंगे अब क्या होगा, और येलो वाला बोल उठेगा रुको, एक आइडिया है। अगर आपको लिखना, बोलना, सीखना, नए आइडिया सोचना, लोगों से बातें करना पसंद है, तो येलो आपका कलर हो सकता है। और हाँ, अगर आपके घर में येलो वॉल देखकर मम्मी बोलती हैं, इतना ब्राइट क्यों कर दिया, तो उन्हें कह देना मम्मी मेरी पर्सनालिटी का ये रिफ्लेक्शन है। ग्रीन लवर्स, अब आते हैं ग्रीन पर। ग्रीन को बैड

होगा, पहले चाय पियो फिर बात करते हैं। इन्हें शांति बहुत पसंद है, नेचर बहुत पसंद है और अननेसेसरी ड्रामा। भाई मेरी जान छोड़ दो, ग्रीन वाले लोग अक्सर सुलह करने वाले होते हैं। पर्पल, अगर आपका फेवरेट कलर पर्पल है तो आप थोड़े हटके हो सकते हैं। पर्पल को इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और इंडिविजुअलिटी से जोड़ा जाता है। आपको हर चीज भीड़ के हिसाब से करना जरूरी नहीं लगता। लोग बोलेंगे सब ये कर रहे हैं और आप बोलेंगे तो मैं कुछ और करूंगा। आपको आर्ट, इमेजिनेशन, फिलोसफी या थोड़ी गहरी बातें पसंद आती होंगी और हो सकता है आप वो इंसान हो जो नॉर्मल सवाल का भी फिलोसफिकल जवाब दे दें। कोई पूछे खाना खा लिया और आप बोले पेट भरना और मन भरना दोनों अलग चीजें हैं। जी हाँ, आप पर्पल वाले हैं। ऑरेंज लवर्स, ऑरेंज मतलब एनर्जी और सोशल लाइफ। मुझे पर्सनली ऑरेंज बहुत पसंद है। ऑरेंज को एडवेंचर, इंथुजियाज्म, लोगों के साथ घुलने मिलने और नए एक्सपीरियंसेस से जुड़ना पसंद होता है। ऐसे लोग घर में बैठे बैठे भी 3 प्लान्स बना लेते हैं। चलो कॉफी पीते हैं, चलो मूवी चलते हैं, चलो रोड ट्रिप करते हैं। और अगर कोई बोले बजट तो जवाब देंगे देख लेंगे। अगर आपको नए लोगों से मिलना, घूमना, एक्टिविटीज पसंद है और थोड़ा रिस्क लेना पसंद है तो ऑरेंज वाली एनर्जी आपसे बिल्कुल मैच करती है। अब आते हैं ब्लैक। जी हाँ, उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें वार्डरोब में ब्लैक ही ब्लैक पसंद है। ब्लैक है तुरंत बोल देंगे, परफेक्ट है, ले लो। ब्लैक वालों को इंडिपेंडेंस, डिटर्मिनेशन, प्राइवेसी, सीक्रेसी और सोफिस्टिकेशन से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग अपनी बाउंड्रीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, हर बात सबको बताना जरूरी नहीं समझते। और इमोशंस, सबको नहीं बताएंगे भाई, थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ा कंट्रोल। और स्टाइल, ऑलवेज रेडी। फिर आते हैं व्हाइट पे। व्हाइट लवर्स को अक्सर सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, ऑर्डर और नई बिगनिंग से जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल चीजें पसंद आती हैं। उनकी टेबल पर अगर एक पेन भी टेढ़ा पड़ा हो तो अंदर से आवाज उमड़ उमड़ के आती है, कोई इसको सीधा करो प्लीज। ओसीडी किकिंग इन। व्हाइट का कनेक्शन फ्रेशनेस और न्यू बिगनिंग से माना जाता है, यानी पुरानी चीज खत्म, चलिए नई शुरुआत करते हैं। अब आपकी बारी, चलिए एक छोटा सा रेडियो टेस्ट करते हैं। मैं कलर बोलूंगी और आप मन में बस एक टिक लगाते जाइएगा। रेड, एनर्जी और पैशन। ब्लू, शांति और लॉयल्टी। येलो, क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी। ग्रीन, बैलेंस और केयर। पर्पल, इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिटी। ऑरेंज, एडवेंचर और सोशल एनर्जी। ब्लैक, इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी। व्हाइट, सिंप्लिसिटी और फ्रेश बिगनिंग्स। अब बताइए आपका कलर कौन सा है? एक और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आपका फेवरेट कलर बचपन से ही वही है या वक्त के साथ साथ बदलता रहता है? क्योंकि कभी कभी कलर भी मूड्स की तरह बदलते हैं। बचपन में पिंक सबसे ज्यादा पसंद होता है गर्ल्स को और कॉलेज में आते आते वो ब्लैक में बदल जाता है। और शादी के बाद जो कपड़ा सेल में मिल जाए बस वही चाहिए। जी हाँ, तो दोस्तों कलर्स हमें सिर्फ खूबसूरत दुनिया नहीं देते, कभी कभी वो हमें अपने मूड, अपनी चॉइसेस और अपनी पर्सनालिटी को समझने का एक नया और मजेदार तरीका दे देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप सिर्फ एक कलर नहीं हैं।
आप रेड का जोश भी हो सकते हैं।

ब्लू की शांति भी हो सकते हैं, येलो की पॉजिटिविटी भी हो सकते हैं, ग्रीन का बैलेंस भी हो सकते हैं, पर्पल की इमेजिनेशन भी हो सकते हैं और ब्लैक की स्ट्रेंथ भी हो सकते हैं। इंसान एक कलर से नहीं बनता, पूरे पैलेट से बनता है। मैं हूं आपकी तरानों की हम सफर आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो, एम रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर। अब आप मुझे बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या जो डिस्क्रिप्शन आपने सुना वो आप पर फिट बैठता है। मिलते हैं अगली बार, तब तक अपनी जिंदगी में थोड़े और रंग भरिए, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में दुनिया खूबसूरत हो सकती है लेकिन रंगों के साथ कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार एक घर में डाकू घुसी आए। उन्होंने घर वाले को बोला, देखो हम डाकू हैं, लूटने आए हैं, लेकिन बंदूक भूल आए हैं। तो घर वाले ने कहा, अरे तकल्लुफ की कोई बात नहीं, आपको जो लूटना लाटना है वो लूट लीजिए, लेकिन देखिए ईमानदारी से अगली बार बंदूक ला के दिखा दीजिएगा।

0: वायरल होने से ज्यादा जरूरी है किसी की जिंदगी बदलना। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तांत्या भील 90.8 FM और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर RJ तनुषा। आज की बात एक हंसी से शुरू होती है, सिर्फ 15 सेकंड की हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंटरनेट पर छा गई, हजारों शेयर्स, लैक्स ऑफ व्यूज, मीम्स, रील्स, और लोग कह रहे थे यार क्या स्माइल है, क्या मस्त स्माइल है। लेकिन जिस लड़के की हंसी पर दुनिया हंस रही थी वो खुद अपने बारे में लिखे हुए कमेंट्स भी पढ़ नहीं सकता था। जरा इस बात को एक पल के लिए महसूस कीजिए, कितना अजीब है ना। दुनिया आपको देख रही है लेकिन आप दुनिया को पढ़ भी नहीं सकते। ये कहानी तेलंगाना के एक हाईवे की है और अरुण नाम के एक लड़के की। अरुण ने सिर्फ 4th class तक पढ़ाई की थी। घर की हालत ऐसी थी कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी, स्कूल की जगह हाईवे आ गया, ट्रक के साथ काम, सामान उठाना, ट्रक साफ करना और बीच में किसी रोड साइड की चाय की दुकान पर एक कप चाय। एक दिन अरुण किसी बात पर जोर से हंस पड़ा, ट्रक ड्राइवर नेहरू ने उसका वीडियो बना लिया और बस 15 सेकंड और वो वीडियो इंटरनेट पर छा गया। लोगों ने उसकी हंसी को पसंद किया, किसी ने मीम बनाया, किसी ने रील बनाई, किसी ने शेयर किया और शायद ज्यादा लोगों ने उसे बस एक फनी वीडियो की तरह देखा। लेकिन नेहरू ने कुछ और देख लिया। उसने अरुण की हंसी के पीछे का लड़का देखा। जहां इंटरनेट रुक गया वहां इंसानियत शुरू हुई। नेहरू खुद भी कभी शायद पैसे की वजह से कॉलेज छोड़ चुके थे, इसीलिए शायद वो समझ पाए कि अरुण का स्क्रीन के सामने चुप रहना क्या कह रहा है। दुनिया उसकी हंसी पर ताली बजा रही थी लेकिन अरुण के पास पढ़ने की बेसिक एबिलिटी तक नहीं थी। नेहरू ने सोचा वायरल हो गया अब क्या, और यहीं से कहानी बदल गई दोस्तों। उसने अरुण के लिए किताबें खरीदी, एग्जाम की फीस भरी और फिर शुरू हुई चाय ब्रेक्स में पढ़ाई की कहानी। ना कोई क्लासरूम, ना ब्लैक बोर्ड, ना कोई प्रॉपर टाइम टेबल, बस एक मूविंग ट्रक, रोड साइड स्टॉप्स और एक आदमी जो कह रहा है तुम पढ़ोगे। रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, जो भी जरूरी था नेहरू सिखाते गए। दोस्तों एक सवाल आपके लिए, कल अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसे दुनिया ने तो नोटिस करा है लेकिन उसकी असली जरूरत किसी ने ना देखी हो, तो आप क्या करेंगे? एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट या एक कदम आगे बढ़ाकर उसकी जिंदगी में कुछ बदलने की कोशिश? सोचिए, हम सोशल मीडिया पर किसी की एक फोटो देखकर उसकी पूरी कहानी बना लेते हैं, किसी को फनी बोल देते हैं, किसी को टैलेंटेड, किसी को अनसक्सेसफुल, लेकिन उस इंसान की असली कहानी को जानना कितने लोग चाहते हैं। अरुण का वीडियो शायद कुछ ही दिन में लोग भूल गए, इंटरनेट का नेचर ही ऐसा है, आज एक चीज वायरल, कल दूसरी और फिर तीसरी। पर नेहरू नहीं रुके और फिर आया 2026। अरुण ने क्लास 10th के एग्जाम्स दिए और वो पास हो गए। एक ऐसा लड़का जो कभी अपने वायरल वीडियो के कमेंट्स तक पढ़ नहीं पाया, आज अपनी क्लास 10th की मार्कशीट पढ़ सकता था। और अरुण ने अपने मेंटोर नेहरू को याद करते हुए कहा, नेहरू अन्ना मेरे लिए भगवान जैसे हैं। क्यों? क्योंकि नेहरू ने उनकी हंसी को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बनाया,
1: उनकी हंसी को एक मौका बना दिया। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत गहरी बात छुपी है। अटेंशन और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। हम किसी को देख सकते हैं, उस पर हंस सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, उसका वायरल वीडियो शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए वक्त निकालना, किसी को किताब खरीद कर देना, किसी को बार बार समझाना, किसी के हार मान लेने पर भी कहना नहीं, एक बार और ट्राई करो, ये असली मदद है। और मेंटर बनने के लिए कोई बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, ना कोई बड़ी ब्रांड चाहिए, ना कोई बड़े बड़े मार्केटिंग स्टंट्स चाहिए, ना बड़ा बजट। नेहरू ने अरुण को मूविंग ट्रक में पढ़ाया, मतलब

0: लाश है, कोई जो बार बार कह रहा है मुझसे नहीं होगा। शायद उसे लेक्चर नहीं, शायद उसे बस एक नेहरू चाहिए जो कहे चल मैं हूं ना तू कर। अरुण की कहानी हमें एक बहुत सिंपल सीधी बात याद दिलाती है, वायरल होना जिंदगी नहीं बदलता, कभी कभी एक इंसान का भरोसा जिंदगी बदलता है। इंटरनेट ने अरुण की हंसी देखी, नेहरू ने अरुण का भविष्य देखा, और शायद असली इंसानियत वही है जब हम किसी इंसान में सिर्फ वो नहीं देखते जो वो आज है, बल्कि वो देख लेते हैं जो वो कल बन सकता है। तो अगली बार कोई वायरल वीडियो हो, एक पल के लिए रुकेगा और ये मत पूछेगा कि कितने व्यूज आए, कभी बस ये पूछ लीजिएगा कि इस इंसान की जिंदगी में मैं क्या फर्क ला सकता हूं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आज की बात का ये छोटा सा सार है, दुनिया किसी को एक पल के लिए नोटिस कर सकती है, लेकिन किसी एक इंसान का भरोसा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपकी जिंदगी में वो नेहरू कौन है? और इससे भी बड़ी बात, क्या आप किसी के लिए नेहरू बन सकते हैं? सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक सिर्फ किसी की हंसी पर हंसिए मत, कभी उस हंसी के पीछे की कहानी भी समझिए। हो सकता है वो बहुत कुछ कह रही हो। नमस्कार।
1: कागजाते बो बवरन लाग रे बलदा की सू अड़ा मानुष की कीमत कोनी, करना था बहुत कुछ था भाई जीवन में, पर हिम्मत कोनी।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आलोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपना विशेष कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग लेकर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम के कई रंग हैं, करुणा, ममता और ईश्वर के लिए ग्रेटिट्यूड के रंगों से भरा है आज का हमारा ये संवाद। दोस्तों, जिंदगी हमें कई बार ऐसी राहों पर ले जाती है जहां हिम्मत, धैर्य और विश्वास की सच्ची परीक्षा होती है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद है जिनकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि उम्मीद, कृतज्ञता और गिफ्ट ऑफ लाइफ की कहानी है। आज हमारे साथ हैं शमीम जी, जो उदयपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर सीए बनी और बाद में अमेरिका जाकर सीपीए किया। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है। शमीम जी एक माँ है, एक ऐसी माँ जिन्होंने अपने छोटे बेटे को 3 बार लिवर ट्रांसप्लांट जैसे बेहद कठिन दौर से गुजरते हुए देखा। अस्पताल, आईसीयू, वेटिंग लिस्ट और अनगिनत डर के पलों के बीच उन्होंने साहस नहीं खोया बल्कि इस अनुभव को समाज के लिए एक मिशन बना दिया। आज शमीम जी मोहन फाउंडेशन इंडिया और गिफ्ट ऑफ लाइफ यूएस से जुड़कर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, ताकि किसी और परिवार को वह दर्द न सहना पड़े जो उन्होंने सहा। आइए उनकी जिंदगी की असाधारण यात्रा को उनके शब्दों में ही सुनते हैं। शमीम जी, आपका हमारे रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आलोक जी और नमस्कार श्रोतागणों, आई एम वेरी हैप्पी टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू।
1: तो शमीम जी, शुरुआत करते हैं आज की इस बातचीत की, इस प्रेरणादायक बातचीत की। आप उदयपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, अपने स्कूल बचपन, स्कूलिंग और उदयपुर से जुड़ी हुई कुछ यादों के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ कुछ कुछ बातें शेयर कीजिए, कुछ बताइए उदयपुर के बारे में, अपने बचपन के बारे में।
2: आलोक जी, जब आप उदयपुर का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है मैं टेलीपोर्ट होके अपनी उदयपुर की उन गलियों में आ गई हूँ जहां मैंने अपना पूरा बचपन और जिंदगी गुजारी है। मैं एक बहुत ही लोअर मीडियम क्लास फैमिली में पैदा हुई हूँ जहां मेरे पेरेंट्स के लिए स्कूल की फीस देना भी मुश्किल था। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल, कम्युनिटी स्कूल्स के थ्रू ही हुई है, बहराइती स्कूल और तैयबिया स्कूल। और फिर उसके बाद सेकेंडरी के लिए मैंने आरएमवी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई है। तो मैं ये कहूंगी कि जब तक कम्युनिटी स्कूल में थी, एक फैमिली में थी, मैंने अपने बोहरा समुदाय से आगे जिंदगी और कल्चर देखा नहीं था। जब आरएमवी स्कूल गई तो ऐसा लगा जैसे कि दरवाजे, खिड़कियां सब खुल गई है टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें जो मुझे उस स्कूल में सीखने को मिली, जिंदगी की छोटी छोटी बातें जो कि हम ओवरलुक कर देते हैं, वो कल्चरल डिफरेंस, बहुत कुछ रहना करना, सब हम मुझे उस स्कूल और आरएमवी स्कूल में, वहां पे मुझे सीखने को मिला। काफी टीचर्स मेरी अभी भी, प्रिंसिपल मैम से मैं अभी भी जुड़ी हुई हूँ, अभी भी उनसे मिलती हूँ, शी वॉज माई मेंटोर। तो अगर आप इजाजत दे तो एक मैं अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि स्कूल लाइब्रेरी में एक बार मुझे मदर टेरेसा की बुक हाथ लगी थी रीडिंग असाइनमेंट में। वो बुक मैंने पूरी पढ़ ली और मैं इतनी प्रेरित हुई थी उनसे, और मैं स्काउट गाइड में भी थी, स्काउट गाइड के थ्रू हम साक्षरता अभियान और एनवायरमेंट कैंप और हम बहुत कुछ सोशल कम्युनिटी के लिए करते थे। तो मदर टेरेसा के एक्सपीरियंस से और ये स्काउट गाइड का जो मेरा ट्रेनिंग था उससे प्रेरित होके मैंने अपने कुछ सहेलियों को लिया और हमारे स्कूल उदयपुर में एक जो झोपड़ी पट्टी का पूरा जो इलाका है वहां जाके कुछ सहेलियों के साथ मैंने कहा कि हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, बिकॉज मदर टेरेसा का था वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर को हेल्प करती है. तो बस दिमाग में ये प्रेरणा थी कि भाई हमें कुछ करना है समाज के लिए. तो हमें उस वक्त बच्चे बचपन का दिमाग था, मतलब 7वीं 8वीं की बात कर रही हूँ, तो हम वहां चले गए. बट कुछ दिन हमने पढ़ाया, एक्सपीरियंस भी हुआ. फिर जब स्कूल में पता चला, घर वालों को पता लगा, तो फिर थोड़ी सी खिंचाई हुई कि भाई बिना बताए यंग गर्ल्स इस तरह से नहीं जा सकती. और कुछ लोगों ने समझाई, करे लोग जो तुम्हें बोलते हैं कि गरीब है वो गरीब नहीं होते, उनके पास खूब पैसा है, वो तो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं. ये बात मुझे बहुत आहत की, तो मैंने मदर टेरेसा को खत लिखा. 8वीं या 9वीं क्लास में थी, मैंने मदर टेरेसा को खत लिखा कि आपने कैसे पहचानते हो कि ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर, गरीबों में गरीब है. मैंने यहाँ पे कोशिश की, लेकिन लोगों ने मुझे बोला कि हाँ वो धोखा देते हैं. तो पता है मदर टेरेसा ने मुझे वापस जवाब भेजा. मैंने अभी तक वो लेटर प्रिजर्व करके रखा हुआ है. उन्होंने उसमें मुझे पहले तो समझाया कि बेटा अभी ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तो तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो. और अच्छी बात है कि तुम्हें समाज की सेवा का जो ये उत्साह है ये कंटिन्यू करना. लेकिन एक बात जो मैंने अपने यहाँ पे फ्रेम करके लगाई हुई है और हमेशा अपने दिल के पास है, उन्होंने उसमें लिखा था कि इफ पीपल चीट अस, गॉड विल नॉट चीट अस, एंड वी आर डूइंग इट फॉर गॉड. ये इतनी बड़ी बात इतने सीधे शब्दों में जो उन्होंने बताई, वो मैंने आज तक गांठ बांध के रखी हुई है, और बहुत ही अच्छी बात है. और अब जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मुझे बस यही लगता है कि मैं अल्लाह की राह में कर रही हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ, सामने वाले को देख के नहीं कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस, मेरा बहुत छोटा स्कूल का एक्सपीरियंस है, बट इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट.
1: ब्यूटीफुल शमीम जी, आपने तो बिल्कुल शुरुआती और अद्भुत बात है, आपने मदर टेरेसा को चिट्ठी लिख दी।
2: हाँ
1: कमाल है,
2: जी
1: कमाल है। मतलब एक छोटी सी बच्ची, कुछ अगर वो महसूस हो रहा है उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है, और मदर टेरेसा को चिट्ठी लिख रही है, और उसके बाद में उस खत का जवाब भी आ रहा है। वाह!
2: बिल्कुल.
1: और
2: हाँ
1: मदर
2: जी
1: टेरेसा की जो लाइन्स है वो तो बहुत ही, मतलब क्या फ्रेम करने लायक ही है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप जब किसी के लिए भला कर रहे हो तो ये मत सोचो उसके बारे में, आप जो कर रहे हो उसके बारे में सोचो, वो क्या
2: बिल्कुल
1: है क्या नहीं
2: बिल्कुल
1: है उसके बारे में मत पूछो। वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। विवाह के बाद आप अमेरिका शिफ्ट हुई, तो यूएस जाने का निर्णय कैसे लिया और जीवन का ये नया चैप्टर कैसे शुरू हुआ?
2: सीए फाइनल के वक्त में मेरी सगाई हो गई थी. तब मैं फियांसे यही हैदराबाद में, ही इज इंजीनियर, तो हैदराबाद में जॉब थे. फिर उनको वहां यूएस से जॉब ऑफर आया, तो उन्होंने कहा भाई इस तरह से जॉब ऑफर आया तो यूएस जाना है. उस वक्त तक हम दोनों का ये था कि हम दोनों का एक ही सपना था कि हमें दुनिया घूमनी है, और कुछ नहीं था, सिर्फ दुनिया घूमनी है. और ये लग गया था कि उस वक्त इंडिया का जॉब मार्केट जो था, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 1998-99 के वक्त में, आज तो इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन उस वक्त ये था कि अगर हमें ये सपना पूरा करना है तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा. इस छोटी मोटी जॉब से हम ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे. तो जब उनका यूएस का आया तो मैंने कहा कि ठीक है आप चलो, और जो भी होगा विल मेक इट टुगेदर, अपनी जिंदगी साथ में बनाएंगे. तो बस उनका जैसे ही वीजा और जॉब का जाने का हुआ, तो हमारी आनन फानन में शादी हो गई. बिकॉज ये था कि मैं बिना शादी के तो आऊंगी नहीं यूएस, और उनका यूएस जाने के बाद पता नहीं कब इंडिया आना हो. तो यूं समझ लो कि हमारे 15-20 दिन की नोटिस में हमारी शादी हुई, कि शादी करके वो यूएस आ गए. फिर जब वो यहाँ पे सेटल हुए तो उन्होंने मुझे स्पाउस वीजा भेजी, और 8-9 महीने बाद मैंने उनको ज्वाइन किया. तो इस तरीके से मेरा यूएस आना हुआ.
1: तो चलिए, आपकी यूएस फ्लाइट को लेकर और यूएस का आपका जो जाना हुआ, जो शिफ्टिंग हुई, इस पे हम रुक जाते हैं और एक गाने का मजा लेते हैं, कोई गाना सुनते हैं इसी से, आपके सफर के लिए।

0: तो अब शमीम जी, हम थोड़ा सा रुख बदलते हैं बातों का, और अब एक जो मुश्किल दौर आपकी जिंदगी में आया उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। आपकी जिंदगी के सबसे कठिन दौर की बात करेंगे अब हम। आपको पहली बार कैसे पता लगा कि आपके दूसरे बेटे के साथ कुछ सीरियस मेडिकल कंडीशन है, इसके बारे में कैसे पता लगा, क्या हुआ?
1: हाँ जी, तो लाइक व्हेन वी थॉट कि चलो अब लाइफ सेटल हो गई, हो गया स्ट्रगल का एक दौर, लेकिन मेरा ये मानना है कि भगवान जिसे प्यार करता है ना, उसको आजमाता भी बहुत है. तो सेकेंड बेबी के वक्त में ही वो बहुत रोता था. वो बिल्कुल भी मतलब बिस्तर पे सोता ही नहीं था, हाथों में ही सोता था. तो लोगों ने कहा कॉलिक है, गैस है, डॉक्टर्स को भी बताया. फिर धीरे धीरे वो पेल, उसकी स्किन पे येलो इश वो दिखने लगा. तो 4 महीने का जब उसका डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, रेगुलर अपॉइंटमेंट, वो बहुत रो रहा था. तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इतना क्यों रोता है. मैं कहा ये तो ऐसे ही रोता है. तो डॉक्टर को लगा कि नहीं, कुछ सही नहीं है. तो उन्होंने फिर सारे मेडिकल टेस्ट उसके हमें किए, और जब रिजल्ट आया तो उन्होंने वापस से हमें कैट स्कैन के लिए भेजा कि रिजल्ट डजंट लुक गुड. इसका एमआरआई और ब्लड वर्क मतलब उसका जो बिलीरुबिन था बहुत हाई था. बिलीरुबिन एक ब्लड में एक होता है जिससे कि वो येलोइशनेस लिवर का इशू बताता है. तो कैट स्कैन के
0: जॉन्डिस
1: लिए
0: में,
1: भेजा. हाँ जी,
0: जॉन्डिस में
1: जॉन्डिस
0: बढ़
1: था,
0: गया
1: जॉन्डिस
0: था, बढ़ता।
1: जॉन्डिस देख रहा था उनको. और वहां पे हमें बोला कि हो सकता है कि कोई एक सर्जरी करनी पड़ेगी उसका लिवर के लिए, तो तुम्हें वहां पे आके कोई पीडियाट्रिक सर्जन आपको डॉग हॉस्पिटल में मिलेगा. हम वहां वेट कर रहे हैं. एनेस्थीसिया था बच्चे को छोटा, क्योंकि कैट स्कैन किया था, तो हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं. वहां पे पीडियाट्रिक सर्जन आया और बोला कि ये केस तो मेरा नहीं है, तुमसे ट्रांसप्लांट सर्जन आके और मिलेगा, ही नीड अ लिवर ट्रांसप्लांट.
0: वाह,
1: अब आप सोचिए कि छोटे बच्चे को लेके बैठे हैं पेरेंट्स. हम तो दिखाने गए थे, मेरा बड़ा बेटे को हमने डे केयर में भेजा हुआ था, मेरे पेरेंट्स थे उस वक्त साथ में, क्योंकि वो मुझे हेल्प करने के लिए आए थे डिलीवरी के लिए. तो इट वॉज सो शॉकिंग कि आप क्या बोल रहे हो, ना तो कोई दवाई, ना कोई छोटी मोटी सर्जरी, आप सीधा बात कर रहे हो कि भाई बस ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा.
0: माय गॉड।
1: हम दोनों बहुत शॉक था लाइक. लेकिन उस वक्त मैं ये कहूंगी कि ये हमारी बात है अक्टूबर की, बैक इन 90 सॉरी अक्टूबर 2006. उसी साल में जुलाई में यहाँ इंडिया में मेरे जेठ जी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, और भाभी ने अपना पार्ट ऑफ लिवर उनको डोनेट किया था. तो उनका सक्सेसफुल वो ट्रांसप्लांट जर्नी देखते हुए थोड़ी सी उम्मीद थी दिल में कि ये भी एक सॉल्यूशन है, हो सकता है ठीक, और देर इज अ चांस है, देर इज अ रोड. लेकिन बहुत शॉकिंग था, हमने बहुत टाइम तक किसी को नहीं बताया फैमिली में, बिकॉज अगर हमें इतना शॉकिंग लग रहा है तो इंडिया में पेरेंट्स को हम कैसे बताएं कि यूएस से. एक तो आप सामने बात कर सकते हो, फोन पे तो बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है. तो हमें फिर सारे हमने दूसरे हॉस्पिटल्स में भी बताया, सेकेंड ओपिनियन लिया. तो उसकी जो जर्नी है वो बस वहां से जो चालू हुआ, तो दैट वॉज आवर इनिशियल आई वुड से द रिस्पॉन्स एंड न्यूज हाउ वी गॉट इट.
0: नहीं, ये तो बहुत ही शॉकिंग है। तो जब सिम्टम्स आपने बताई दिए उस बच्चे को, क्या हुए थे स्किन पे, और ये भी बताया कि आपने, डॉक्टर ने आके सडनली आपको कह दिया कि ये तो ट्रांसप्लांट का केस है, तो आई
1: हाँ
0: कैन
1: जी,
0: अंडरस्टैंड कि क्या स्थिति हुई होगी यार। और ये भी बात सही है कि दादा दादी नाना नानी को बताना, ऐसे बताना भी बहुत मुश्किल होता है कि ये हो रहा है हमारे साथ, ये दिक्कत आ रही है इस बच्चे के साथ। तो जब डॉक्टर्स वहां इस तरह से आके सडनली कह देते हैं लिवर ट्रांसप्लांट की बात उन्होंने कह दी, आपको कुछ मेंटली प्रिपेयर नहीं कराया उन्होंने, और ये नहीं बताया कि भाई इसको प्रॉब्लम क्या है, ऐसी कोई बात नहीं कही उन लोगों ने वहां, क्या हुआ?
1: हाँ, तो ये एक शॉकिंग था, मतलब बिकॉज यहाँ पे वैसे मेडिकल सिस्टम में तो एथिक्स के हिसाब से भी आप देखो तो पहले पूरा फैमिली को यू हैव टू गेट इट लाइक ट्रस्ट में आपको लेना पड़ता है, आराम से बताना होता है। ये हमारे लिए
0: काउंसलिंग
1: काउंसलिंग होती है प्रॉपर, वो काउंसलिंग हमारी फिर बाद में हुई, बिकॉज वो
0: होती
1: जो तो वो दूसरा हॉस्पिटल था हमारे, लकीली हमारे घर के पास दो बहुत अच्छे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल थे, एक तो निमोर्स ड्यूपोंट का था और एक
0: बात
1: चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया। तो
0: ओके
1: जब निमोर्स में हमें ये सब हुआ, फिर उन्होंने पूरा डायग्नोस सारे टेस्ट किए, सब कुछ किया, फिर हमने कहा हम सेकेंड ओपिनियन के लिए एक दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, और चॉप चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया वॉज मच मोर बिगर और काइंड ऑफ नंबर वन था इसमें।
0: नंबर
1: तो फिर हम जब यहाँ पे आए ना, उन्होंने हमें पूरा, यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी बहुत अच्छी थी, काउंसलिंग भी उन्होंने हमें बहुत अच्छी की, लाइक दे टुक अस अंडर देयर अम्ब्रेला, और हमें सारा, तो वो जो जर्नी जो चालू हुई ना, तो बिकॉज अभी शुरुआत हुई है तो हर 10 दिन में, मतलब 10 दिन भी नहीं बोलूंगी, हफ्ते भर में उसको क्या कि उन्होने फिर ट्राई किया कि कुछ बाइल डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने एक बैग लगाया, बट फिर
0: ओके
1: उसको क्या कि हर थोड़े थोड़े टाइम में फीवर होता था, फीवर सीधा 102 डिग्री के ऊपर जाता था। तो उसके लिए क्या कि उनको आईवी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तो उसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता 14 दिन के लिए, घर पे आता 4 दिन में फिर से हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो ये जो हमारा है अगले 6 महीने बस हमारे इन आउट हॉस्पिटल के ही चक्कर लगते रहे। हमने उसी वक्त लाइक बड़े बेटे को तो यूं समझ लो कि भगवान ने उसी वक्त बड़ा कर दिया था, इतना समझदार, इतना कोऑपरेटिव हमारे साथ, उसकी तरफ से हमें बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमारा पूरा ध्यान हमारे छोटे बेटे की उसमें लग गया था कि कैसे इसको कर सकते हैं, और डॉक्टर्स हमें समझाते रहे, बस हम उस पाथ पे चलते रहे।
0: ओके अच्छा ये बताइए शमी, उस टाइम छोटे वाले बेटे की उम्र क्या थी जब ये सब हुआ?
1: हाँ, वो जब डायग्नोज हुआ वो 4 महीने का था, तो हाँ जी हाँ
0: 4 महीने
1: जी।
0: का, ओ गॉड,
1: तो
0: इतना
1: एक
0: छोटा
1: चीज और, मैं आप
0: होगा
1: बहुत बहुत, लेकिन मैं एक चीज
0: मेरे
1: और बताती चलूँ, यहाँ पे उनोज करके यूएस में, विच इज यूनाइटेड नेटवर्क ऑफ ऑर्गन शेयरिंग, एक
0: को।
1: सोसाइटी मतलब संस्था है पूरी कंट्रोल, वो लिस्ट बनाती है, तो बच्चे के सिम्टम्स के हिसाब से, बच्चा हो या एडल्ट, मतलब जो भी ट्रांसप्लांट का वेटिंग लिस्ट में, तो बेसिकली वो वेटिंग लिस्ट बनाती है और बेस्ड ऑन द सिम्टम्स वो उसमें लिस्टेड होता है। तो उन्होंने उस वक्त हमारे बेटे को लिस्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने तभी हमें कह दिया कि इंतजार तो करना पड़ेगा, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, और उसपे ये था कि भाई हमने लाइव ट्रांसप्लांट वाला, हमारे पास एग्जाम्पल था मेरे जेठ जी का, तो हमने कहा कि मेड भी डोनेट कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, डिलीवरी के बाद कम से कम 6 महीना तो माँ को भी टाइम देना पड़ता है बिफोर यू कैन गो बैक फॉर अनदर सर्जरी। तो इसलिए था कि 4 महीने में डायग्नोज हुआ, 2-4 महीने तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, तो इसलिए वी वर जस्ट कंटिन्यूली वेटिंग एंड ऑब्जर्विंग, हॉस्पिटल इन एंड आउट हो रहा था और बस उसके जो नंबर्स थे वो फॉलो कर रहे थे। हाँ
0: भाई ये आपकी इस जीवन का सफर में जो जो ये मुश्किलात आई, जो जो स्ट्रगल हुई, इसको तो हम एक इसी तरह का एक गाना सुनते हैं या रुक के शमीम जी, और फिर आगे बातचीत करते हैं।

0: हाँ शमीम जी, आपके बेटे को एक नहीं बल्कि 3 बार लिवर ट्रांसप्लांट से गुजरना पड़ा। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए ये पहले ट्रांसप्लांट से लेकर थर्ड प्लांट ट्रांसप्लांट तक की जो ये पूरी जर्नी रही या पूरी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा, कुछ ब्रीफ में बताएंगी हमें क्यों हुआ ये? पहले ट्रांसप्लांट में काम क्यों नहीं हुआ, फिर तीसरे तक क्यों गई बात, बताएंगी कुछ?
1: हाँ हाँ जी. इट इज रियली डिफिकल्ट. जब वो बात सोचती उस बात को, अभी आज 19 साल हो गए. लेकिन जब भी वो तारीख आती है, हर साल वो हफ्ता आता है. ये 3 जो हुए हैं एक हफ्ते में हुए हैं, फ्राइडे टू फ्राइडे के बीच में. तो वो जब एक हफ्ता आता है तो पूरा मेरा फिर से ऐसा लगता है कि आई एम रीलिविंग दैट मोमेंट. तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो इट इज नॉट अनकॉमन जो कि फर्स्ट ट्रांसप्लांट के बाद हुआ. तो जब मेरे बेटे का फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो उसमें क्या होता है कि यूनोस में, मैंने जैसे बताया, वेटिंग लिस्ट में था. तो वेटिंग लिस्ट में होता है कि यहाँ पे थैंकफुली ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस काफी है. तो जब अवेलेबल होता है तो एक गिफ्ट ऑफ लाइफ करके एक संस्था है जो कि इन्फॉर्म करती है कि भाई हमारे पास ये ऑर्गन अवेलेबल है डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को. तो ऐसे एक बच्चे का आया उस वक्त. आई थिंक वो, हमें क्या पूरा डिटेल नहीं पता होता है डोनर का, बट हमें थोड़ा आइडिया मिलता है. तो वो एक बच्चे का था. तो उन्होंने कहा कि हम इसको ट्रांसप्लांट के, उस तब तक मेरा भी इवेल्युएशन हो चुका था. मैं भी तैयार थी कि भाई मेरा अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना पार्ट ऑफ लिवर अपने बच्चे को डोनेट कर दूंगी. लेकिन वो हमें आ गया कैडावर. कैडावर इज लाइक आफ्टर डेथ कोई फैमिली ऑप्ट करती है कि भाई हम डोनेट करेंगे. तो बच्चे का ट्रांसप्लांट हो गया. डॉक्टर्स, और ट्रांसप्लांट सर्जरी 8 घंटे की होती है वो छोटे बच्चे पे, तो इट टेक्स टाइम टू रिकवर. तो आईसीयू में था, डॉक्टर्स फॉलो कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था. 2-3 दिन बाद, तीसरे दिन, डॉक्टर्स और सब उसकी टीम ने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, हम इसको कल नॉर्मल उसमें ट्रांसफर कर देंगे वार्ड में. तो तो हमने सोचा चलो एक रात तो हम जाके पूरी नींद ले सकते हैं. मतलब आप सोच सकते हैं कि एज अ
0: सही बात,
1: पेरेंट्स विथ सिक चाइल्ड क्या रही होगी.
0: नहीं बहुत ट्रॉमा है आपके।
1: हमने घर आके, और सुबह सुबह हमें कॉल आया कि भाई वी नीड यू होम, देयर इज सम कॉम्प्लिकेशंस इन द नाइट और आप आओ. जब हम पहुंचे तो उसका जो आईसीयू कमरा था वो पूरा भरा हुआ, सर्जन्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, और वहां पे उसकी ट्रांसप्लांट सर्जन थी, वो बैठी हुई थी. जैसे ही मैं अंदर गई, वो मैं उनके पास जाके बैठी, तो उसने मेरे हाथ पे हाथ रख कर बोला कि इस तरह से रात को जब इसका, वो बिकॉज यूरिन मेजर कर रहे थे, छोटा बच्चा है बोलेगा तो नहीं, तो देवर ऑल मेजरिंग उस पल्स एंड ऑल दैट. तो उसमें उनको पता चला कि इसका यूरिन बनना बंद हो गया, मतलब किडनी फेलियर है. और किडनी फेलियर है मतलब कि लिवर फेलियर हुआ है तभी किडनी तक ब्लड नहीं हुआ है किडनी. तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से हमें पता चला कि इसका जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट है, इट्स नॉट वर्किंग, लिवर इज नॉट वर्किंग, किडनी इज नॉट वर्किंग, तो वी मे नीड टू गो फॉर अनदर ट्रांसप्लांट. तो उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रख के बोला कि यू आर देयर राइट. उनका सवाल ये था कि अगर अभी मेरे बच्चे को लिवर की जरूरत पड़े तो मैं तैयार हूं देने के लिए, ये उसके सवाल का मतलब था. मैंने
0: मतलब
1: इमीजिएटली कहा, मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अगर जरूरत पड़े मैं अभी का भी अपने बच्चे को पार्ट ऑफ लिवर. बिकॉज उस वक्त जो उसकी हालत थी, दैट वाज कि अगर 24 घंटे में हमें दूसरा लिवर नहीं मिला तो उसको बचाना मुश्किल है. ही वॉज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में. लेकिन अवेयरनेस है, बट उतना भी अवेयरनेस नहीं है कि भाई आपको इमीडिएट कोई दूसरा ऑर्गन मिल जाएगा. हर कोई इतना नहीं सोचता है ऑर्गन डोनेशन के बारे में. तो हमने कहा चलो ठीक है. और रात तक में ये हुआ कि बच्चे को हमें दूसरा मिल गया. बट एक चीज और मैं बताऊं, कि मैं बताया कि किडनी फेलियर भी था. तो अगर किडनी क्या करती है, हमारा पानी जो एक्स्ट्रा फिल्टर करके निकालती है, अब बॉडी से फ्लूइड नहीं निकल रहा, उसका बॉडी बलून की तरह, गुब्बारे की तरह फूल चुका था. तो बहुत मुश्किल से उसको स्टेबलाइज कर रहे थे, ये कर रहे थे. बट ये कि रात तक हमें न्यूज आई कि भाई दूसरा हमें मिल गया है डोनर, तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वी विल टेक हिम एंड विल हैव अनदर ट्रांसप्लांट। ठीक है, ट्रांसप्लांट वही 8 घंटे वेटिंग वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं। डॉक्टर ने आके बोला कि भाई उसकी कंडीशन बहुत ही नाजुक थी, ट्रांसप्लांट तो हमने कर दिया, लेकिन अब भगवान भरोसे वी विल टेक आवर बाय आवर, ही इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। हमने कहा चलो, मतलब आप ये सोच लो कि उस टाइम तक दिल से सिर्फ दुआएं निकल रही थी,
0: बस बस बस
1: और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जो साथी थे यहाँ पे, हमारे कजिन्स थे जो आसपास रहते थे, वो भी हमारे साथ वहां पे आ गए थे, वो हमारे साथ शामिल थे।

0: हमें सपोर्ट कर रहे थे, मेरे पेरेंट्स थे, और साथ में हमने क्या किया था कि बिकॉज वी वर सो मच इन्वॉल्व विथ हिम, वी कुड नॉट
1: अच्छा
0: टेक ऑल द फोन कॉल्स घर से और जो दोस्तों के आते थे. तो हमने एक फोरम था ऑनलाइन, वहां पे हम उसका स्टेटस अपडेट करते रहते थे कि भाई क्या चल रहा है, उसका ट्रांसप्लांट हो गया, इज आउट ऑफ इट, या वो वापस से ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग कर रहे हैं, दूसरा होगा. तो यूं समझ लो पूरी दुनिया से उसके लिए दुआएं आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे. और एक लिवर फोरम करके था जहां पे कि सारी फैमिलीज जिनके बच्चे आर गोइंग थ्रू दीज लिवर इश्यूज, उनका एक लिवर फोरम था. तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा था. तो वहां से भी सब जगह से, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, इंडिया, आप मान लो कहाँ कहाँ से उसके लिए दुआएं नहीं आ रही थी. लेकिन वो दूसरा हुआ, बट कंडीशंस बहुत नाजुक थी. 2 दिन उन्होंने, मतलब जो 24 to 48 hours वेट किया, लगा ये नहीं वर्क कर रहा है, उन्होंने कहा वी हैव टू रीलिस्ट हिम अगेन, वी नीड टू गो फॉर द थर्ड वन.
1: मैं तो सुन के मुझे सेवन हो रही है शमीम जी, आपकी सारी बातें। चलिए फिर आप बताइए।
0: तो उस वक्त फिर मुझे लगा कि चलो अब, मतलब तीसरी बार तो आप सोच ही नहीं सकते, 2 बार पी के भगवान ने साथ दे दिया, आपको कैडावर डोनर मिल गया. तीसरी बार तो मैंने उसकी डॉक्टर को बोला, अच्छा तीसरी बार तो अभी आप मेरा ही लेंगे. उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम आपका ले भी नहीं सकते, बिकॉज 2 बार उसका हो चुका है, तो अब तीसरी बार तो हमें कैडावर ही चाहिए, क्योंकि उसकी वेन्स इतनी कट चुकी है कि अभी हमें लंबी वेन्स लेनी होगी लिवर को जोड़ने के लिए, और वो हम लाइव पर्सन में से नहीं ले सकते. तो आप वो सोचो कि वो जो मोमेंट जब डॉक्टर ने बोला, मैं अपनी सारी उम्मीद, सारी आशाएं खो चुकी. मैं क्या, हमारे पेरेंट, मतलब हस्बैंड भी, हम स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर हम अपने बच्चे का कोई ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं तो करेंगे. हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद भगवान की यही मर्जी है, एक्सेप्ट कर लिया ऊपर वाले की मर्जी. हालत तो बुरी थी, साथ वाले सब परेशान हो रहे थे, रोना और वो भी चल रहा था, एंड आई वाज लाइक टोटली इमोशनलेस. मेरे आंख उस वक्त एक आंसू का कतरा नहीं गिरा, उसके पहले मैं बहुत रो चुकी थी. बस भगवान की मर्जी मान के एक्सेप्ट कर लिया. शाम तक वापस से डॉक्टर की टीम आई कि हमारे एडजेसेंट हॉस्पिटल, जो एडल्ट हॉस्पिटल था, वहां पे किसी और के लिए ऑर्गन अवेलेबल हुआ है, लिवर अवेलेबल हुआ है. वेटिंग लिस्ट से पता चलता था कि भाई अवेलेबल है. तो डॉक्टर की ट्रांसप्लांट टीम सेम थी, सर्जन टीम. उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पार्ट ऑफ लिवर इसको बड़े पेशेंट को देते हैं, छोटा जो लेफ्ट लोब है हम यंगर पेशेंट को दे देंगे, तुम्हारे बेटे को दे देंगे. मैंने कहा लाइक, उस वक्त भी मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा उसका ब्लड ग्रुप क्या है. तो बोले ओ, और पता है तब मैं अपना, मेरा बेटा है सामने, बट उस वक्त क्या कि हम हॉस्पिटल में इतना टाइम रह रहे थे ना, हमें दूसरे पेशेंट्स का भी पता था. तो मैंने कहा अच्छा वो नादिया है, उसको ओ ग्रुप उसका मिल नहीं रहा है, बहुत टाइम से वो वेट कर रही है, तो मेरे बेटे पे तो काम कर नहीं रहा है. एक दो तीसरी की बात आ गई, तो मैंने कहा ये हम लिवर उसको जाने देते हैं. तब मुझे सबने डांटा कि अरे शमीम, अगर अभी किसी को जरूरत है तो तेरे बेटे को जरूरत है, एक तो कैसे सोच सकती है कि उसको दे. बट आई थिंक शायद भगवान का यही इम्तिहान था मेरे लिए कि मैं उस वक्त भी इतनी अवेयर हूं कि मुझे दूसरों का ख्याल है कि मैं मतलबी हो गई हूँ. शायद वो मैं अब मुझे बैक एंड में मुझे यही लगता है कि वो मेरे लिए इम्तिहान था. और बस वो जो पीस ऑफ लिवर जो मेरे बेटे को मिला, वो आप देखो एक लिवर से दो जाने बची है. वो आया किसी और के लिए था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मेरा बेटा जिए. तो उस टाइम थर्ड ट्रांसप्लांट के बाद वो उसका फिर आगे की जर्नी चालू हुई. तो जो सारे मैसेजेस आ रहे थे ना, उसमें एक मैसेज बहुत अच्छा आया था कि वी कैन नॉट गो बैक टू द बिगिनिंग एंड मेक अ हैप्पी एंडिंग, ओ रीस्टार्ट, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड मेक अ हैप्पी एंडिंग. और किसी ने बोला कि थर्ड टाइम इज अ चार्म, तो बस हमने वही मान लिया, दुआएं चलती रही. और आज अल्हम्दुलिल्लाह के 19 साल बाद मैं आपसे ये सारी बातें कर रही हूँ.
1: भाई ये तो अल्लाह ताला की खास मेहर है आपके ऊपर। मैं तो सुन के ही, मुझे आपकी सारी ये जितना आपने सुनाया इसको सुन के मुझे यहाँ बैठ के सिहरन होने लग गई कि कैसे कोई इस सारे ट्रॉमा से गुजर सकता है और एक चार महीने पांच महीने का छोटा बच्चा, उसको इतना सब कुछ झेलना पड़ा, इतना कुछ होना पड़ा, और क्या क्या, और किडनी फेल हो जाना, क्या पता वो कहते थे डायलिसिस करो इसका, इतने छोटे बच्चे का तो क्या डायलिसिस होगा।
0: हाँ, उसमें वो किडनी जो स्पेशलिस्ट आए थे उन्होंने हमसे साइन कराया था, वो वेवर साइन कराते हैं भाई हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें बोला था कि भाई हम है ना, तो आई कैंट प्रॉमिस बट वी विल ट्राई, तो मैंने कहा बस आप अपनी कोशिश कीजिए, आगे भगवान की मर्जी। और वो जब हम वापस पोस्ट ऑफ विजिट में गए ना साल भर बाद, वो डॉक्टर अपने फेलोज के साथ, दूसरे जो रेजिडेंट्स जो होते हैं डॉक्टर, उसको बोलता है कि आई डोंट बिलीव इन मिरेकल, बट इस बच्चे को देख के कह सकता हूँ कि ही इज अ मिरेकल बेबी।
1: मेरे मिरेकल है, मिरेकल है, बिल्कुल, इससे बड़ा कोई मिरेकल नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो शमीम जी चलिए, बस मैं तो अब एक छोटा सा सवाल ही बता दीजिए, ऐसी क्या शक्ति आपके अंदर थी कि आपने अपने आप को एक माँ के रूप में भी इतने दर्द के दौरान अपने को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा? कोई प्रेयर, बिलीफ या थॉट था जो आपको संभालता रहता था? कोई ऐसी ताकत थी जो आपको संभालती थी? बस छोटा सा जवाब दे दीजिए इसका, फिर आगे चलिए।
0: आप देखा जाए तो आपके सवाल में ही जवाब है, यहाँ कोई एक ताकत थी और उस ताकत पे मेरा यकीन और हमारा यकीन कलेक्टिवली आई वुड से, बट मेरा यकीन तो मतलब कह रही हूँ ना, बहुत ही शुरू से, मतलब बचपन से तो डाला ही गया था कि भगवान में यकीन, प्रेयर्स का और पूरा जो रूटीन सिस्टम था, तब तो हम जबरदस्ती करते थे, लेकिन वो जो धीरे धीरे जो देखा ना कि हाँ ऊपर वाला सुनता है, दिल से निकली हुई दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। परमपिता ईश्वर आप जिसे भी मानते हैं, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि भाई देयर इज नो गॉड बट वन, एक ही भगवान है, चाहे हम किसी भी तरीके से पूजे प्रेयर करें, आवाज तो एक ही को जा रही है और वो सबकी सुनता है। तो वो जो विश्वास था वो बांधे रखा। और मैं पढ़ती भी हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ मैं, गीता भी पढ़ा हुआ है, बुद्ध का भी मैं पूरे सारा सब सुनती हूँ, आई लिसन टू ऑल द रिलीजन्स नॉट जस्ट वन, बिकॉज आई बिलीव कि मैसेज सब में एक है। तो और मैसेज एक ही है कि भाई प्यार करो और उदारता, भगवान पे विश्वास रखो, वो क्या कि जो भी करता है अच्छा करता है, और ये क्या ना विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। तो वहां पे जब हम आइस वेटिंग रूम और जो प्ले रूम होते थे हॉस्पिटल में भी, क्योंकि दूसरे बच्चे भी हैं तो हम मिलते थे जैसे दूसरे पेरेंट्स, और वो तो वहां पे ग्रैंडपा ने जब पता चला कि मैं, हमारा क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी बात कही थी कि हु गेट यू टू इट will get you through it, कि भगवान जो तुम्हें इस मुसीबत तक लाया वही इस मुसीबत से तुम्हें निकालेगा। तो वो जो विश्वास था ना, बस वही एक विश्वास था। और फिर जो मैंने बताया थर्ड टाइम तक, तो मैंने ये कि हमने एक्सेप्ट कर ली थी कि अच्छा ठीक है अल्लाह तेरी अगर यही मर्जी है तो हमें यही मंजूर है, शायद तूने हमारे लिए कुछ सोच रखा है, शायद इस बच्चे के लिए कुछ सोच रखा है। तो वो जो एक यकीन होता है ना जो बच्चे माँ बाप में करते हैं, बस मैं अपने ऊपर वाले में, बस मेरा उतना ही यकीन, मेरे को पूरा जर्नी जो है मेरे, बस एक ही दुआ करती हूँ मैं ऊपर वाले से कि कोई भी मुसीबत आए बस तू मेरा साथ मत छोड़ना।
1: तो चलिए ऐसी अल्लाह ताला के नाम पे और आपके इस विश्वास और ट्रस्ट के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं।

0: अच्छा शमीम जी, अब ये बताइए कि इस सारे ट्रांसप्लांट्स के बाद में क्या अभी भी कोई प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे इम्यूनिटी केयर, आइसोलेशन, या कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं बच्चे की लाइफ में बाद में आए आपके साथ, आपको ध्यान रखना पड़ता है उसका?
1: हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है ना कि आपका फॉरेन ऑर्गन आपकी बॉडी में है, तो इम्यूनिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज। बॉडी में थोड़ा सा भी जब अपने बैक्टीरिया होता है तो कैसे फाइट करके, फीवर आता है और बॉडी ट्राई टू रिजेक्ट इट, तो देयर वाज अ बिगेस्ट फियर कि बॉडी रिजेक्ट नहीं करे, तो इम्यूनो सप्रेसेंट। और जब वो आया था हॉस्पिटल से तो 14-15 मेडिसिन, पता नहीं क्या क्या पूरा वो सिस्टम चल रहा था उसके साथ। और तो उसमें हमारा सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये था कि किसी से हम ज्यादा मिले नहीं, बिकॉज अगर किसी और को थोड़ा सा भी सिकनेस है तो
0: इन्फेक्शन,
1: इसको इन्फेक्शन का डर था। तो
0: इन्फेक्शन आएगा.
1: हाँ, और अभी ये लोग समझ सकते हैं क्योंकि कोविड में सबने किया है। तो कोविड में जब लोगों को जब 2-4 महीने जो या साल भर जो अंदर रहना पड़ा था बंद के, महीना कुछ, वो हमने 3 साल ऐसे निकाले उस टाइम में कि बिल्कुल हमें किसी से मिलना नहीं है, उसका घर में ही। बट फिर सारी थेरेपीज चली थी उसकी, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिकॉज बच्चा तो बेड पे था, उसका सारा जो विकास होता है बचपन में, जो अपन बोलते हैं गोड़ी घिसना, थोड़ा सा पकड़ना, ताली बजाना, आ आ दादा बोलना, ये सारे जो विकास हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, ये बहुत जरूरी होते हैं, और वो उसका हुआ नहीं था। तो ही हैज टू गो थ्रू ऑल द थेरेपीज। 3 साल तक रिगरस थेरेपीज होती थी। उसने पता है गोरी घिसना पानी में सीखा, उसने चलना पहले पानी में सीखा, बिकॉज उसके पाँव में नर्व में सेंसेशंस नहीं थे। ही डिड नॉट टच द फीट ऑन द ग्राउंड, पूरा टाइम वो बिस्तर पे था। तो उसकी थेरेपिस्ट चॉप में, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो उसने सोचा कि ये बच्चा पाँव रखते ही चिल्ला के रोता है जैसे कि कांटे चुभ रहे हो। तो उसने क्या किया कि फ्लोटिंग मैट लगाई, उनके वहां पूल होता था छोटा वाला, उसपे फ्लोटिंग मैट पे उसने गोरी घिसना सीखा, फिर उसी पूल में उसने धीरे धीरे पकड़ के चलना सिखाया। आई मीन लाइक इस बच्चे ने तो सारी पता नहीं मतलब पूरे हिस्ट्री ही गाड़ दी अपनी एक के बाद एक, कि अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई मेरे बच्चे ने पानी पे गोरी घिसना सीखा है, पानी में चलना सीखा है, तो बोलेंगे क्या है ये, वाटर बेबी है। बट दिस वॉज ऑल द डिफरेंट वे वी हैड ट्राई। और प्रिकॉशन तो ये कि अभी एक दो दवाइयां हैं जो इसकी अभी भी चलती है, जो कि उसको जिंदगी भर लेनी है, और तो वो हम ध्यान रखते थे। फिर वॉमिटिंग भी काफी होती थी, उसके बाद भी एक आध और थोड़ा सा क्या कहते हैं सर्जरी, मतलब छोटी मोटी एक और हुई थी, बट चला था, बहुत टाइम लगा था उसको, 3-4 साल तो जस्ट टू गेट इट बैक टू एज अप्रोप्रिएट होने में बहुत टाइम लगा था।
0: तो चलिए, आपको पता बहुत ही कैसा सुकून लगता होगा जब आप अपने बेटे को कॉलेज जाते हुए देखती है, न्यूरोसाइंस पढ़ती है, पढ़ने पढ़ते हुए देखती है, ईगल स्काउट के रूप में देखती है, तो कैसा अंदर से तो बड़ा ग्रेटिट्यूड ही फील होता होगा, कैसा लगता है शमी?
1: एब्सोल्युटली, लाइक जिसका हम सोच नहीं पा रहे थे कि हम फर्स्ट बर्थडे मना पाएंगे, उसका हर दिन ग्रेटिट्यूड में हमारा थैंक्स, अल्लाह को थैंक्स करते हुए निकलता है। और हम ही नहीं, सब जने। उसके बाद आप ये देखो कि हमारे फ्रेंड्स भी हमें कॉल करते हैं जब उनको अगर कोई मेडिकल इश्यू ही होता है, वो बोलते हैं शमीम ये सर्जरी थी या ये दर्द हुआ था या ये कोई बीमार था, लेकिन हम तुम्हारा और बच्चे का सोच के हम है ना, तो हमें तसल्ली होती है कि अगर वो हो गया, अगर वो इतना मुश्किल से निकला है, ये हमारी मुश्किल तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। तो एक जो संभावना मिलती है, अब हमें अब ये लगता है कि दुनिया के हर प्रॉब्लम सब छोटे लगते हैं, राइट? तो ग्रेटिट्यूड जो एक आया है। दूसरा, हमने बच्चे को भी बताया है कि भाई ये तेरी जिंदगी बहुत बेशकीमती है, काफी लोगों ने अपने उससे बचाई है तुझे, तो तुझे जो ये अंग दान गिफ्ट ऑफ लाइफ मिला है, इट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ लाइफ यू हैव गॉट, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ इट। बट हमने कभी भी उसको ये नहीं किया कि उसको बबल में रखा, जिंदगी नॉर्मल जीनी है, स्कूल नॉर्मल होगा, एजुकेशन ग्रेड्स उसमें कोई कोताही नहीं होगी। इवन बॉय स्काउट्स का भी इसलिए भी ज्वाइन किया क्योंकि मैं खुद भी इंडिया में प्रेसिडेंट गाइड रह चुकी हूँ। आई हैड रिसीव प्रेसिडेंट गाइड अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन इन 1991।
0: अच्छा, यू आर प्रेसिडेंट गाइड, अरे वंडरफुल।
1: हाँ जी, तो स्काउट गाइड में है ना इतनी सारी चीजें सिखाते हैं, लाइक एक इंसान को मुकम्मल लाइक पूरा ट्रेन कर देते कि आप जिंदगी कैसे जियो। तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे को भी वैसा ही मिले, तो यहाँ पे हमने यूएस में ज्वाइन कराया था। तो उसने और उसने बहुत मन से शौक से वो जाता था, कैंपिंग्स भी जाता था, समर कैंप्स भी जाता था, वो अपनी दवाइयां साथ लेके जाता था, उसको पता था कि मेरे को ये करना है। बट कभी भी उसको ये महसूस नहीं होने दिया कि तेरे को कोई लिमिटेशन है। दवाई का रहता था कुछ, एक खाने पीने का ज्यादा नहीं था पर दवाइयों का थोड़ा था कि भाई ये दवाई ले सकता है ये नहीं ले सकता है, वो उसको प्रिकॉशंस पता थे। फिर ईगल स्काउट की जो जर्नी है ना बहुत हाईएस्ट रैंक है यूएस में भी, वेरी प्रेस्टीजियस, हमें सीनेटर से प्रेसिडेंट से भी लेटर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस के आए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक आपको प्रोजेक्ट करना होता है गिविंग बैक टू कम्युनिटी, दैट इज द थीम, कि आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें कि आप वापस से जितना आपको कम्युनिटी ने सपोर्ट किया आप क्या कर रहे हो उनके लिए। तो मेरे बेटे ने उसके एलिमेंट्री स्कूल के लिए आउटडोर क्लासरूम बनाया। उसके थैंकफुली उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि सब जने आके सबने हेल्प किया, वो भी सबकी हेल्प करता है, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब हाई स्कूल खत्म हुआ, अभी उसने जस्ट कॉलेज ज्वाइन किया है और आगे भी उसकी इच्छा है कि गिविंग बैक टू कम्युनिटी वाला जैसे मेरे में बीज जड़ा था बचपन में इसके भी है, और अल्लाह ने चाहा तो इसको मेडिकल प्रोफेशन में ही जा

0: 2007 से जुड़े हुए हैं। फिर ये हुआ अचानक कि मतलब वो कहते हैं ना कॉल भगवान की तरफ से कि मैं ये इतनी मुसीबत से मैं गुजारा, इसका कोई पर्पज होगा। बस उस पर्पज को मैंने अपनी जिंदगी का पर्पज बना लिया, मकसद बना लिया है। तो मैं इंडिया में देख रही थी कि इंडिया में भी काश कोई ऐसी संस्था होती जो कि इस तरह से डोनर डोनी को जोड़े, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे काम करे। और जब सर्च किया तो देन आई फाउंड दिस मोहन फाउंडेशन। तो ये मोहन जो है ये कोई नाम नहीं है, ये सिंबल है। इसका फुल फॉर्म है मल्टी ऑर्गन हार्वेस्ट एड नेटवर्क। तो ये जो मोहन फाउंडेशन है इसको डॉक्टर सुनील श्रॉफ चेन्नई, उन्होंने आई थिंक इनिशिएट किया है। और फिर इसका जो जयपुर सिटीजन फोरम है MFJCF, जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, उनकी भावना जगवानी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि वो कैसे करते हैं, क्या अवेयरनेस के लिए वो लोग काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक ग्रुप से जोड़ा, ये मोहन फाउंडेशन से। उसके थ्रू में पल्लवी कुमार जी, गोविंद गुरवानी जी और जो अनिल कुमार जी जो कि नोटों के है मेन करता धरता। और नोटो क्या है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये रजिस्ट्री का काम करती है। तो
1: एग्जैक्टली
0: इसमें क्या
1: अच्छा
0: है,
1: बाय द वे शमी, मैं आपको बताऊं कि भावना जगवानी भी हमारे प्रोग्राम पे आने वाली है, उनसे बात हो गई है, वो भी एक इंटरव्यू देने
0: अरे
1: वाली है
0: वाह,
1: हमें।
0: चलो चलो, ये तो बहुत
1: और
0: अच्छा। तो वो आपको
1: हाँ
0: मोहन फाउंडेशन के
1: हाँ
0: बारे में बहुत कुछ बता
1: वो
0: सकती है।
1: बता देंगी, और पल्लवी कुमार को भी मैं जानता हूँ, वो तो
0: हाँ जी, चलो, बहुत
1: मेरी
0: अच्छी बात है।
1: जानता।
0: हाँ जी,
1: ओके
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: अच्छा, अब मुझे बस एक छोटा सा जवाब दीजिए, जब इतना काम करती हैं आप तो शमीम अपने आप को रिलैक्स किस तरह से करती है? कोई हिंदी फिल्म कोई पसंद है आपको? कोई क्या करती है? कोई म्यूजिक पसंद है? क्या चीज पसंद है आपको?
0: हाँ जी, मैं म्यूजिक और मूवीज तो साथ में सुनती हूँ। म्यूजिक मोस्टली पुराना या इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, और मूवीज मोस्टली मुझे ट्रू स्टोरीज के बेस्ड पे जो होती है वो पसंद आती है। थोड़ा सा साइंस का भी हो तो उसमें अच्छा लगता है। और हॉबीज में तो बस पेंटिंग बना के थोड़ा सा रिलीव कर लेती हूँ अपने आप को।
1: वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब शमीम ये बताइए कि इस रेडियो के प्लेटफॉर्म से अगर आप सोसाइटी को एक ऑर्गन डोनेशन के बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगी तो वो क्या होगा?
0: मैं तो अपनी जर्नी से यही कहना चाहूंगी कि ऑर्गन डोनेशन, अंग दान, महादान जो हम कहते हैं, इनसे बड़ा डोनेशन, चैरिटी कोई नहीं हो सकता। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपसे जीते जी कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आप अपनी जिंदगी जिए, पूरी तरीके से जिए, लेकिन एक प्लेज, एक रजिस्ट्रेशन करके जाएं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन्स किसी अगर और को जिंदगी देते हो तो जरूर दें। और इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका खाली प्लेज इनफ नहीं है, आप अपने घर वालों को भी बताएं, क्योंकि उन सब घर वालों की मंजूरी भी बहुत जरूरी है, तभी हॉस्पिटल्स आपके ऑर्गन डोनेट करके और दूसरों डोनी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं।
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया बात की कि फैमिली पूरा एक साथ उसके एक उस पे होनी चाहिए, एक पेज पे होनी चाहिए एक तरह से कार। तो शमीम जी, आपने आज अपने जीवन की जो कहानी हमारे साथ साझा की, वह सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि हम सभी के लिए गहरी सीख है। आपने हमें सिखाया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद जिंदा रखी जा सकती है। एक माँ का साहस पहाड़ों से भी बड़ा होता है। और यह है कि ऑर्गन डोनेशन वास्तव में वह महादान है जिसपे हम कुछ खोते नहीं बल्कि कई जिंदगियां रोशन करते हैं। दोस्तों, शमीम जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन के बाद भी हम किसी और के जीवन में मुस्कान ला सकते हैं, बस जरूरत है सही जानकारी और सही निर्णय की। अगर आज की बातचीत सुनकर आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचने लगे हैं तो यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ शमीम जी का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। शमीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी और अपने बातें आपने आज जो की हैं वो सब दिल से की हैं।
0: लास्ट मैं बस यही कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, जो कि आपने कहा कि प्लीज अगर आप अभी रजिस्टर नहीं है तो इंडिया में भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, नोटों की वेबसाइट है, कुछ नहीं तो

0: गूगल पे खाली मोहन फाउंडेशन डालिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे प्लेस करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे हम हेल्प करते हैं लोगों की। लेकिन ये एक सिंपल सी जोक के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अगर आप मरने के बाद भी अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का स्टेटस देखना चाहते हैं तो जाते जाते अपनी आंखें किसी को डोनेट करते जाइए, अपनी धड़कन किसी को डोनेट करते जाइए, एक जिंदगी से 8 नई जिंदगियां देते जाइए। थैंक यू।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शमीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, आपसे विदा लेते हैं, मैं आलोक कुमार आपसे इजाजत देता हूं। सुनते रहिए हमारा रेडियो का कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के साथ। धन्यवाद।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: ये वीर गाथा है भारत माँ की मिट्टी के सपूत
6: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। उन्हें सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण शौर्य और पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
5: ये वो बहादुर सैनिक थे जिनकी बहादुरी की चर्चा दुश्मन के गलियारों में भी बड़े सम्मान से होती थी।
6: तो आइए सुनते हैं मित्रों कार्यक्रम
5: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
7: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूँ माँ।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी माँ, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, तो पाकिस्तान में है और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: बोले बोले।
2: अरे ये क्या, बच्चे कहाँ चले गए?
3: बच्चे
2: आए भी हैं या नहीं आए? एक काम करता हूँ, बाहर चल के देखता हूँ। अरे अरे अरे अरे अरे बच्चों, तुम यहाँ छुपे थे? तुम यहाँ छुपे बैठे हो हैं? आपने मुझे पकड़ लिया। लेकिन ये तो बताओ, क्या मैं चोर हूँ? हैं? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आप छोड़ो तो भाई, अब बैठ तो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। आज मेरे अक्षर हैं ओ और ओ। ओ ओ
4: ओ ओ,
2: एक बार फिर ओ ओ
4: ओ ओ।
2: शाबाश। तो आज की मेरी कहानी का नाम है ओले बोले के औजार। ओले बोले के
4: औजार।
2: शाबाश। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओले बोले के औजार। शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी। कौन था?
4: व्यापारी।
2: अच्छा ये बताओ, व्यापारी होता कौन है?
5: वो सामान बेचता है।
2: सामान बेचता है,
6: जो चीजें बेचता है।
2: चीजें बेचता है, तरह तरह की चीजें।
7: वो साड़ी बेचता है।
2: साड़ी बेचता है।
8: वो लड्डू बेचता है।
2: लड्डू बेचता है।
9: वो खाना भी बेचता है।
2: खाना बेचता है।
10: वो लोहा बेचता है।
2: लोहा बेचता है।
11: वो बर्तन बेचता है।
2: बर्तन बेचता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो व्यापार करता है उसे कहते हैं हम व्यापारी। क्या कहते हैं?
4: व्यापारी।
2: शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी, उसका नाम था ओले बोले। क्या नाम था?
4: ओले बोले।
2: वो बहुत सारी चीजें बेचता था, जैसे कपड़ा, बर्तन, औजार। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। अच्छा औजार पता है ना क्या होता है? बताओ बताओ।
6: प्लास,
2: कीले,
6: पेचकस,
2: आरी,
6: हथौड़ी।
2: हथौड़ी, अरे वाह क्या बात है भाई, हमारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। सही कहा तुमने। हाँ इसके अलावा वो और भी कुछ बेचता था, बताऊं क्या क्या?
6: क्या भैया?
2: वो ओखली बेचता, और वो भी दो दो मूसल के साथ।
6: ये ओखली क्या होता है?
2: ओखली बेटा जिसपे मसाला कूटते हैं। हाँ ऐसे धम
4: धम
2: धम धम धम। हाँ
6: धम
2: धम। तो बच्चों वो ओखली बेचता दो दो मूसल के साथ, और हाँ साथ में लाल गुलाबी लहंगा भी बेचता था, जिसके साथ चार चूड़ियां भी होती।
7: बिल्कुल मुफ्त।
2: हाँ, बिल्कुल वो
7: गप्पे के साथ पानी।
2: तो बच्चों बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मैं आगे कहानी
4: सुनाऊं?
2: हाँ तो सुनो कहानी। एक बार बच्चों हुआ ये कि ओले बोले की दुकान पर एक औरत आई। शाबाश। ओ से औरत। तो बच्चों वो औरत ओले बोले से बोली,
12: अरे ओले बोले भैया, एक ओढ़नी दिखा दो जिसमें मोर बने हो।
6: भैया
4: ओ से ओढ़नी।
2: ओ से ओढ़नी। ओ से ओले बोले। हाँ तो ओले बोले ने उस औरत से कहा,
12: हाँ हाँ बहन जी, हाँ अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लाल, ये हरी, ये पीली, और ये लो एक और, ये है नीली।
2: तो ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओले बोले और ओ से
4: औरत,
2: औरत और ओ से और। तो बच्चों आगे सुनो क्या हुआ। तभी वहां पर एक बूढ़े बाबा आए और बोले,
13: अरे बेटा बेटा।
12: हाँ बाबा कहिए।
13: बेटा क्या यहाँ मेरी दवा मिलेगी?
2: तब ओले बोले ने कहा, अरे बाबा मैं औषधि नहीं बेचता। औषधि यानी
4: दवाई।
2: दवाई। वाह क्या बात है, इसी बात पर हो जाए ताली जोरदार भाई। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम सब बहुत ही होशियार हो, बहुत ही प्यारे हो और बहुत ही समझदार भी हो। अब आगे सुनाओ कहानी।
4: हाँ भैया।
2: तो सुनो कहानी। तो बच्चों ओले बोले ने कहा,
12: बाबा जी ये दवा वहाँ सामने वाली दुकान पर मिलेगी। हाँ वहाँ जाइए आप।
13: अच्छा बेटा,
7: मैं केमिस्ट से ले लूंगा।
12: केमिस्ट से ले लूंगा। वाह क्या बात है, केमिस्ट कौन होता है बताओ? जो दवाई बेचता है, जो दवाइयाँ बेचता है। हाँ पता फिर क्या हुआ?
3: क्या हुआ?
12: तभी वहाँ पर दो आदमी आए। पता उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे ओंकार और ओम। ओंकार और ओम। ओ से शाबाश, ओ से ओंकार, ओ से ओम और ओ से और ओंकार और ओम। अच्छा पता है वो दोनों क्या करने लगे? वो दोनों औने पौने पैसे देकर सारा सामान मांगने लगे। ओ से ओम,
7: वो चोरी कर रहे थे।
12: हाँ चोरी समझ लो, चोरी और सीना चोरी। ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से औने पौने। औने पौने यानी उल्टे सीधे, ठीक है बच्चों? तो कभी वो कहते
13: ओले बोले हमें 2 रुपए में ओखली दे दो,
12: और वो भी दो दो मूसल के साथ। हा?
3: हाँ, हाँ,
12: 1 रुपए में हथौड़ी दे दो, जल्दी करो जल्दी करो।
7: 1 रुपए में साड़ी दे दो।
12: हाँ,
7: 1 रुपए में बर्तन दे दो,
12: बर्तन दे दो।
7: 1 रुपए में कुल्हाड़ी दे दो,
12: 1 रुपए में कुल्हाड़ी। फिर पता क्या हुआ?
7: क्या हुआ भैया?
12: हाँ वही तो बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। वो एक एक कर सारे औजार निकलवाते और कहते
5: ये सामान तो बेकार है। अरे बिल्कुल बेकार है भैया,
13: तुम्हारे पास सारी चीजें ही बेकार है,
5: कोई भी ढंग की नहीं है यहाँ पर। हाँ
7: ये तो बहुत बुरी बात है,
12: बहुत बुरी बात है,
6: बहुत बुरी बात है,
12: बुरी बात है। तंग करना उससे भी बुरी बात है,
7: वो अच्छा नहीं कर रहे।
12: बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे।
7: क्या हुआ भैया?
12: बताता हूँ। फिर उनमें झगड़ा होने लगा, मार पिटाई शुरू हो गई। ओहो,
7: ओहो
12: शाबाश। तो उनमें बच्चों खूब धक्का मुक्की हुई।
13: अरे क्या कर रहे हो? अरे ये ले, और ले, अरे क्यों मार रहे हो?
12: बच्चों उनमें इतनी धक्का मुक्की हुई कि तभी ओले बोले ओंकार और ओम तीनों औंधे मुंह गिरे जमीन पर।
7: बहुत चोटें लगी।
12: हाँ बहुत चोटें भी लगी होंगी।
6: और उनको बहुत दर्द हुआ,
12: बहुत दर्द
7: हुआ, फट गया,
6: वो घायल हो गए।
12: घायल हो गए, बिल्कुल सही।
7: और भैया औंधे।
12: हाँ तो उसके बाद बच्चों हुआ ये कि वो जो औरत ओढ़नी लेने आई थी ना,
6: हाँ भैया,
12: वो वहीं पर खड़ी थी और ये झगड़ा देखकर उसने तुरंत
7: पुलिस को फोन कर दिया।
12: हाँ बिल्कुल सही, उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो पुलिस को देखकर ओम और ओंकार डरकर सरपट भागे, लेकिन पुलिस की आंखों से ओझल नहीं हो पाए। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। तो बच्चों ओ से ओझल, ओ से ओढ़नी, ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से ओले बोले, ओ से औरत, ओ से औजार और ओ से औंधे। हाँ बच्चों बात दरअसल ये थी कि ओले बोले इतने अच्छे औजार बेचता था कि ओम और ओंकार उन्हें लेना तो चाहते थे पर पैसे देना नहीं चाहते थे।
7: ये तो बहुत बुरी बात है,
12: बहुत बुरी बात है, सच
6: में बिल्कुल भी अच्छा नहीं।
7: हमें पैसे देकर चीज खरीदनी चाहिए,
12: बिल्कुल सही, बिल्कुल
7: हमें ईमानदार होना चाहिए,
12: बिल्कुल सही, ईमानदार होना चाहिए।
7: आज चोरी कभी नहीं करनी चाहिए,
12: नहीं करनी चाहिए,
7: बुरी बात होती है,
12: बहुत बुरी बात होती है। शाबाश। तो बच्चों अब हुआ ये कि ओम और ओंकार को पुलिस ने पकड़ लिया और ओले बोले अपने औजार फिर से बेचने लगा और बाकी चीजें भी आराम से बेचने लगा,
7: और हथौड़े और कील और पेचकस और औजार बेचने लगा,
12: औजार बेचने लगा,
7: और पेच और पेच ओढ़नी और चूड़ी,
12: ओढ़नी और चूड़ी
7: और साड़ी भी,
12: साड़ी भी, बर्तन
7: और पेच भी,
12: पेचकस भी, कपड़े
7: और आरी,
12: आरी। शाबाश। हाँ तो बच्चों उसके बाद ओले बोले ने उस औरत का धन्यवाद किया और कहा बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, जो आपने मुझे आज बचा लिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। रुकिए रुकिए, आप ये खुरपी लीजिए मेरी तरफ से।
9: अरे मगर चलो ठीक है, मुझे खुरपी लेनी भी थी। धन्यवाद ओले बोले, धन्यवाद।
2: तो बच्चों, ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओ औ,

0: औषधि मिलती नहीं यहाँ।
1: तभी वहाँ दो आदमी आए, ओंकार और ओम था नाम। औने पौने पैसे देकर मांग रहे सारा सामान।
2: ला दे ओखली, दे मूसल, सारे औजार दे।
3: अरे इतना घटिया सामान कौन देगा तुझे इसके दाम?
1: कभी वो मांगे ओखली मूसल, एक एक करके सारे औजार। बार बार देखे और बोले, ये सामान है बेकार।
4: खूब हुई धक्का मुक्की और ओले बोले गिरा घड़ा। तब औरत ने पुलिस बुलाई, भागी

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: कितना हल्का कितना भारी,
2: कितना हल्का कितना भारी।
3: नमस्ते बच्चों। नमस्ते नमस्ते।
4: अरे भाई, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आ गए।
5: हमें आज कहानी भी तो सुननी है। भैया, आज दीदी क्यों नहीं आई?
4: हाँ, ये बात है।
6: आनंद, लो मैं भी आ गई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों?
4: बढ़िया हो ना?
6: तो अनंत, आज तुमने बच्चों को बताया कि हम इन्हें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?
4: बस वही तो बताने वाला था। बच्चों, आज हम सुनाएंगे एक घोड़े की कहानी।
5: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना।
4: हाँ।
5: मैं एक बार घोड़े पे बैठा भी था।
6: अच्छा? अच्छा, बस एक ऐसा ही घोड़ा था जैजू और मन्नू के पास।
7: जैजू मन्नू कौन थे?
4: बच्चों, जैजू और मन्नू बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और उनके पास था एक घोड़ा।
5: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था।
6: बहुत तेज।
4: अरे वो तो बहुत ही ताकतवर भी था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा घोड़ा था। और पता है, वो 700 किलोग्राम भार उठा सकता था।
7: 700 किलोग्राम?
4: हाँ, और वो भी बड़े आराम से।
5: 700 किलोग्राम?
4: हाँ।
5: इतना ज्यादा उठा लेता था वो घोड़ा?
4: हाँ श्रेया, अरे वो तो बहुत ताकतवर था,
6: लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था। आलसी?
4: हाँ बच्चों, काम करने का उसका मन ही नहीं करता था। वो तो बस सोता रहता था घोड़े बेचकर।
5: वो तो खुद ही एक घोड़ा था।
4: लेकिन बच्चों, ये तो कहावत है ना, घोड़े बेच के सोना है।
5: फिर क्या हुआ?
6: फिर एक बार जैजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे। वो घर का सारा सामान घोड़ा गाड़ी में लादने लगे।
4: और फिर जैजू और मन्नू के पिताजी ने कहा, हाँ,
8: सबसे पहले इस पानी की टंकी को रख देता हूँ घोड़ा गाड़ी पर।
4: फिर जैजू और मन्नू की मम्मी बोली,
9: ये रहे 5 बोरी गेहूं, इन्हें भी रख देती हूँ।
10: अरे अरे भाई, ये 3 मेज तो रह गए। अरे पापा।
8: अरे बेटा, ले आ ले आ।
4: और घोड़ा कहने लगा,
10: अरे इतना भार, अरे मैं कैसे उठाऊं,
8: पहले ही बहुत थक गया हूँ।
6: अरे रुको रुको, 4 कुर्सियाँ भी बाकी हैं। और उसके बाद जैजू और मन्नू ने 4 कुर्सियाँ, 1 अलमारी, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल और रखे।
4: तब घोड़ा बोला,
10: अरे इतना भार।
6: अरे रुको रुको रुको, अभी तो और भी सामान है। और तब जैजू और मन्नू ने एक बांस की सीढ़ी, कुछ और बर्तन भी रख दिए।
4: और बच्चों, घोड़ा बोला,
10: अरे अरे अब मैं और नहीं उठा सकता इतना भार। अरे इतना सारा सामान, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे
5: घोड़ा बोला, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। फिर क्या हुआ?
6: और तब जैजू और मन्नू के पापा ने उनसे कहा,
8: जैजू मन्नू।
10: जी पिताजी।
11: जी पिताजी।
8: भाई, लगता है घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो 700 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं उठा सकता।
5: वो बहुत भारी हो गया था क्या? वो 1000 किलोग्राम हो गया था?
6: अरे रुको रुको। पहले तो जैजू और मन्नू के पापा ने उन्हें सामान के बारे में बताया, वजन के बारे में जानकारी दी, और फिर जैजू और मन्नू सामान का भार जोड़ने लगे।
4: हाँ बच्चों, तुम भी जैजू और मन्नू का साथ दो और उनके साथ मिलकर सामान का भार जोड़ो।
7: ठीक है।
4: तो एक गेहूं की बोरी का वजन है 100 किलोग्राम।
7: 100 किलोग्राम।
4: हाँ, और एक चावल की बोरी और एक अलमारी मिलाकर हुई 105 किलोग्राम।
7: 105 किलोग्राम।
6: तो बच्चों बताओ कुल कितना भार हुआ, 100 और 105 किलोग्राम?
7: 205।
4: 205 क्या?
7: ग्राम।
4: सिर्फ ग्राम?
7: किलोग्राम।
4: शाबाश, ये हुई ना बात, 205 किलोग्राम। हाँ, तो अब बारी आती है कुर्सी की। एक कुर्सी का भार है 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है?
7: 5 किलोग्राम।
4: और पहले जो भार था वो था 205 किलोग्राम। तो अब हमने इसमें 5 किलोग्राम और जोड़े तो कितना भार हो गया?
7: 210 किलोग्राम।
4: शाबाश, इसी बात पे हो जाए ताली। हाँ, तो भाई अब बारी आती है पानी की टंकी की। और जानते हो पानी की टंकी का भार कितना है?
7: कितना है?
4: 50 किलोग्राम।
7: 50 किलोग्राम।
4: हाँ, तो अब बताओ कुल मिलाकर कितने किलोग्राम हुए? अभी तक भार था 210 किलोग्राम, उसमें हमने पानी की टंकी का भार जोड़ दिया यानी कि 50 किलोग्राम जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर कितने किलोग्राम भार हो गया?
7: 235 किलोग्राम।
4: अरे नहीं बचवा, 235 नहीं, 210 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पानी की टंकी का भार मिलाया तो कुल मिला के कितना भार हो गया?
7: 260 किलोग्राम।
4: शाबाश, इसी बात पर बजाओ ताली। तो 260 किलोग्राम के बाद आया 10 किलोग्राम का मेज।
7: 270 ग्राम।
4: सिर्फ ग्राम?
7: किलोग्राम।
4: शाबाश, ये हुई ना बात, किलोग्राम। शाबाश।
6: और अब बारी आती है गद्दे की।
4: भाई एक गद्दा है 20 किलोग्राम का।
7: 290 किलोग्राम।
4: क्या बात है भाई, बच्चे वैसे बहुत होशियार हो गए हैं।
6: बहुत होशियार।
4: अब बारी आती है बांस की सीढ़ी की, जिसका भार है 10 किलोग्राम।
6: तो बच्चों अब बताओ कुल कितना भार हुआ,
4: यानी 290 किलोग्राम पहले और अब 10 किलोग्राम मिलके हो गया
7: 300 किलोग्राम।
6: बिल्कुल ठीक बताया,
4: 300 किलोग्राम। अच्छा बर्तन तो रह गए है ना, तो बर्तन हुए 10 किलोग्राम के।
7: 310 किलोग्राम।
4: हाँ, 310 किलोग्राम।
6: वाह वाह वाह वाह। तो भाई ये तो सब बच्चों ने मिलकर बता दिया।
4: क्या बात है, क्या ताली।
6: तो बच्चों अब ये बताओ 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कम हुआ या ज्यादा?
7: कम।
4: बच्चों जैजू और मन्नू ने कहा, अरे घोड़े भाई ये तो बस 310 किलोग्राम है, तुम तो 700 किलोग्राम भार उठा सकते हो। घोड़ा शर्माने लगा और बोला,
11: अरे अरे मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ।
5: हाँ? मेरा तो सर दर्द भी नहीं हो रहा। हाँ? मेरे को टांग भी नहीं दर्द।
11: अरे अरे ये तो बहुत ही हल्का है, अरे मैं अभी ले चलता हूँ। जैजू और मनु, अरे तुम भी बैठ जाओ घोड़ा गाड़ी पर, बैठ जाओ शाबाश। और हाँ सुनो सुनो, अरे पापा को भी तो बिठाओ। हाँ
5: मम्मी को भी तो बिठाओ।
11: अरे हाँ, अरे बुलाओ भाई मम्मी को भी, बुलाओ जल्दी बुलाओ।
12: अब मैं सर पर दौड़ लगाता हूँ।
6: अरे अनंत रुको रुको रुको भाई, यही रोक दो अपनी घोड़ा गाड़ी को। कुछ और भी बाकी है।
4: अरे आकृति क्या बाकी है भाई?
6: आज का सवाल।
4: सही याद दिलाया तुमने। तो बच्चों आज का सवाल है 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितना कम है, यानी कितने किलोग्राम कम है? सवाल एक बार फिर सुन लो, 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितने किलोग्राम कम है? तो घर जाकर सोचो और पता लगाओ, लेकिन जाने से पहले बजाओ ताली।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबा की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को, अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है, अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि

0: मात्र उपाय है, तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
1: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
0: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
1: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, उनके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
0: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
1: जी बताइए।
0: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
0: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
1: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
0: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
1: अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।
0: जी,
1: और डॉक्टर साहब, एक
3: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
1: बताइए।
0: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
1: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
0: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
1: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
0: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
1: अच्छा।
0: तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
1: अच्छा, जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा ज्यादा
0: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
1: जी,
3: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
1: जी बताइए।
0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
1: जी
4: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी

0: સાથીઓ, મેં હમણે તમને લોકીની ફસલના બારામાં અને તેની જળવાયુ અને ઉન્નત કિસ્મીઓ અને તેમાં ખાતર બીજ અને નિંદાઈ ગોળાઈ એવી ખેતીવાડીની કઈ વાતો તમને મેં આજ તમને લોકી અને કે આલડાના બારામાં જાણકારી બતાડી.
1: હું છે આરજે રાકેશ
2: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
1: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ઇન્ડિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ. તો કિસાન ભાઈઓ, હા બાપુ, હામળી કરેલાની ખેતીની વાતો જાજોમતી કઈ થા હામળ તારે જો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ
0: કાર્યક્રમના માધ્યમથી હું આજ કિસાન ભાઈઓને કરેલાની ખેતીના બારામાં જાણકારી વતાડી હશે. સાથીઓ, કરેલાની ખેતી હારું જળવાયુ અને ભૂમિ અને ઉન્નત કિસ્મીઓ અને તીહુની બોવાઈની વિધિ, ખાતર, ઉર્વરક, સિંચાઈ અને તેના ઉત્પાદનના બારામાં જાણકારી સંભળાવી રહેશે. તો કિસાન સાથીઓ, અમારા દેહમાં કરેલાની ખેતી કાફી સમયથી થતી આવી રહી છે. ઉનાળામાં સબ્જીઓનો એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે અને એનાને સુમાહારની ફસલના રૂપે છે. પૌષ્ટિકતા અને તીહુના ગુણ અને ઔષધિ ગુણોને કારણે એ કાફી લોકપ્રિય છે અને કરેલામાં લોહ તત્વ, ફોસ્ફરસ, વિટામિન અને વિટામિન્સ પાયા જાય છે અને યા મધુમેહ એવી રીતે શુગરના રોગો હારું સેવન કરવાથી ઘણી લાભદાયક રહેશે. તો કિસાન સાથીઓ, એ એક પ્રાકૃતિક રૂપથી એક આયુર્વેદિકનું બી કામ કરે છે. એના ફળથી જો બનાવેલું જો હાયણું સબ્જી એના નુકડા કરીને ઉનાળામાં તડકામાં હુકાડીને એના મેલિન અને આફું આવેરી શકે. એનાને હુકેલાની સબ્જી બી બનાવીને જો સુગર અને રોગીઓને હારું ઘડાયક રહેશે. એની બાદમાં બે મોસમની સબ્જીના રૂપમાં બી એના ઉપયોગમાં કર્યો જાય છે. સાથીઓ, કરેલાની ખેતી કરવા હારું જળવાયુ કેવી રહેવી જોઈએ? તો એના હારું કિસાન ભાઈઓ, કરેલાની ખેતી ગરમ અને આર્દ્ર જળવાયુની જરૂરત પડે છે અને કરેલાની ખેતી હારું કરેલાના પૌધાની ખાસિયત યા છે કે યા અન્ય કદ્દુ વર્ગીય ફસલોની અપેક્ષા જ્યાદા શીત સહન કરી શકે અને જ્યાદા વરસાદથી ફસલની ઉપજ ઘટી જાય છે. કરેલાની ખેતી હારું ઉત્તર અને મધ્ય ભારતની જળવાયુ જ્યાદા અનુકૂળ માની ગઈ છે. તો કિસાન સાથીઓ, હાઉ કરેલાની ખેતી હારું ભૂમિ કેવી રહેવી જોઈએ અને જગા કેવી રહેવી જોઈએ અને તેનો પીએચ માન કેટલો રહેવો જોઈએ? તો દેખી જાય તો કિસાન ભાઈઓ, અગર આપણ એની ચીજનો અંદાજો નહીં રહે તો કિસાન ભાઈ એમાં કાફી નુકસાન બી થઈ જાય છે. તેની હારું કિસાન ભાઈને એનાને કરેલાની ખેતી કઈ પ્રકારની જમીનમાં કરી જઈ શકે છે પણ અસલ જળ ધારા જો ક્ષમતાવાળી અને જળ નિકાસવાળી અને જીવાંશયુક્ત હાલકી દોમટ મિટ્ટી જેનો પીએચ માન 6.5 થી લગાડીને 8 તકની વશમાં રહેવો જોઈએ. તો કિસાન સાથીઓ, કરેલાની ખેતો હારું ઉન્નત કિસ્મીઓ, તો ઉન્નત કિસ્મીઓમાં દેખી જાય તો કિસાન ભાઈઓ, અરકા બહાર, અરકા બહાર યા કિસ્મ ખરીફ અને જાયદ બે મોસમોમાં ઉગાડી જવા હારું અસલ છે. કેમ કે કિસાન સાથીઓ, જો બે મોસમમાં પાકવાવાળી જો કિસ્મ છે તેની કિસ્મને ઉગાડીને કિસાન ભાઈ કંઈના બી ટાઈમ પર એની ફસલ લઈને તેનું ઉત્પાદન બઢાવીને કિસાન ભાઈ કાફી મુનાફો કમાઈ શકે. કેમ કે બે મોસમની સબ્જી બે ટાઈમ પર અગર કિસાન ભાઈ એવી કિસ્મ સયન કરીને તેનાને પકાડે તો તેનથી કિસાન ભાઈને અસલ લાભ થાય છે. અરકા હરિત યા એવી કિસ્મ છે કિસાન ભાઈઓ, કે એની કિસ્મના જો ફળ રહેશે ત્યાં મધ્યમ અને પાતળા અને હલકી સાલવાળા રહેશે અને એનો ગુદો મોટો અને મધ્યમ કડવા પણ લીધેલો રહેશે. યા કિસ્મ ગ્રીષ્મ અને વર્ષા ઋતુ બે સમયમાં કિસાન ભાઈ એના પકાડીને લાભ લઈ શકે અને फसल अवधि रहे किसान भाइयों 120 दिन नी रहे, तो 120 दिन में अंदर मां किसान भाई इनी उपज लीने काफी मुनाफो कमाई सके। उपज जो एक हेक्टर में मिली सके किसान भाइयों, तो इनी कारेलानी इनी किस्मनी जो उपज से 130 क्विंटल प्रति हेक्टर तक किसान भाई ले सके। पूसा बेमौसमी, तो किसान साथियों एक या किस्म से पूसा बेमौसमी इनी किस्म नो विकास भारतीय कृषि संस्थान अनुसंधान नवी दिल्ली ने द्वारा करियो से, अने इना फोल मध्यम आकारना अने लीलो रंगवाला रहे से। लीला रंगना कारण किसान भाई इना वेसवा मा काफी लाभ कमाई सके, क्योंकि हरी सब्जी ने हर कोई खरीदे अने इनमा कनो बीजो कलर रहे, तो बीजा कलर ने अलावा हरो रंग सब्जी मा घणो ज्यादा असल मान्यो गए से। इनी किस्म ने वर्षाकालीन अने ग्रीष्मकालीन बेहे फसल ना रूप मा इनी किस्म ने उगाड़ी ने किसान भाई लाभ ले सके। बोवाई ना 55 थी 60 दिनों ने अंदर फोल पहली तोड़ाई हारू तैयार थाई जाए से, अने किसान भाई इनी प्रति हेक्टर ना हिसाब थी 120 थी लगाड़ी ने 150 क्विंटल तक असली जाप्ता करवा थी किसान भाई ने इनो करेलानी फसल नो इनी किस्म नो ना पूसा बेमौसमी नो लाभ ले सके। पूसा विशेष, तो किसान भाइयों या किस्म से इनी किस्म नो विकास भी भारतीय कृषि संस्थान नई दिल्ली ने द्वारा करियो से। या किस्म बीज ओरवाना बाद मा 55 दिन नी बाद मा फोल आलवा लागी जाय से, अने इनी करेलानी किस्म ना फोल मध्यम अने लांबा मोटा अने चमकीला रंगना रहे से, अने या किस्म सब्जी बनावामा अने हुकाडीन उपयोग करवा हारू अने इनो करेलानो अचार बनावा हारू उपयुक्त रहेशे। सुगरना रोगी हारू इनो अचार बनावीने अवेरीन मेलवा पर बेमौसम पर सब्जी बनाईन खावा हारू अने तीना दवाईना रूपमा भी ये काफी असल कारगर साबित थाई से। प्रति हेक्टर 80 थी लगाड़ीने 100 क्विंटल तक किसान भाई इनी उपज ले सके। तो किसान साथियों हाव अगली जो करेलानी किस्म से तिनु नाम से कोयम्बटूर लाग, तो किसान साथियों कोयम्बटूर लाग नो इनी किस्म नो पौधो ज्यादा फैलवा वालो रहे से, अने फोल इनु 40-45 सेंटीमीटर लीला रंगना रहे से। अने किसान साथियों लीला रंगना रहवाने कारण इनो भी ज्यादा से ज्यादा लाभ किसान भाई ले सके, अने इना उत्पादन थी किसान भाई ने इनी लागत कम लागत मा भी इना पकाड़ी सकी, केम की कड़वापन ने कारण इनमा कम रोग लागे से, अने प्रति हेक्टर किसान भाई 80 थी 100 क्विंटल तक उपज ले सके। तो किसान साथियों करेलानी अगली किस्म नो नाम से कल्याणपुर बारामास, तो कल्याणपुर बारामास इनी किस्म नो विकास चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय करियो से, अने इनी किस्म ना फल आकर्षक गहरा रंगना रहे से, अने इनी गर्मी अने वर्षा ऋतु में भी इनान उगाड़े जाई सके से, अने ई किस्म वरे भर में उत्पादन लगातार आलती रहे से, केम की इनी ने हमेशा इनिन पानी आलवा अने इना खातर बीज अने खरपतवार थी मुक्त राखी ने किसान भाई इना ने कलियां आलीन भी इनी फसल नो लगातार लंबा समय तक उपज ले सके से, अने इनी उपज प्रति हेक्टर ना हिसाब थी एकड़ ना प्रति एकड़ ना हिसाब थी 60-65 क्विंटल तक प्रति एकड़ इनी आमदनी किसान भाई ने मिली जाए से। अगली किस्म से हिसार सिलेक्शन, तो हिसार सिलेक्शन किसान भाइयों इनी किस्म ने पंजाब हरियाणा में काफी लोकप्रिय हासिल करी से, अने ताहनी जो जो पंजाब ने जलवायु में इनी उपज 35-40 क्विंटल तक प्रति एकड़ मिली रही से। तो किसान साथियों एवी असल असल किस्मियों टाली ने किसान भाई लगाड़ी सके, अने किसान भाई ने एक सलाह ये भी से कि आपू अंतरवर्ती किस्मों नो चुनाव करीने आपू ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें, ताकि किसान भाई ने एत्रो अनुभव थाई जाए कि आपड़ी जगह में कई नी किस्म असल तरह थी पाकी सके। तो किसान साथियों, हाउ इना करेला नी फसल नो ओरवानो समय, तो उनाळाना टाइम पर किसान भाइयों फसल नी बुवाई फरवरी थी लगाड़ी ने मार्च तक थाय से, अने सुमाहानी फसल नी जो बुवाई है जून जुलाई में करी जाय से। तो किसान साथियों, अधिकतर आपुने इनी फसल नो ओरवाना जो समय रहे से तीनों घणो असली तरह थी ध्यान राखो जोई। अगर ओरवाना समय में किसान भाई अगो पासो थाई जाए ते किसान भाई ने नुकसान भी उठाड़वा पड़े से, अने सही समय पर अगर आप इना करेलानी समय पर उगी जाए तो तीना टाइम पर तीना तापमान ने ते आराम थी सही सके, तीनी हारू इनो समय नो घणो ध्यान राखो जोई। अने करेलाना बीज नी मात्रा, तो किसान साथियों, एक हेक्टर हारू 5-6 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेशे, अने एक जगह थी 2-3 बीजड़ा अने 2.5 थी लगाड़ीने 5 सेंटीमीटर नी ऊंडाई तक इनान ओरवुं जोई। अने बीज ने ओरवाथू पहलू 24 घंटा तक पानी में भिगाड़ी राखवुं जोई, ताकि ये उगवा में बड़ी आसानी थी उगी जाए। तो किसान साथियों, इनो अंकुरण भी वेगो थाय से, अने जमीन में बफाईनी अने बीज हड़वानो डर भी खत्म थाई जैसे। तो किसान साथियों, हमेशा इना 24 घंटा पानी में भिगाड़ीने ओरवुं जोई। तो हाउ किसान साथियों, करेलाना आपड़ बुवाईनी विधि, करेलानी बुवाई नाळियों में करवी पड़े से, यानी कि आपुं एक धोरा बनावी अने धोरानी बाद में नाळी में इहुनी सोपू पड़े से, अने नाळियोनी जो आपसी दूरी किसान भाई पर ध्यान राखवी जोईए, आपसी दूरी इहुनी 1.5 थी लगाड़ीने 2.0 मीटर में, अने पौधा थी पौधानी दूरी जो 1 मीटर राखवी जोईए। एक जगह पर 2 बीजड़ा अने 2.5 थी लगाड़ीने 4.0 सेंटीमीटर नी ऊंडाई पर किसान भाई ने करेलाना बीजड़ा ओरवा जोईए। तो किसान साथियों, खातर अने उर्वरक, तो खातर अने उर्वरक किसान भाई ने करेला में की कमाल हो जाई, अने अगर आपन खातर अने उर्वरक नो सही तरह थी ध्यान निमले अने सही समय पर नियालियो तो फसल काफी प्रभावित थाई सके से। तीनी हारू किसान भाइयों, गोबर नो खातर या कंपोस्ट खातर 250 क्विंटल नाइट्रोजन 100 किलो, स्पूर 50 किलो अने पोटास 50 किलो प्रति हेक्टर ना हिसाब थी करेला नी फसल मा जरूरत पड़े से। खेतर नी जो शुरुआती अवस्था मा खेड़वातू पहलू गोबर ना खातर ने बराबर रूप थू वखेर देव जोई, अने मिट्टी पलटवा वालो हल थी आपड़ किसान भाई जुताई कर नाखवी जोई, या अगर किसान भाई आपड़ी कन मिट्टी पलटवा वालों होल नहीं होय तो किसान भाई आड़ो अने टेड़ो वखर सलाड़ीन भी इनो करेलानी फसल मा इनो उपयोग करी सके। नाइट्रोजन नी जो आधी मात्रा अने फास्फोरस अने पोटाश नी पूरी मात्रा नी जो खेड़वाना टाइम पर जमीन मा नाखी देवानो, अने नाइट्रोजन नी जो वसेली शेष मात्रा ने 2 भागों मा बराबर वाटी ने 2 हिस्सा में 4-5 पायड़ा अगर करेला थाई जाए तो इना टाइम पर नाखवू जोईए, अने बीजी वारी में फूल निकलवाना टाइम पर टॉप ड्रेसिंग ने रूप में किसान भाई पौधाना चारों तरफ गोलो बनावीने नाखी देवू जोईए। तो किसान साथियों, ये थाई करेलाना खातर अने उर्वरक नी वात। तो हाउ किसान भाइयों, सिंचाई करेला में की कम करवी जोईए? तो किसान साथियों, सिंचाई अने यू पानी समय पर कई ना टाइम पर आलव जोईए यू घणो किसान भाई ने इनी बात नो घणो असल ध्यान राखो जोईए। अगर किसान भाई ने सही जानकारी सिंचाई नी नी रहे तो मौसम ना अनुसार जेवी रीते ग्राम सेवक या पड़ोसी कई ना किसान अनुभवी किसान थी जानकारी लीने समय समय पर સિંચાઈ કરવાના તરીકાને શીખી લેવું જોઈએ. અને ઉનાળાની ફસલની જો સિંચાઈ છે કિસાન ભાઈઓ, 4-5 દિનના અંતર પર કરતું રહેવું જોઈએ. કેમ કે જમીનની જેવી રીતે નમી ખતમ થવા પર તુરંત કિસાન ભાઈને પાણી આલવું જોઈએ. તો કિસાન સાથીઓ, પાણી જ્યાદા આલવાથી બી પૌધામાં નુકસાન થઈ શકે અને કમ આલવાથી બી નુકસાન થઈ શકે. તો કિસાન સાથીઓ, એની હારું આપણ ઘણી ધ્યાન રાખવી જોઈએ. તો કિસાન સાથીઓ, એ વાત થઈ હાવ પાણીની અને હાવ તોડાઈ અને ઈહુની ઉપજ. તો કારેલાની તોડાઈ કેકમ કરવી જોઈએ અને કઈના ટાઈમ પર કરવી જોઈએ અને એની ઉપજ કેટલી દેવી જોઈએ. તો કિસાન સાથીઓ, તોડાઈ ફળોની જો તોડાઈ જો કુવા કુવા રહે તેના ટાઈમ પર કરવી જોઈએ અને તેનો બજારમાં કિસાન ભાઈને અસલી મૂલ મળે છે. સાધારણતઃ બોવાઈના 60-70 દિનને બાદમાં તેના કરેલાના ફળ તોડવા લાયક અને ખાવા લાયક અને વેચવા લાયક થઈ જાય છે. તો કિસાન સાથીઓ, હાવ કરેલાની જો પ્રતિ હેક્ટરથી જો ઉપજ કિસાન ભાઈને મળી શકે અને ઉનાળાના ટાઈમ પર કાફી અસલ ઈહુનું મૂલ મળે છે. તો કિસાન સાથીઓ, પ્રતિ હેક્ટર 100 થી લગાડીને 125 ક્વિન્ટલ તક કિસાન ભાઈને કરેલાની ફસલની ઉપજ મળે છે. તો કિસાન સાથીઓ, મેં હમણાં તમને ઈહુની કરેલાની ઉપજ અને સિંચાઈ, ખાતર, ઉર્વરક અને ઓરવાની વિધિ અને બીજની માત્રા અને ઓરવાનો સમય અને તીહુની કિસ્મીઓ અને જમીનના બારામાં અને ઉન્નત કિસ્મીઓના બારામાં જાણકારી અને જળવાયુ કેવી રહેવી જોઈએ એવી મેં તમને આગલી અલગ અલગ પ્રકારની જાણકારી હમળાવી.
1: હું છે આરજે રાકેશ
2: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
1: તમે હમળી રહ્યા છો કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપડા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ પર.
3: હરી પત્તેદાર સબ્જીયાં હમારી સેહત કે લિયે કાફી લાભકારી હોતી હૈ. યે સબ્જીયાં સેહત સે ભરપૂર હોતી હૈ. ઇનમે વિટામિન, મિનરલ ઓર ઇસકે અલાવા કઈ તરહ કે ઓર ભી પોષક તત્વ હોતે હૈ જો કે હમારે સ્વાસ્થ્ય પર બહોત અચ્છા પ્રભાવ ડાલતે હૈ. ઇની મે સે એક હૈ પાલક. જી હા, પાલક કી બાત કરે તો ઇસમે ભી મિનરલ, વિટામિન્સ ઓર સાથ હી સાથ આયન ભી કાફી જ્યાદા હોતા હૈ. પાલક સે બને હુએ કઈ એસે વ્યંજન હૈ જિન્હે હમ સાલ ભર ખાના પસંદ કરતે હૈ ઓર ઇસીલિયે પાલક કી માંગ ભી બાજાર મે બની રહેતી હૈ. એસે મે હમારે કિસાન પાલક કી વૈજ્ઞાનિક વિધિ સે ખેતી કર અચ્છા મુનાફા કમા સકતે હૈ. હમ આપકો બતાયેંગે કી કૈસે હમારે કિસાન કર સકતે હૈ પાલક કી વૈજ્ઞાનિક વિધિ સે ખેતી. अपने रंग, स्वाद और सेहत से भरपूर होने की वजह से पालक की मांग पूरे साल बनी रहती है और लोग इसे पूरे साल अपने भोजन में शामिल करना चाहते हैं. ऐसे में हमारे किसान पालक की उचित तरीके से खेती कर अच्छा लाभ भी ले सकते हैं. आइए जानते हैं पालक की खेती से जुड़ी कुछ विशेष बातें.
4: पालक मुख्यतः शीतकालीन फसल है लेकिन इसे पूरे साल भर उगाया जा सकता है, इसलिए इसे सदाबहार सब्जी भी कहा जाता है. पालक का मूल स्थान केंद्रीय और पश्चिमी एरिया है और ये अमराथा सीएई प्रजाति से संबंध रखती है. वैसे तो पूरे विश्व में इसकी खेती की जाती है. भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पालक सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है. ये आयरन, विटामिन का उच्च स्रोत और एंटीऑक्सीडेंट होता है. इसके बहुत सारे सेहतमंद फायदे हैं. ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है. ये पाचन के लिए, त्वचा, बाल, आँखों और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. इससे कैंसर रोधक और एंटी एजिंग दवाइयाँ भी बनती हैं. पालक में अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है जिस वजह से ये शरीर में खून की मात्रा को तेजी से बढ़ाता है.
5: पालक एक ऐसी फसल है जो ट्रॉपिकल रीजन की उत्तर भारत की सबसे मेन फसल है पत्ती वर्गियों में. यह क्या होता है, विंटर में ग्रो किया जाता है. पालक में विटामिन ए सी पाया जाता है. इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन पाया जाता है. पत्तियों की जो लीफ होती है इसमें लो मात्रा में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है.
4: पालक से कई तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं जैसे पालक का साग, चटनी, दाल और पालक की चपाती, जो लोग बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं.
5: डिश की बात करते हैं तो पालक पनीर है, पालक पनीर में सब्जी भुजिया बहुत सारी तरह से डिश है जो हमको बना कर किसका हम यूज कर सकते हैं।
3: फसल चाहे कोई भी हो, ऐसे में खेती से जुड़ी विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। पालक की खेती से भी ये बातें जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रख हमारे किसान पालक की खेती में अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं।
4: उच्चतम पैदावार हासिल करने के लिए सर्दी का मौसम पालक के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। सर्दी के मौसम में 5 से 6 कटाइयां एक फसल से प्राप्त हो जाती हैं। वहीं गर्मी के मौसम में तापमान ज्यादा होने के कारण किसान भाइयों को एक ही कटाई मिल पाती है।
5: इसकी बुआई के 30 से 35 दिन बाद हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसकी हम हार्वेस्टिंग करते रहते हैं।
4: चाहे मौसम सर्दी का हो गर्मी का, पालक की खेती करते समय कुछ खास बातों का ख्याल रखना किसान भाइयों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होता है।
5: क्लाइमेट की बात करते हैं तो विंटर सीजन क्लाइमेट है, इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान में कर सकती है। पालक एक ऐसी फसल है जो गर्मी और पाला दोनों को सहनशील कर सकती है, ऐसी फसल है पालक।
4: पालक की खेती किसी भी मिट्टी में की जा सकती है, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए पीएच मान 7 से 8.5 होना सही होता है। बीजों की बुआई से पहले खेत को 3 से 4 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही खेत में छोटी छोटी क्यारियां और सिंचाई की नालियां बना लेनी चाहिए।
5: हम पालक को किसी भी प्रकार के सोइल में हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सैंडी लोम सोइल जिसका सोइल पीएच मान 7 हो, न्यूट्रल हो, इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ अधिक हो और जल निकास की मात्रा अधिक हो, ऐसी सोइल में हम इसको हम ग्रो कर सकते हैं।
4: पालक की उन्नत किस्मों की बात करें तो कई प्रजातियां प्रमुख हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पालक की ऑल ग्रीन, जोबनेर ग्रीन, पूसा हरित, पंजाब ग्रीन और पूसा ज्योति किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जिसमें ऑल ग्रीन एक ऐसी किस्म है जो बुआई के 20 से 25 दिनों बाद कटाई योग्य हो जाती है। इसकी औसतन कुल 6 से 7 कटाई की जाती है। पालक की पूसा हरित किस्म देश के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी पूरे साल उगाई जा सकती है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग और बड़े आकार के होते हैं। इसमें बीज बनाने वाले डंठल देर से निकलते हैं, इसलिए बुआई के बाद कई बार इस किस्म की कटाई कर सकते हैं। वहीं इसे तैयार होने में 35 से 40 दिन लगते हैं। पूसा ज्योति किस्म पालक की एक महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चलने वाली किस्म है। इसके पत्ते बेहद मुलायम और बिना रेशे वाले होते हैं। इस किस्म को अगेती और पछेती जब चाहे उगाया जा सकता है। बुआई के करीब 45 दिन के बाद इसकी फसल तैयार हो जाती है। वहीं इसकी लगभग 7 से 10 बार कटाई की जा सकती है। अधिक पैदावार वाली इस किस्म से लगभग 18 से 20 टन प्रति एकड़ उपज मिलती है।
5: बहुत सारी वैरायटियां पंजाब की है, जैसे पंजाब की है पंजाब ग्रीन है, पंजाब ग्रीन जो पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है, इसकी उपज 30 टन पर हेक्टेयर होती है। और इसके अलावा आल ग्रीन वैरायटी है, जो आल ग्रीन वैरायटी है बहुत फेमस वैरायटी है, इसकी पत्ती टेंडर होती है और इसकी कटाई 7 से 8 बार करते हैं, कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। आल ग्रीन की बहुत फेमस वैरायटी है। और जोबनेर की वैरायटी है पंजाब जोबनेर जो है, ये वैरायटी इसकी लीफी वैरायटी डेवलप होती है, एक चौड़ी पत्ती वाली होती है, डार्क ग्रीन कलर की वैरायटी होती है जोबनेर वैरायटी जो होती है। और लेटेस्ट वैरायटियां जो है इसकी पूसा भारती जो है IRI से रिलीज हुई है, लेटेस्ट वैरायटी है, इसकी हाई यील्डिंग वैरायटी है, 50 टन पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है, इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है।
3: आज हम बात कर रहे हैं पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा।

0: के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक सभी चरणों में वैज्ञानिक सलाह का ध्यान रखें। पालक की खेती में भी ये बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान बुआई के बाद उसकी सिंचाई पर विशेष ध्यान दें ताकि किसी भी तरह का लॉस उन्हें ना हो। आइए जानते हैं इसके बारे में।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं, पालक के बीजों को भारत के सभी क्षेत्रों में पूरे वर्ष ही लगाया जाता है, लेकिन इसकी रोपाई के लिए सितंबर और नवंबर के माह को उपयुक्त माना जाता है। जुलाई के महीने जिस दौरान बारिश का मौसम होता है, तब इसके पौधे आसानी से उगाते हैं। पालक के बीजों की रोपाई को कई तरीकों से किया जा सकता है। पहला रोपाई विधि द्वारा और दूसरा छिड़काव विधि द्वारा। रोपाई विधि में पालक के बीजों की मेड़ों पर रोपाई की जाती है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 किलोग्राम बीजों की जरूरत होती है। वहीं छिड़काव विधि में प्रति हेक्टेयर 30 से 35 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। पालक के बीजों को खेत में रोपाई करने से पहले उन्हें वाविस्टिन या कैप्टान दवा की उचित मात्रा से उपचारित कर लेना चाहिए। रोपाई विधि द्वारा बीजों को रोपाई करने के लिए खेत में क्यारियों और मेड़ को तैयार कर लिया जाता है। इन पंक्तियों को तैयार करते समय प्रत्येक पंक्ति के मध्य 1 फीट की दूरी अवश्य रखें तथा पंक्ति में लगाए गए बीजों के मध्य 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। इसके बीजों को खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में लगाना चाहिए, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से हो। इसके अलावा छिड़काव विधि से भी बीजों को खेत में लगाने के लिए खेत में उचित आकार की क्यारियों को तैयार कर उन क्यारियों में छिड़क दिया जाता है। इसके बाद हाथ या किसी औजार की सहायता से बीजों को खेत में दबा दिया जाता है।
2: सीड रेट की बात करते हैं, अगर देसी वैरायटी है, जो अर्ली वैरायटी है, जो सब हम बरसात के लिए ग्रो करते हैं, इसमें 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज का हम यूज करते हैं। और जो समर वाली क्रॉप है, जो गर्मी में लगाते हैं, गर्मी में 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से इसके हम बीज का यूज करते हैं।
1: किसी भी फसल के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई की जरूरत होती है, जिससे खेत में मृदा की नमी बनी रहे और बीजों का अंकुरण और विकास अच्छी तरह से हो। पालक की अच्छी फसल के लिए गर्मी के महीने में 4 से 6 दिनों के फासले पर सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि सर्दियों में 10 से 12 दिनों के फासले पर सिंचाई करें। फसलों में सिंचाई जरूरत के अनुसार ही करें। ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर पानी ना रहे, क्योंकि इससे फसल के गुणवत्ता में कमी तो आती ही है, साथ ही फसल में कीड़े और कीट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पालक की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति काफी लाभदायक होती है।
2: अगर फर्टिलाइजर मैन्योर की बात करते हैं, तो इसमें फर्टिलाइजर मैन्योर की कोई खास ज़्यादा जरूरत नहीं होती किसान भाइयों, क्योंकि इसमें लीफी वेजिटेबल है। लीफी वेजिटेबल में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी ग्रोथ अधिक होती है, नाइट्रोजन इसमें हम देते हैं। और इसमें कुछ क्या कहते हैं, फॉस्फोरस भी देते हैं। फॉस्फोरस देते हैं 30 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। नाइट्रोजन देते हैं 80 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। नाइट्रोजन कब देते हैं, जब पहली कटिंग कर लेते हैं। पहली कटिंग करने के बाद उसमें नाइट्रोजन की हाफ डोज देते हैं, और इसके बाद फिर जो दूसरी कटिंग करेंगे तो बची हुई डोज नाइट्रोजन के देते हैं, और इसके बाद हम पानी का सिंचाई देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो।
0: हरी सब्जियां जहां सेहत से भरपूर होती हैं, देखने में मोहक लगती हैं, वही कीट और बीमारियों का खतरा भी इनमें बना रहता है। ऐसे में पालक की खेती में भी बहुत आवश्यक है कि उचित तरीके से कीट और बीमारियों का प्रबंधन किया जाए ताकि फसलों में उसका नुकसान ना हो और फसलें सुरक्षित रहें। आइए जानते हैं पालक की खेती में कैसे करे किसान कीट और बीमारियों का उचित प्रबंधन।
1: अन्य किसी भी फसल की तरह पालक में भी कई तरह के कीट और बीमारियां लगने का खतरा होता है, जिनमें से एक है आर्द्र गलन। ये पालक की फसल में लगने वाली प्रमुख बीमारी है, जो कि नर्सरी में नई पौधों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रकोप से पौधे मर जाते हैं तथा नीचे से मुड़ जाते हैं। इसके प्रकोप से फसल को बचाने के लिए खेत में जल जमाव से पौधों को बचाना चाहिए, साथ ही बुवाई के पहले बीज को ट्राइकोड्रमा नामक जैविक से उपचारित करना चाहिए। नर्सरी का स्थान रोग मुक्त तथा उपचारित मृदा में ही करना चाहिए। वहीं पत्ता धब्बा पालक में सरकोस्पोरा बेटिकुला नामक फफूंद के द्वारा हो जाते हैं। संक्रमण के कारण पत्तियों पर बहुत से सकेंद्रीय छोटे छोटे भूरे रंग के वृत्ताकार धब्बे बन जाते हैं। आरंभिक अवस्था में ये धब्बे एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन आगे चलकर ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। बचाव के लिए बुआई से पूर्व ही बीज को उपचारित करें। ब्लाइटॉक्स दवा के 3% घोल का छिड़काव करना लाभदायक होता है। पर्णचित्ती रोग भी पालक में लग जाते हैं। यह फाइलास्पिक्टा प्रजाति नामक फफूंद के कारण होता है। रोग का लक्षण हल्के पीले रंग के सूक्ष्म बिंदु के रूप में दिखता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल चक्र की विधि को अपनाना चाहिए। प्रभावित फसल पर डाइथेन Z78 के 3% घोल का छिड़काव करना चाहिए। मृद रोमिल आसिता बीमारी पालक में पेरोनोस्पेरा इफ्सा नामक कवक के द्वारा होते हैं। रोग का लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रुई की तरह उभरे हुए या सफेद या पीले रंग के फफूंद के रूप में प्रकट होता है और बाद की अवस्था में धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। रोग की उक्त अवस्था में पत्तियां सूख जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए किसान भाइयों को रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। इन सब उपचारों के अलावा किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विशेषज्ञों से जरूर संपर्क करें और विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए उचित कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए।
2: अगर उपज की बात करें तो उपज कम से कम इसकी 50 से 60 टन तक बहुत अच्छी उपज होती है पालक की। किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। पूरे वर्ष आप जहां पे क्लाइमेट कम होता है वहां ठंडी कम पड़ती है, यहां पे इसको हम पूरे वर्ष ग्रो कर सकते हैं।
0: वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आज हम बात कर रहे हैं पालक की खेती के बारे में, इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए अथक प्रयास करना होगा, और कृषि का क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें काफी श्रम लगता है। लेकिन अगर

0: से शुरुआत की। बाद में सब्जियों खासकर पालक की खेती करने लगे, जिससे इनके गांव के लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ।
1: मेरे पिताजी परंपरागत खेती करते थे, मैंने भी कुछ दिन नौकरी की। नौकरी करने के बाद मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना खेती करूं, चूंकि मेरे गांव में 100 परिवार हैं तो उनको भी रोजगार मिलेगा। मैंने गन्ने की खेती शुरू की। उसके बाद मेरे मन में आया कि आसपास लोग सब्जी का उत्पादन नहीं होता, उसको लेकर के मैंने कई तरह की सब्जियों का प्रयोग किया। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे यहाँ का जो मौसम और मिट्टी और पानी का जो वो है वो बहुत अच्छा है, तो मैंने पालक का की खेती शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद मैंने देखा कि पालक में आप अच्छे से अगर गुड़ाई नराई करके बुआई करते हैं तो पालक का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। और मैं करीब 1 एकड़ खेती में पालक करता हूं और पालक का उत्पादन लगातार 6 महीने तक मिलता है। आप अगर अगस्त में बुआई कर देंगे तो आपको पालक का 6 महीने का समय मिलेगा और मार्च तक लगातार पालक निकलेगी।
0: इन्होंने 1 एकड़ खेत में पालक की वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू किया, जिससे इन्हें लगातार 6 महीने तक पालक प्राप्त होता है। उत्पादन की बात करें तो कौशल मिश्रा बताते हैं कि 1 एकड़ खेत में पालक की खेती करने पर इन्हें टनों में पैदावार हासिल होता है, जिसे वो बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी कमा लेते हैं। कौशल मिश्रा ने अपने गाँव के अन्य किसानों को परंपरागत खेती के मुकाबले सब्जियों खासकर पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती कर लाभ अर्जित करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके।
1: पालक कुंटलों में नहीं 1 एकड़ में टनों का उत्पादन होता है, जिसका मार्केट में रेट कभी कभी अप और डाउन होता है, लेकिन कभी भी 15 रुपए से किलो से कम की नहीं बिक्री होती है। और इसका रेट 25 रुपए से 30 रुपए तक का रहता है, जो हमारे यहाँ की लोकल मार्केट है। लेकिन किसान के लिए वही फसलें करनी चाहिए जिससे प्रतिदिन पैसा मिले, जिससे उसके परिवार, उसके साथ काम करने वाले लोग, उनको रोज पैसा मिले। गेहूं और धान और गन्ने में परंपरागत 6 महीने और 1 साल के बाद पैसा मिलता है। उसके साथ में अगर हम इस तरह से सब्जी का काम करते हैं और खासकर पालक, पालक एक ऐसी सब्जी है कि जो लगातार हर घरों में खाई जाती है और जिसका प्रयोग आप देखिएगा कि अगर पनीर बनेगा तो उसमें भी पालक पड़ेगी, पकौड़ी बनेगी तो उसमें पालक की जरूरत पड़ेगी। पालक लगातार लोग दाल के साथ पालक खाते हैं, पालक अलग अलग तरह से बनाई जाती है, तो जिसका प्रयोग खाने में तरह तरह से लोग करते हैं, जिसका जैसा टेस्ट होता है। और जब आप 1 एकड़ में लगा देंगे तो प्रतिदिन आपकी मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी आप पालक ले जाइए, आपको अच्छा रेट मिलेगा, प्रतिदिन पैसा मिलेगा। तो मेरा किसान भाइयों से सुझाव है कि आप लोग परंपरागत खेती छोड़कर इस तरह की भी खेती करें कि जिससे आपको प्रतिदिन पैसा मिले। आज जितनी दवाइयां प्रयोग करते हैं उससे ज़्यादा रोग आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती करूँ, जिससे रोग कम से कम आए और साफ सुथरी सब्जी समाज को दूँ, बाजार में जाए। मेरा रेट भी अन्य लोगों से 2-3-4 रुपए किलो ज्यादा रहता है।
0: वैज्ञानिक विधि द्वारा किसी भी फसल की खेती करना बेहद लाभप्रद साबित होता है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और वैज्ञानिक सलाह। विशेषज्ञों की सलाह लेकर किसान अधिक से अधिक पैदावार हासिल करने में सफल हो सकते हैं। पालक की खेती भी वैज्ञानिक विधियों से कर किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे जल्दी तैयार होने वाले फसलों में से एक है, जो लगभग 30 से 35 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी सब्जियों की तुलना में कम लागत लगती है। किसान पालक को पोषण मूल्य को ध्यान में रखते हुए पालक की खेती बड़े पैमाने पर कर सकते हैं।
2: तो सालो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपुई बात हामली सब्जी वर्गी खेती नी, इनामा आपुई लौकी एतरे नई नी खेती नी बात करी, करेला नी खेती नी वात्यो हामलियो, अने जाता जाता आपुई पालक नी खेती नी पण विस्तार पूर्वक वात्यो हामलियो। तो किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में बस एतरी बात, केम के हाव समय थाई गयो छे बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ आरजे राकेश लूं छे तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कहता हामलता रहेजो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM पर। तमारा रेडियो खतवार आरजे राकेश हाथे।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, अक्सर हम किसी व्यक्ति को उसकी एक ही पहचान से जानते हैं। कोई सैनिक होता है, कोई इंजीनियर, कोई लेखक और कोई संगीतकार। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे विलक्षण शख्सियत से मिलवाती है जिनके जीवन में ये सभी रंग एक साथ समाये होते हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक बहुआयामी और प्रेरणादायक हस्ती मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन, आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थी, प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित अधिकारी, विश्व स्तरीय सॉफ्टवेयर और सिस्टम एक्सपर्ट और एकॉर्डियन के कुशल वादक, अनेक पुस्तकों के लेखक और सबसे बढ़कर हिंदी सिनेमा के सदाबहार सितारे देवानंद के ऐसे अनन्य प्रशंसक जिन्होंने उनके जीवन और सिनेमा को सहेजने के लिए दो अद्भुत ग्रंथों की रचना की। इनकी पुस्तक देवानंद बैंड वैगन देवानंद जी की सृजन यात्रा में साथ चलने वाले कलाकारों और सहयोगियों की कहानी है, जबकि देवानंद एनसाइक्लोपीडिया उनके संपूर्ण सिनेमाई संसार का एक दुर्लभ और प्रमाणिक दस्तावेज है। लेकिन दोस्तों, आज की बातचीत केवल उपलब्धियों की नहीं होगी, हम जानेंगे कि एक वायु योद्धा के भीतर संगीत कैसे जन्म लेता है, एक तकनीकी विशेषज्ञ लेखक कैसे बनता है और एकॉर्डियन की धुनों में ऐसा कौन सा जादू बसता है, और आखिर देवानंद की मुस्कान ने कैसे एक व्यक्ति को जीवन भर के शोध और लेखन के लिए प्रेरित किया। तो आइए बिना किसी देर के बड़ी आत्मीय स्वागत के साथ आमंत्रित करते हैं विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ग्रुप कैप्टन माइक राणा जी का। माइक सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू आलोक जी, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सच ए वंडरफुल ऑडियंस। योर टाइम, अटेंशन एंड एनकरेजमेंट मीन अ ग्रेट डील। वी ट्रूली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस एंड होप यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस एज मच एज वी एंजॉय शेयरिंग इट विद यू। थैंक यू।
1: तो माइक सर, मैंने जैसे अभी अभी अर्ज किया, आपकी एक नहीं अनेक पहचान है, अनेक रूप है। एयरफोर्स ऑफिसर, आईटीएन, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट और म्यूजिशियन और ऑथर। अब ये बताइए मुझे कि आप अपने आप को किस इस रूप में किससे साथ सबसे ज्यादा आप जुड़ाव महसूस करते हैं, कौन सा रूप आपको बहुत प्यारा लगता है, आपके दिल के बहुत करीब है?
2: ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है। बट एज एन ऑथर, बिकॉज एन ऑथर डेमोन्स्ट्रेट्स ऑल दैट ही गेन्स इन हिज लाइफ, वेदर इन द आईएएफ और कॉर्पोरेट लाइफ, सो मैं आपको अपने आप को एक ऑथर ही कम समझूंगा।
1: तो आपको अपना लेखक का रूप सबसे ज्यादा अजीज है। वाह, क्या हाँ। बात है। और आपने यार प्रोलिफिक ऑथर, जितना आप, खैर अभी उसके बारे में हम बातचीत करेंगे तो हमारे श्रोताओं को पता लगाएगा आपके बारे में कितने रूप हैं आपके। तो अब थोड़ा सा सर पीछे चलते हैं, एयरफोर्स की ये जो शानदार सेवा, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप जुड़े? क्या बचपन में ही यूनिफॉर्म पहनने का सपना था, या अचानक जिंदगी को आपको इस मुकाम पर लेकर आई, क्या हुआ, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे?
2: जी जरूर जरूर। My father served as a captain in the Indian Army during the Second World War. काफी पुरानी बात है। More than his military rank, it was his honesty and integrity that left a very deep impression on me. He never lectured us about these virtues. He lived by them every day. And in doing so, shaped the foundation of my character. And when I entered the engineering college, I became aware of how dishonesty and deception had become prevalent in everybody's life. Mm-hmm. This contrasts with the values I had been raised with. It was impossible to ignore. I was longing for a profession where discipline, honor, and integrity formed the very basis of service. Driven by that conviction, I applied to join the Indian Air Force during the final year of my degree. Mm-hmm. I was selected, marking the beginning of a journey guided by principles my father had installed in me from childhood.
1: That is great, sir. Generally, IITians ko bade-bade corporates mein, bade-bade MNCs mein job us zamane mein milte the. To aapne ye socha ke main Air Force join karunga.
2: बिल्कुल
1: क्योंकि बहुत मेरे ख्याल में very few people from IIT they join forces. I don't know, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लोग join नहीं करते हैं.
2: हाँ, बहुत ही कम परसेंटेज होती है, लेकिन जो भी ज्वाइन करते हैं उनको फायदा मिलता है कि आईआईटी में जो सीखा और एयरफोर्स में जो सीखा दोनों को मिला के अपनी जिंदगी बिताने का टाइम मिलता है.
1: तो सर, आपका एयरफोर्स का इतना लंबा भी है और डिस्टिंग्विश कैरियर भी रहा है, तो कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस या कोई ऐसा मिशन जो आपको आज भी जब उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं, बहुत मजा आता है याद करके उसको?
2: हाँ, ड्यूरिंग द ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान, आई वाज असाइंड टू एस्कॉर्ट 30 SAM-2 missiles फ्रॉम बैरकपुर टू दिल्ली इन अ ट्रेन. It was a mission that needed constant vigilance. And the journey lasted 4 days and 4 nights with the possibility of Pakistani air attacks on us. So our convoy was escorted throughout by Indian Air Force fighter aircraft. They provided us with aerial cover from Barakpur to Delhi. And more than once, air raid sirens were sounded at night, warning of possible attacks from the sky. So we remained on full alert every moment with no sleep until the convoy reached Delhi safely. And completing this mission without any incident, and this remains as one of the most memorable experiences of my life. And there were about 35 people along with me.
1: ग्रेट. ये तो बहुत ही पूरी रात, 2-3 रात जितनी भी आपकी वहां गुजरी होंगी ट्रेन में, वो बहुत ही एंजाइटी भी रही होगी और अटैक नहीं हो जाए ये भी रहा होगा.
2: तो ऊपर से हवाई जहाज का खतरा था ना.
1: सही बात है. ओके ओके. तो आप थोड़ा सा, आपने उसके बाद में एक कॉर्पोरेट दुनिया में भी एंट्री ले ली. तो ये डिसिप्लिन और डिफेंस से बिजनेस और टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में भी आप काफी माहिर हैं जैसा मुझे पता लगा है. तो ये जो शिफ्ट थी आपकी फ्रॉम डिफेंस टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसके बारे में ब्रीफ में कुछ बताइए हमें, को कैसा लगा आपको इसके कॉर्पोरेट्स की दुनिया?
2: बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा. इट वॉज द ग्रेटेस्ट चैलेंज आई एनकाउंटर्ड after leaving the Air Force. It was not technology, it is not competition or hard work. It was deception. I found that short-term business interests overshadowed the engineering principles and ethical decision-making. For someone whose professional life had been shaped by integrity and accountability, this was very disheartening and frustrating. So this experience ultimately led me to write a book, The Deception.
1: Okay.
2: Deception. The book is intended to prepare people transitioning from armed forces to corporate life by helping them recognize the challenges and preparing them to navigate without compromising their moral values.
1: Okay. तो डिसेप्शन का बैकग्राउंड ये है आपका इस बुक का? ओके
2: जी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन कभी बाद में मिलेंगे, टाइम तो बताएंगे।
1: क्योंकि जनरली जो डिफेंस से लोग आते हैं वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं या सिक्योरिटी में चले जाते हैं, जनरली हमारे बैंक्स में भी बहुत आते हैं। तो इस तरह से आपने तो, लेकिन उसमें काफी टेक्निकली बहुत आप साउंड है, तो आपने उस पर काफी काम किया। तो ऐसा करते हैं, आपकी इस ट्रांजिशन के नाम पे रुक के एक हम अच्छा सा गाना सुनते हैं, क्योंकि आपका जो जिंदगी बदली है एक AFS ऑफिसर से और एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की तरफ, इस पे रुक के एक गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को थोड़ा सा आगे और म्यूजिकली आगे आगे लेके चलते हैं।
2: जी हजूर।

0: वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाडिया भील, और मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। और हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी माइक राणा जी से। हाँ तो माइक सर, इतनी व्यस्त प्रोफेशनल लाइफ के बीच म्यूजिक आपकी जिंदगी में कैसे आया, इसने किस तरह से एंट्री मारी, मुझे तो ये बताइए आप।
1: ये बड़ी लंबी कहानी है।
0: जी
1: आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब मेरे फादर वहां थे, ही ब्रॉट होम एन अकॉर्डियन इटालियन, सेटिमियो सोप्रानी वॉज द नेम, सेटिमियो
0: ओके
1: सोप्रानी।
0: सोप्रानी ओके
1: हाँ, तो माई इंटरेस्ट इन म्यूजिक बिगैन ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज। हाउ? बिकॉज वेन ए फ्रेंड एक्सप्लेन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन म्यूजिकल नोट्स एंड फ्रीक्वेंसीज थ्रू ए सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट विच वी यूज टू डू। इन
0: ओह
1: दैट
0: अच्छा
1: एक्सपेरिमेंट, हाँ, इन दैट
0: हाँ
1: एक्सपेरिमेंट ए स्मॉल राइडर इज प्लेस्ड ऑन ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। इट इज थ्रोन ऑफ व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग रेजोनेट्स विद दैट ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क।
0: ओके ओके
1: सो द साइंस बिहाइंड द म्यूजिक फैसिनेटेड मी। इट हेल्प मी फिनिश द एक्सपेरिमेंट इन सेकेंड्स बिकॉज आई कुड स्ट्रेट अवे गेट टू द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, व्हाइल द अदर्स टुक मोर देन 30 मिनट्स टू कैरी इट आउट। So, inspired by this connection between physics and melody, I taught myself to play the accordion. What began as curiosity grew into a lifelong passion.
0: सर बहुत फैसिनेटिंग है, ये बड़ा मजा आ गया आपकी बात सुन के। आप मतलब जो प्रयोगशाला के अंदर जो वो हुआ उससे आपकी जिंदगी में आपके म्यूजिक आ गया एक एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो अब ये बताइए कि अकॉर्डियन जो है वो एक अनोखा वाद्य यंत्र है, और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लोग हिंदुस्तान में उसको बजाते भी नहीं। आपने बताया कि इटालियन ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया, तो इससे रिश्ता कैसे जुड़ा, फिर आप इससे आप अकॉर्डियन तक कैसे पहुंच गए?
1: हाँ जी, पहले सबसे पहले मैं वो गाना बताना चाहता हूँ
0: हाँ जी
1: जिसके
0: बताइए।
1: जिसके बेसिस पे मैं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट करता था। वो गाना था 20 साल बाद का, कहीं दीप जले कहीं दिल।
0: जी बहुत
1: वो गाना, उस गाने को हम फ्रीक्वेंसी पे मैच करते थे। खैर,
0: ओ हाँ
1: द अकॉर्डियन इज टू बी प्लेड विद टू हैंड्स, बोथ द हैंड्स, मच लाइक ए पियानो। द राइट हैंड प्लेज द मेलेडी व्हाइल द लेफ्ट हैंड प्लेज द अकॉम्पनीमेंट which uses chords. In India, however, many people play the accordion like a harmonium, relying entirely on the right-hand side and seldom using the left-hand side. So I made a conscious effort. But, you know, it's a combination of three notes that harmonize with the melody played by the right hand. This interplay between melody and harmony is what gives the accordion its distinctive sound.
0: तो ये जो वो तो ये क्या, मैं ऑफ द कफ सवाल ही पूछ रहा हूं आपसे कि ये पियानो का और क्या हारमोनियम का एक तरह से मिक्स है, या दोनों का एक वो है, कॉम्बिनेशन है, इज इट सो?
1: बस आप समझ सकते हैं कि राइट साइड पे आप हारमोनियम बजा रहे हैं और लेफ्ट साइड पे अकॉर्डियन बजा रहे हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो प्रॉपर अकॉर्डियन बन जाता है। तो जब आप बजाते हैं अकॉर्डियन तो आपको लेफ्ट साइड का भी ध्यान रखना पड़ता है और राइट साइड का तो करना ही करना है, और फिर अकॉर्डियन को खींचना पड़ता है। खींचने के लिए जो आपको बैलेंस करना पड़ता है अपनी बॉडी का, वो भी काफी मुश्किल रहता है।
0: क्योंकि जो कुछ हमने राज कपूर को बजाते देखा है बचपन में या फिल्मों में देखा है, उसमें ये इसमें फिजिकल एफर्ट भी काफी लगता है उसको
1: बहुत
0: पुश
1: ज्यादा,
0: करने के लिए,
1: बहुत, हाँ, इट
0: है
1: इज। और जैसे जैसे मेरी लाइफ बढ़ती जा रही है, मुझे थोड़ा उठाने में भी तकलीफ हो रही है। इसका
0: ना?
1: वेट मेरा ख्याल के 8-9 किलो के बराबर होता है।
0: हाँ, होगा सर, होगा होगा, क्योंकि मैंने आपके थोड़े से वीडियो भी देखे हैं, मुझे बड़ा वो लगता है कि आप खड़े खड़े सब कुछ बजाते हैं। अरे वाह। तो अच्छा, वाई सो मैनी पीपल इंडिया डू नॉट प्ले अकॉर्डियन? मेरे ख्याल में पहले तो फिल्मों में बजाया करते थे, अब नहीं दिखाई देते कुछ।
1: देखिए, पहले फिल्मों में म्यूजिक डिफरेंट टाइप होता था। पहले म्यूजिक वाज, इट यूज्ड टू गो विद द स्टोरी, इट वाज यूज्ड टू गो विद द इमोशंस। द म्यूजिक भी डिफरेंट होता था। तो उसमें अकॉर्डियन का जो रोल है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से आता था, क्योंकि जो सारा बेस है गाने का वो लेफ्ट साइड से आता था, राइट साइड में तो सिर्फ गाना ही गाना बजता है।
0: ओके ओके,
1: तो मैं आपको बताता हूं कि दो तीन गाने जो बहुत अच्छे मुझे अच्छे लगते हैं। तो एक तो गाना है याद किया दिल ने कहां हो तुम, पतिता पिक्चर का गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है। उसके बाद आपने अभी बोला था राज कपूर, हर दिल जो प्यार करेगा उनका गाना
0: गाना गाया।
1: तो उसी उसी दिशा में जाते हुए एक गाना है जीना यहाँ मरना यहाँ, मेरा नाम जोकर पिक्चर का था
0: जी, जी।
1: ये बहुत सीरियस सा गाना है और ये नॉट ओनली इंडियन सॉन्ग है, ये बाहर के कंट्रीज में बहुत जगह ये गाना बजता है। इसको बोलते हैं वॉल्ट्स, वॉल्ट्स होता है ये।
0: अच्छा वॉल्ट्स है क्या ये?
1: हाँ ये
0: डांस होता है,
1: करेक्ट, वेनिस वॉल्ट्स उसको बोलते हैं। तो जीना यहाँ मरना यहाँ वही गाना है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और मेरे ये सारे गाने हैं वो YouTube की मेरी चैनल है ऐप The Arts People Catalog, उस पे सुन सकते हैं।
0: ओके,
1: उसका लिंक मैं भेज दूंगा आपको।
0: जी जी, बहुत बढ़िया।

0: और आई
1: ये
0: रिकमेंड जो जो जिन लोगों को म्यूजिक में शौक है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, मजा आ जाएगा। और ये वॉट्स की जो धुन है वो पहले पिक्चरों में, जूली में भी आती थी, और दो तीन पिक्चरों में इस तरह के गाने हैं मुझे याद है, तो
0: नहीं,
1: वाह, ये
0: गाने
1: वॉट्स
0: तो
1: और
0: अनगिनत हैं,
1: हाँ
0: गाने तो अनगिनत हैं। मैं अगर मैं बहुत टाइम हो तो मैं सारे गाने आपको लिस्ट करके बता दूं।
1: चलिए कोई बात नहीं, अपने पे समय सीमा है। तो अब तो ये हो गया कि म्यूजिक आपके लिए हॉबी भी है, और मेरे का हॉबी से ज्यादा तो पैशन हो गया है, या एक मेडिटेशन हो गया आपके लिए?
0: बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। म्यूजिक एक्चुअली प्योरली इट इज ए हॉबी फॉर मी, लेकिन ऐसा है कि आई ऑर्गेनाइज म्यूजिकल इवेंट्स और मैंने कई इवेंट्स किए हैं, तो इट सीजेस टू बी ए हॉबी, इट बिकम्स अ काइंड ऑफ ए पैशन अनलेस आई इमर्स माई सेल्फ कंप्लीटली इन एवरी डिटेल। माई एसोसिएट्स फाइंड देमसेल्व ड्रॉन इन टू द सेम कमिटमेंट, हमारी को सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस के लिए पूरा पैशन लगा के करना पड़ता है।
1: चलिए, मैं इस पर थोड़ा लंबा डिस्कशन करना चाहता, लेकिन आपकी एक टीम है, इसका मतलब है आपके साथी लोग हैं जो आपको ये म्यूजिकल कंसर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं?
0: हाँ वो टीम है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टीम मेरी एक्सक्लूसिव टीम नहीं है, वो लोग बदलते रहते हैं।
1: मैं समझ
0: कभी
1: गया।
0: कोई आ गया, कभी किसी को दूसरा काम मिल गया तो वहां चला गया, इसलिए गड़बड़ हो जाती।
1: तो चलिए, इस अकॉर्डियन प्रेम और मोहब्बत के नाम पे हम एक गाना सुनते हैं, कोई बजाया हुआ अकॉर्डिंग की धुन सुनेंगे, और फिर इसके बातचीत को आगे जारी रखेंगे।

0: हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाटिया भील, और हम बात कर रहे हैं माइक राणा जी से। तो अब उस शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिसने जिसके लिए आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने नाम कर दिया है, देवानंद। अब ये बताइए कि आखिर क्या था उस पर्सनैलिटी में जिसने आपको उनका एक तरह का आजीवन प्रशंसक बना दिया? ऐसी क्या खास बात है उस शख्सियत में?
1: अब वो देवानंद के बारे में क्या बोलें, इतनी हजारों उनके क्वालिटीज थी, बट व्हाट आई एडमायर मोस्ट अबाउट देवानंद वाज हिज परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन टू परसू हिज गोल्स विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट्स और द फाइनेंसेस। इन दैट रिस्पेक्ट आई फाइंड ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिम इन मी। व्हेनेवर आई ऑर्गेनाइज ए म्यूजिकल इवेंट, माई फोकस इज नेवर ऑन द मनी। माई ओनली कंसर्न इज टू क्रिएट an event of the highest possible quality. So his dialogue delivery was another hallmark. It was distinctive, effortless, and impossible to ignore. Recently, as Shatrughan Sinha said on the Indian Idol show, many artists, they say he imitates Devanand's style, and some do it remarkably well, creating an illusion that Devanand himself is on the stage. But there is one specific quality that no one has ever been able to replicate, and that is his grace. Devanand's grace was superb. Devanand was undoubtedly handsome, but in my opinion, good looks fade away with time. His grace, charm, confidence, and effortless screen presence were timeless. Those qualities made him truly unforgettable.
0: वंडरफुल। नहीं, सही बात है, मैं भी देवानंद का फैन हूँ शुरू से, और ये जो ग्रेस वाला जो पॉइंट है आप, ये कहीं नहीं है। उसने कभी कभी स्क्रीन पे कभी कोई, मतलब दैट रिमाइंड्स मी, हम वैसे ही बात कर रहे हैं ऑफ द कफ, कि कभी कोई ऐसी हल्की हरकत नहीं की कभी भी
1: बिल्कुल नहीं,
0: उसकी
1: बिल्कुल नहीं की,
0: एक्टिंग में,
1: बिल्कुल
0: है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं की।
0: आपने भी उसकी सारी पिक्चर देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं, तो ऐसी कि हल्की हरकत कभी नहीं की उसने, है ना,
1: हाँ बिल्कुल, कभी
0: एक्टिंग
1: नहीं की,
0: में,
1: कभी कभी नहीं की।
0: एक तरह, बिल्कुल ये बात है, ग्रेस था वो। तो आपने अब ये देवानंद बैंड वैगन जो आपने बुक लिखी है, अब इसमें जो आपका टाइटल है बैंड वैगन, ये भी अपने आप में एक अनोखा ही है। कुछ इस टाइटल के बारे में बताइए, और कैसे इसका दिमाग में कैसे आया आपके
1: अच्छा, तो जो बैंड वैगन है ये मेरी दूसरी किताब है। पहली किताब थी एनसाइक्लोपीडिया, उसके बारे में अभी
0: अच्छा
1: बाद
0: बैंड
1: में बात करते हैं।
0: जी?
1: तो बैंड वैगन क्या है? इट सेलिब्रेट्स द आइडिया दैट ग्रेट सक्सेस इज नेवर द अचीवमेंट ऑफ वन पर्सन, द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ मेनी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स। दैट इज हाउ बैंड वैगन इज मेड। वाइल द एनसाइक्लोपीडिया इज ए फैक्चुअल रेफरेंस बुक, मतलब कितनी पिक्चरें थी, किसने कहा, कौन से गाने थे। बैंड वैगन गोज बियॉन्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट एक्सप्लोर्स द क्रिएटिव स्पिरिट बिहाइंड नवकेतन फिल्म्स एंड द पीपल हु मेड इट सक्सेस पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, द बुक हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ देवानंद ब्रदर्स चेतन आनंद एंड विजय आनंद, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स लाइक एस डी बर्मन एंड आर डी बर्मन, आउटस्टैंडिंग लिरिसिस्ट एंड राइटर्स, प्रोग्रेसिव लीडिंग लेडीज, टैलेंटेड कैरेक्टर एक्टर्स एंड मेनी अदर क्रिएटिव माइंड्स हु वर्क टुगेदर टू बिल्ड द नवकेतन लेगेसी। सो बैंड वैगन इज द स्टोरी ऑफ टीम वर्क, क्रिएटिविटी, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड शेयर्ड विजन। इट शोज हाउ द कंबाइंड टैलेंट ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स ट्रांसफॉर्म्ड नवकेतन फिल्म्स इनटू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बैनर्स इन इंडियन सिनेमा, एंड हाउ द कलेक्टिव एफर्ट बिकेम ए वर्दी पार्ट ऑफ देवानंद लेगेसी।
0: ओके, वंडरफुल सर। तो अच्छा, मैं आप थोड़ा सा फिर एक आपको एक देवानंद की जिंदगी में ले चलता हूं, और बहुत ही ऑफ द कफ सवाल है। उसकी जो लीडिंग लेडीज थी, खासतौर से सुरैया के बारे में कुछ इसमें है क्या?
1: बहुत कुछ लिखा है सुरैया के बारे में, चार पांच पन्ने। सुरैया तो ऐसी चीज थी कि मतलब वो तो देवानंद तो जब कुछ भी नहीं था तो सुरैया तो फिल्म स्टार बहुत बड़ी थी उसको, जब वो घर से निकलती थी तो बाहर उसे लाइन लगी होती थी लोगों की, जैसे आजकल अमिताभ बच्चन के घर के सामने लाइन लगती है, उसी तरह सुरैया के घर के लाइन सामने लाइन लगती थी।
0: डॉक्टर विद्या या विद्या या ऐसी कौन सी पिक्चर थी?
1: हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी
0: पिक्चर। तो अच्छा, जब आपने रिसर्च की इसके बारे में तो कोई ऐसी खास बात देवानंद की लाइफ से निकल के तो नहीं आई जो आपको भी नहीं पता थी देवानंद के बारे में, जब आपने पूरा लोगों से बातचीत की होगी या जो भी रिसर्च की होगी?
1: नहीं, इसने कई बातें की, लेकिन एक मुझे सबसे सरप्राइजिंग एस्पेक्ट उसका ये लगा कि ही हैड द एबिलिटी टू रिमेन यंग इन स्पिरिट थ्रू आउट हिज लाइफ, व्हाइल मेनी स्टार्स रिलाइड ऑन देयर पास्ट ग्लोरी, मतलब पहले मैंने क्या कर गया, लेकिन ही लुक्ड अहेड एम्ब्रेसिंग न्यू आइडियाज, न्यू फेसेस एंड न्यू स्टाइल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। इक्वली रिमार्केबल वॉज हिज ऑप्टिमिज्म, even when some of his later films failed commercially, he never lost his belief in the next project. He viewed every setback as a stepping stone rather than a defeat.
0: तो चलिए, तो आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए जिसे आजकल के

0: काफी जोर लगा के हम सोचते हैं। तो सबसे पहली फिल्म तो जो सारी दुनिया में मशहूर है वो गाइड है,
1: जी
0: उसमें
1: बिल्कुल
0: परफॉर्मेंस बहुत अच्छी पिक्चर थी वो। एक पिक्चर थी काला पानी, वो उसमें उसकी एक्टिंग बहुत ड्रामेटिक थी। उसके बाद एक पिक्चर आई थी ज्वेल थीफ, द
1: ज्वेल
0: अल्टीमेट स्टाइलिश थ्रिलर। मतलब इसमें मतलब जो जो आदमी थ्रिलर देखते हैं उनके लिए पिक्चर है। फिर एक पिक्चर आई थी जॉनी मेरा नाम,
1: जॉनी
0: हिज
1: मेरा
0: बिगेस्ट कमर्शियल एंटरटेनर। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी ये पिक्चर। फिर
1: बिल्कुल
0: एक बड़ी रोमांटिक सी पिक्चर थी हम दोनों, ए
1: हम
0: परफेक्ट
1: दोनों
0: ब्लेंड ऑफ रोमांस म्यूजिक पेट्रियोटिज्म एंड परफॉर्मेंस। लेकिन इनके साथ साथ दो तीन पिक्चरें और भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक थी तीन देवियां और एक थी फंटूश।
1: फंटूश
0: तीन देवियां के बारे में तो काफी लोग लिखते हैं कि ही वाज तीन देवियां शो कास्ट, देवानंद एफर्टलेस चार्म अपोजिट थ्री लीडिंग लेडीज। लेकिन फंटूश जो थी, फंटूश ऐसी पिक्चर थी जो जब ये यंग था तब इसने बनाई थी। एंड ही वाज विलिंग टू बिकम ए मैड मैन, ही बिकेम ए मैड मैन टू शो हिज हाउ ए मैड पर्सन कैन बिहेव। ये फंटूश पिक्चर की कहानी है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत मुझे याद है फंटूश, मैंने भी देखी है। मेरी टोपी पलट के आज इसमें गाना था
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ
1: क्या तो चलिए ऐसी है मेरी टोपी पलट के आज पे एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर हम इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।

0: हाँ सर, वेलकम बैक। तो अब मैं आपसे बस एक छोटा सा ही सवाल करता हूं। आपकी दूसरी जो बुक है देवानंद एनसाइक्लोपीडिया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आप ही बताइए कि इसमें क्या क्या कवरेज है और क्या खास बात है इस बुक के बारे में।
1: इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ऑथेंटिसिटी, कि दिस बुक इज इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज इट्स एक्यूरेसी। वो कैसे हुई? ड्रॉइंग ऑन माई नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड माई कीन लिसनिंग स्किल्स, आई यूज ए माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड डेटाबेस प्रोग्राम कॉल्ड स्ट्रिंग्स, STRINGS, स्ट्रिंग्स, टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड क्रॉस रेफरेंस इंफॉर्मेशन। इन द प्रोसेस आई वेरीफाइड एंड करेक्टेड मेनी इनकरेक्ट क्रेडिट्स एंड कंफ्लिक्टिंग डेट्स ऑफन फाउंड ऑन विकिपीडिया एंड यूट्यूब रिकॉर्ड्स। द एनसाइक्लोपीडिया कंफ्लिक्टिंग डेट्स ऑफन फाउंड ऑन विकिपीडिया एंड यूट्यूब रिकॉर्ड्स। द एनसाइक्लोपीडिया कवर्स 129 फिल्म्स फ्रॉम देवानंद डेब्यू इन हम एक हैं, वॉज हिज फर्स्ट पिक्चर, एंड ऑल्सो फॉर द फाइनल पिक्चर दिव्या भारती के बारे में जो उसने चार्जशीट वगैरह बनाई थी तब तक। इट ऑल्सो डॉक्यूमेंट मोर देन 500 मेमोरेबल सॉन्ग्स फ्रॉम हिज करियर। और मजेदार बात, एनसाइक्लोपीडिया इज लाइक ए ट्रू एनसाइक्लोपीडिया। एवरी फिल्म एंट्री, अगर दो दो पन्ने या तीन पन्ने का वो पेज है, उसमें कास्ट है, क्रू है, प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन है, सॉन्ग टाइटल्स हैं, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी रही, नोट्स नवकेतन फिल्म के से, मोर देन जस्ट ए फिल्मोग्राफी। दिस बुक इज अ डिपेंडेबल रिकॉर्ड ऑफ देवानंद एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। अगर आपने ये बुक कभी पढ़ी, डू नॉट इग्नोर और बाईपास दैट।

0: trivia, which consists of many anecdotes connected with every film in the encyclopedia. You will surely like it.
1: Okay, wonderful. तो कोई फिर मैं ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ, कोई कोई एनेक्डोट देवानंद के बारे में आप सुनाना चाहें उस बुक से या वैसे ही कोई?
0: नहीं, वो बहुत बड़ी लंबी लंबी एनेक्डोट्स हैं, पर फॉर एग्जांपल मुझे इमीडिएटली एक याद आ रहा है कि जैसे कई गाने हैं एसडी बर्मन के बजाए हुए बजाए बनवाए हुए, लेकिन असल में वो गाने उसकी वाइफ ने बनाए हैं.
1: ओके अच्छा.
0: हाँ, ये एक बड़ी कमाल की चीज है जो मैंने नोटिस की थी. और भी बहुत
1: अच्छा.
0: हजारों चीजें हैं कि देवानंद कहाँ था, उसने क्या किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके साथ जो लोग थे उनके साथ क्या क्या, ये सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी. बहुत ज्यादा उसमें कहानियां.
1: वेरी गुड. तो चलिए, एसजी बर्मन साहब त्रिपुरा के शायद रॉयल फैमिली से थे और
0: हाँ
1: उनकी पत्नी भी बहुत संगीतकार थी, ये आपने आज हमें बता दिया. तो इसी
0: हाँ
1: बात पे
0: बिल्कुल.
1: रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर
0: हाँ
1: आपके जिंदगी के एक दूसरे रुख की तरफ बातचीत करते हैं.
0: थैंक यू सर, थैंक यू.

0: हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो SN और रेडियो टाटिया भील, और हम बात कर रहे हैं माइक राणा जी से, जो देवानंद साहब के, सदाबहार देवानंद साहब के एक खास प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं, और उनपे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी हैं। तो आपने देवानंद के ऊपर बुक्स लिखी है। अब मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताइए कि इसके अलावा जो आपने बुक्स लिखी है, कुछ उनके बारे में हल्का सा हमें बताइए, फिर हम आपकी जिंदगी के एक दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में भी बात करना चाहेंगे।
1: मैंने जो दो तीन किताबें मैंने आपको बताया, एक डिसेप्शन, एक देवानंद की बैंड वैगन और देवानंद का एनसाइक्लोपीडिया। इन एडिशन टू दोज बुक्स आई एम नाउ कमिंग आउट विद ए मिस्ट्री सीरीज, ड्रेक क्रॉस। ड्रेक इज ए जेंटलमैन, क्रॉस इज ए लेडी। ड्रेक एंड क्रॉस की मिस्ट्रीज। द फर्स्ट फर्स्ट बुक इज द ओकवुड ओकवुड मैनर कॉन्स्पिरेसीज। ये जैसे आएगा था किसी और शर्लक होम्स में एक्टिव होते थे, डिटेक्टिव होते थे, उसी टाइप की किताब है। एंड आई वांट टू टेक अवे द क्रेडिट ऑफ शर्लक होम्स एंड अगाथा क्रिस्टी, हरक्यूल पायरो, यूजिंग दिस बुक। एक किताब मैंने लिखी है द क्राउनिंग सिंड्रोम, वो कोरोना वायरस के टाइम जब हुआ था तो किताब लिखी थी। लोग मुझसे पूछते थे, आप क्या मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए हो? मैंने कहा नहीं, कि मैंने मेडिकल से तो नहीं पढ़ा, पर जो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी बायोलॉजी के बारे में सब कुछ था। फिर एक कहानी थी मैंने लिखी द हिमालयन स्वामी, इट्स ए मिस्ट्री इन हिमालय। इट्स ए हिमालय में एक स्वामी था, ही वॉज इन कंट्रोल ऑफ स्पिरिट्स। तो उसने स्पिरिट्स का एक स्टोर हाउस बना रखा था, जब भी कहीं भेजना था, हाँ, वो स्पिरिट्स को भेजता था और स्पिरिट्स वहां जाके काम करके आ जाती थी। जैसे चेचनिया में लड़ाई हुई तो उसने वहां से बंदे भेजे, स्पिरिट्स को भेजा, तो वहां पे उनको हरा के आए।
0: ओके,
1: फिर
0: बड़ा
1: दो
0: इंटरेस्टिंग लग
1: तीन
0: रहा है। हाँ
1: बहुत अच्छी किताब है, द सिटीजन मैनिफेस्टो एंड द वंडरफुल वर्ल्ड। दीज आर नॉर्मल पॉलिटिकल बुक्स कि आजकल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटीज है पॉलिटिक्स, उस टाइप की किताबें हैं। तो
0: लेकिन आपको ये शार्लक होम वाटसन की जोड़ी और इस तरह से अगाथा क्रिस्टी के जो हरकुल पोरिया है, वो उसकी जोड़ी, इसको लिख के आपने तो एक तरह का ओल्ड वर्ल्ड चार्म, जिसको हम कहते हैं, वो आप हमारी जिंदगी में ले आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने तो बहुत पहले अर्नेस्ट हेनले गार्डनर और इनकी बुक्स पढ़ा करते थे हम, हैरी मैसन और ये सारा पढ़ते थे। उसमें भी एक लेफ्टिनेंट ड्रेक होता था, मुझे पूरा नाम भी याद नहीं है उसका।
1: हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ये जो पहली किताब है द ओकवुड मैनर कॉन्स्पिरेसी, जो ओकवुड मैनर है, इट इज लाइक, अगर आपने पढ़ी हो किताब रिबेका,
0: हाँ, रिबेका
1: रिबेका
0: पढ़िए
1: में,
0: सर। हाँ, वो
1: उसमें,
0: उसकी है, वो बहुत वो मिस्टीरियस सी कहानी है, मुझे याद है।
1: हाँ, तो
0: डेफिनेटली
1: उसकी,
0: मॉरियर की है, डेफिनेटली मॉरियर
1: हाँ
0: की है
1: डेफिनेट, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट
0: सर।
1: करेक्ट।
0: डेफिनेटली मॉरियर
1: तो
0: की,
1: जो
0: राइट।
1: उसमें जो जो उसका पैलेस है, मैंडरले पैलेस, उस पैलेस को मैंने ओकवुड मैनर बनाया,
0: हाँ,
1: उस
0: मैं समझ
1: टाइप का।
0: गया, मैनर नाम आते ही मैं समझ गया कुछ इसमें मिस्ट्री है।
1: हाँ, काफी बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो चलिए, अब एक गाने के शॉर्ट ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर हम मैडम ज्योत्सना राणा जी के बारे में बात करना चाहेंगे।

0: हाँ, वेलकम बैक माइक सर। अब
1: हाँ जी
0: आपकी जिंदगी में म्यूजिक कई तरह से आ गया है, अकॉर्डियन से भी आया, और ज्योत्सना जी जो आपकी धर्मपत्नी है वो भी बेहद मधुर गायिका है। अब पहले तो ये बताइए कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, और क्या म्यूजिक ने आपकी इस जिंदगी में कोई कोई खास रोल निभाया है? किस तरह से आप लोग मिले?
1: बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका इसका जवाब देते मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हमने जो हमारी जो शादी हुई थी, ये हम मैं चंडीगढ़ में था और उनकी मेरी वाइफ भी चंडीगढ़ में एक सेक्रेटरी साहब थे हरियाणा गवर्नमेंट के, उनकी बेटी है। और हमने एक दूसरे से जब मिला है तो हमें पता लगा एक दूसरे की खासियत क्या थी, वो अपना म्यूजिक और मेरा अकॉर्डियन। तो मुझे ये ध्यान में आया कि एयरफोर्स में हम अकॉर्डियन बजाते हैं, तो अगर कोई मेरे साथ गाने वाला भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमने अकॉर्डियन के साथ गाने का कॉम्बिनेशन बनाया। सबसे पहला हमने किया काम, कसौली गए थे, कसौली में पेड़ों पे चढ़ के अकॉर्डियन बजाया, पेड़ों पर चढ़ के, और हमारी मैडम वहां आ गए। तो शी इज एक्चुअली ट्रेंड म्यूजिशियन, वो उनका उन्होंने एमटेक, मतलब एमटेक तो नहीं, एमए म्यूजिक का किया हुआ है।
0: म्यूजिक है। हाँ
1: शी
0: हाँ
1: हैज बीन टीचिंग इन द कॉलेज एज ए
0: ओके
1: प्रोफेसर, एंड आफ्टर शी रिटायर्ड शी इज नाउ टेकिंग क्लासेस फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक। और हमारे जो इवेंट्स होते हैं उनमें भी उनका काम है काफी, कम से कम 2-3 गाने उनके जरूर होते हैं, और लोगों की हमेशा फरमाइश आती है कि वो गाना सुनाइए, अभी तो मैं जवान हूं, तो वो ये कहती हैं अभी मैं गागा अभी हम गागा के ही बताते हैं हम जवान हैं, क्योंकि अब वैसे तो उम्र चली गई हमारी तो ऐसा ही है।
0: आप 79 ईयर्स की एज में क्या गजब काम कर रहे हैं सर। और ये मलिका पुखराज का गाना अगर वो गाती है तो मजा ही आ जाएगा सुनने में उस समय
1: बहुत,
0: क्या
1: हाँ
0: बात
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कर रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए, जब घर में म्यूजिक की महफिल सजाते हैं तो पहले अकॉर्डियन पहले बजाते हैं या पहले ज्योत्सना जी की आवाज आती है, और किस तरह के गीत उनको बहुत ज्यादा पसंद है? गजल वगैरह गाती हैं, क्या गाती हैं?
1: हाँ वो गजल्स गाती हैं, और हम जब जब भी कोई बैठक करते हैं, उसको हम बैठक कहते हैं, उसमें कम 40-50 लोग होते हैं, उसमें कम से कम 1-2 और सिंगर्स भी होते हैं जो भी बहुत अच्छे गाने वाले हैं, कई बार तो उनके स्टूडेंट्स ही होते हैं। और अकॉर्डियन का नंबर मुश्किल से बाद में ही आता है, बाद में 4-5 गाने बोलते हैं अकॉर्डियन पे बजाओ, फिर कभी कोई डांस भी कर लेते हैं, कभी कोई उसके साथ गाते भी हैं, तो मजा बहुत आता है। लेकिन ये तो दौर चलता ही रहता है दिन जिंदगी का।
0: बहुत बड़ी बात है, म्यूजिक जिंदगी है। तो ऐसा करते हैं कि इससे पहले कि मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं, तो हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और कोशिश करते हैं अगर ज्योत्सना जी का कोई गाना हमें मिल जाएगा तो हम वही बजाएंगे। यहाँ रुक जाते
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।

0: हाँ, वेलकम बैक टू माइक सर। तो अब ये देखिए कि आप 79 इयर्स के इस दौर में भी अकॉर्डियन भी बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मैं एक छोटा सा सवाल इससे पहले आपसे पूछा, तो अभी बताइए आपके पास वही इटालियन में अकॉर्डियन अभी चल रहा है या बदल चुके हैं उसको?
1: हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मेरा तीसरा अकॉर्डियन है। पहला अकॉर्डियन मैंने रिपेयर के लिए दिया था बेंगलोर में, तो जिसको रिपेयर के लिए दिया उसको वो मर गया। डायस डायस उसका नाम था, डायस डायस कितने दुकान थी, वो दुकान ही बंद हो गई, तो मेरा अकॉर्डियन गायब हो गया। फिर मैं गया कलकत्ता, कलकत्ता में मैंने एक नया अकॉर्डियन खरीदा। मैंने कहा चलो दूसरा अकॉर्डियन लेते हैं, तो उस अकॉर्डियन को बजाते बजाते मैं शुरू हो गया, लेकिन वो भी उसको भी हम कुछ कर नहीं पाए अच्छी तरह से। फिर ये तीसरा अकॉर्डियन मुझे जब मैं रशिया गया था, तो मुझे वहां रशिया में वहां गिफ्ट मिला था। दे वर सो हैप्पी विद माई अकॉर्डियन प्लेइंग कि उन्होंने मुझे एक अकॉर्डियन गिफ्ट दिया था। ये वेल्ट माइस्टर एक जर्मन कंपनी है, उसका अकॉर्डियन है जो आजकल मैं बजाता हूँ।
0: अच्छा, वैसे ही एक और सवाल, जनरली अकॉर्डियन अब इस जमाने में सबसे अच्छे किस कंट्री में बनते हैं?
1: जर्मनी एंड
0: जर्मनी,
1: इटली।
0: इटली। ओके, हाँ, इटली में तो जब भी कोई उनकी पुरानी पिक्चर देखते हैं तो अकॉर्डियन बजाते दिख जाते हैं वो लोग, राइट?
1: फर्क ये है कि जर्मन जो है अकॉर्डियन, वो ज्यादातर जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसमें ज्यादा हैं, और
0: ओके।
1: जो जो जो जो इटालियन है उसमें मेलेडी पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं।
0: तो चलिए सर, एक कोई ब्रीफ छोटा सा संदेश आजकल के यंगस्टर्स के लिए आप देना चाहें।
1: भाई हम तो यही कहेंगे जो जो देवानंद कहता था, अपने गोल के तरफ जाइए और बड़ी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से काम कीजिए। ये अब भूल जाइए कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, जो किया उसके आगे उसको बढ़ाओ।

0: सुंदर अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। हम हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं इसी तरह निरंतर सृजनशीलता और दीर्घायु की आपकी हम कामना करते हैं।
1: थैंक यू सर आलोक जी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टेकिंग द टाइम टू मीट मी टुडे। आई सिंसियरली अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माय प्रोफेशन एंड लर्न मोर अबाउट एक्साइटिंग वर्क बीइंग डन एट योर एंड। I enjoyed learning about the challenges and opportunities associated with my role and career, and I am enthusiastic about the possibility of contributing my skills and experience to your team. I appreciate the insights you shared and the welcoming atmosphere that you created for the interview.
0: Thank you, sir. और फिर मिलेंगे हम किसी नई प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ किसी और दिन किसी नए प्रोग्राम में। नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

नमस्कार श्रोताओं, मैं आलोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपना विशेष कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग लेकर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम के कई रंग है, करुणा, ममता और ईश्वर के लिए ग्रेटिट्यूड के रंगों से भरा है आज का हमारा ये संवाद। दोस्तों, जिंदगी हमें कई बार ऐसी राहों पर ले जाती है जहां हिम्मत, धैर्य और विश्वास की सच्ची परीक्षा होती है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद है जिनकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि उम्मीद, कृतज्ञता और गिफ्ट ऑफ लाइफ की कहानी है। आज हमारे साथ हैं शमीम जी, जो उदयपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर सीए बनी और बाद में अमेरिका जाकर सीपीए किया। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है। शमीम जी एक माँ है, एक ऐसी माँ जिन्होंने अपने छोटे बेटे को 3 बार लिवर ट्रांसप्लांट जैसे बेहद कठिन दौर से गुजरते हुए देखा। अस्पताल, आईसीयू, वेटिंग लिस्ट और अनगिनत डर के पलों के बीच उन्होंने साहस नहीं खोया बल्कि इस अनुभव को समाज के लिए एक मिशन बना दिया। आज शमीम जी मोहन फाउंडेशन इंडिया और गिफ्ट ऑफ लाइफ यूएस से जुड़कर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं ताकि किसी और परिवार को वह

0: दर्द न सहना पड़े जो उन्होंने सहा। आइए उनकी जिंदगी की असाधारण यात्रा को उनके शब्दों में ही सुनते हैं। शमीम जी, आपका हमारे रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी और नमस्कार श्रोतागणों। आई एम वेरी हैप्पी टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू।
0: तो शमीम जी, शुरुआत करते हैं आज की इस बातचीत की, इस प्रेरणादायक बातचीत की। आप उदयपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, अपने स्कूल बचपन, स्कूलिंग और उदयपुर से जुड़ी हुई कुछ यादों के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ कुछ कुछ बातें शेयर कीजिए, कुछ बताइए उदयपुर के बारे में, अपने बचपन के बारे में।
1: आलोक जी, जब आप उदयपुर का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है मैं टेलीपोर्ट होके अपने उदयपुर की उन गलियों में आ गई हूँ जहाँ मैंने अपना पूरा बचपन और जिंदगी गुजारी है। मैं एक बहुत ही लोअर मीडियम क्लास फैमिली में पैदा हुई हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स के लिए स्कूल की फीस देना भी मुश्किल था। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल कम्युनिटी स्कूल्स के थ्रू ही हुई है, बहराइती स्कूल और तैयबिया स्कूल। और फिर उसके बाद सेकेंडरी के लिए मैंने आरएमवी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई है। तो मैं ये कहूंगी कि जब तक कम्युनिटी स्कूल में थी, एक फैमिली में थी, मैंने अपने बोहरा समुदाय से आगे जिंदगी और कल्चर देखा नहीं था। जब आरएमवी स्कूल गई तो ऐसा लगा जैसे कि दरवाजे खिड़कियां सब खुल गई है टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें जो मुझे उस स्कूल में सीखने को मिली, जिंदगी की छोटी छोटी बातें जो कि हम ओवरलुक कर देते हैं, वो कल्चरल डिफरेंस, बहुत कुछ रहना करना सब हम मुझे उस स्कूल और आरएमवी स्कूल में वहां पे मुझे सीखने को मिला। काफी टीचर्स मेरी अभी भी, प्रिंसिपल मैम से मैं अभी भी जुड़ी हुई हूँ, अभी भी उनसे मिलती हूँ, शी वॉज माई मेंटोर। तो अगर आप इजाजत दे तो एक मैं अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि स्कूल लाइब्रेरी में एक बार मुझे मदर टेरेसा की बुक हाथ लगी थी रीडिंग असाइनमेंट में। वो बुक मैंने पूरी पढ़ ली और मैं इतनी प्रेरित हुई थी उनसे, और मैं स्काउट गाइड में भी थी, स्काउट गाइड के थ्रू हम साक्षरता अभियान और एनवायरमेंट कैंप और हम बहुत कुछ सोशल कम्युनिटी के लिए करते थे। तो मदर टेरेसा के एक्सपीरियंस से और ये स्काउट गाइड का जो मेरा ट्रेनिंग था उससे प्रेरित होके मैंने अपने कुछ सहेलियों को लिया और हमारे स्कूल उदयपुर में एक जो झोपड़ी पट्टी का पूरा जो इलाका है वहां जाके कुछ सहेलियों के साथ मैंने कहा कि हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे। बिकॉज मदर टेरेसा का था वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर को हेल्प करती है। तो बस दिमाग में ये प्रेरणा थी कि भाई हमें भी, हमें कुछ करना है समाज के लिए। तो हमें उस वक्त बचपन का दिमाग था, मतलब सातवीं आठवीं की बात कर रही हूँ, तो हम वहां चले गए। बट कुछ दिन हमने पढ़ाया, एक्सपीरियंस भी हुआ। फिर जब स्कूल में पता चला, घर वालों को पता लगा, तो फिर थोड़ी सी खिंचाई हुई कि भाई बिना बताए यंग गर्ल्स इस तरह से नहीं जा सकती। और कुछ लोगों ने समझाई, करे लोग जो तुम्हें बोलते हैं कि गरीब है, वो गरीब नहीं होते, उनके पास खूब पैसा है, वो तो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। ये बात मुझे बहुत आहत की, तो मैंने मदर टेरेसा को खत लिखा। आठवीं या नवीं क्लास में थी, मैंने मदर टेरेसा को खत लिखा कि आपने कैसे पहचानते हो कि ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर, गरीबों में गरीब है। मैंने यहाँ पे कोशिश की लेकिन लोगों ने मुझे बोला कि हाँ वो धोखा देते हैं। तो पता है मदर टेरेसा ने मुझे वापस जवाब भेजा, मैंने अभी तक वो लेटर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। उन्होंने उसमें मुझे पहले तो समझाया कि बेटा अभी ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र है तो तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, और अच्छी बात है कि तुम्हें समाज की सेवा का जो ये उत्साह है ये कंटिन्यू करना। लेकिन एक बात जो मैंने अपने यहाँ पे फ्रेम करके लगाई हुई है और हमेशा अपने दिल के पास है, उन्होंने उसमें लिखा था कि इफ पीपल चीट अस, गॉड विल नॉट चीट अस एंड वी आर डूइंग इट फॉर गॉड। ये इतनी बड़ी बात इतने सीधे शब्दों में जो उन्होंने बताई वो मैंने आज तक गांठ बांध के रखी हुई है, और बहुत ही अच्छी बात है। और अब जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मुझे बस यही लगता है कि मैं अल्लाह की राह में कर रही हूँ, भगवान के लिए कर रही हूँ, सामने वाले को देख के नहीं कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस, मेरा बहुत छोटा स्कूल का एक्सपीरियंस है बट इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट।
0: ब्यूटीफुल शमीम जी, आपने तो बिल्कुल शुरुआती और अद्भुत बात है, आपने मदर टेरेसा को चिट्ठी लिख दी। कमाल है, कमाल है। मतलब एक छोटी सी बच्ची, कुछ अगर वो महसूस हो रहा है उसकी जिंदगी में, कुछ बदलाव आ रहा है और मदर टेरेसा को चिट्ठी लिख रही है और उसके बाद में उस खत का जवाब भी आ रहा है। वाह। और मदर टेरेसा की जो लाइन्स है वो तो बहुत ही मतलब क्या फ्रेम करने लायक की है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप जब किसी के लिए भला कर रहे हो तो ये मत सोचो उसके बारे में, आप जो कर रहे हो उसके बारे में सोचो, वो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मत पूछ। वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। विवाह के बाद आप अमेरिका शिफ्ट हुई, तो यूएस जाने का निर्णय कैसे लिया और जीवन का ये नया चैप्टर कैसे शुरू हुआ?
1: तो सीए फाइनल के वक्त में मेरी सगाई हो गई थी, तब मैं फियांसे यहीं हैदराबाद में, ही इज इंजीनियर तो हैदराबाद में जॉब थे, फिर उनको वहां यूएस से जॉब ऑफर आया, तो उन्होंने कहा भाई इस तरह से जॉब ऑफर आया तो यूएस जाना है। उस वक्त तक हम दोनों का ये था कि हम दोनों का एक ही सपना था कि हमें दुनिया घूमनी है और कुछ नहीं था, सिर्फ दुनिया घूमनी है। और ये लग गया था कि उस वक्त इंडिया का जॉब मार्केट जो था, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 98-99 के वक्त में, आज तो इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन उस वक्त ये था कि अगर हमें ये सपना पूरा करना है तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, इस छोटी मोटी जॉब से हम ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जब उनका यूएस का आया तो मैंने कहा कि ठीक है आप चलो और जो भी होगा विल मेक इट टुगेदर, अपनी जिंदगी साथ में बनाएंगे। तो बस उनका जैसे ही वीजा और जॉब का जाने का हुआ तो हमारी आनंद फानन में शादी हो गई, बिकॉज ये था कि मैं बिना शादी के तो आऊंगी नहीं यूएस, और उनका यूएस जाने के बाद पता नहीं कब इंडिया आना हो। तो यूं समझ लो कि हमारे 15-20 दिन की नोटिस में हमारी शादी हुई कि शादी करके वो यूएस आ गए। फिर जब वो यहाँ पे सेटल हुए तो उन्होंने मुझे स्पाउस वीजा भेजी और 8-9 महीने बाद मैंने उनको ज्वाइन किया। तो इस तरीके से मेरा यूएस आना हुआ।
0: ब्यूटीफुल। तो चलिए आपकी यूएस फ्लाइट को लेकर और यूएस का आपका जो जाना हुआ, जो शिफ्टिंग हुई, इस पे हम रुक जाते हैं और एक गाने का मजा लेते हैं, कोई गाना सुनते हैं इसी से आपके सफर के लिए।

0: अब शमीम जी हम थोड़ा सा रुख बदलते हैं बातों का, और अब एक जो मुश्किल दौर आपकी जिंदगी में आया उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। आपकी जिंदगी के सबसे कठिन दौर की बात करेंगे अब हम। आपको पहली बार कैसे पता लगा कि आपके दूसरे बेटे के साथ कुछ सीरियस मेडिकल कंडीशन है, इसके बारे में कैसे पता लगा, क्या हुआ?
1: हाँ जी, तो लाइक व्हेन वी थॉट कि चलो अब लाइफ सेटल हो गई, हो गया स्ट्रगल का एक दौर, लेकिन मेरा ये मानना है कि भगवान जिसे प्यार करता है ना उसको आजमाता भी बहुत है। तो सेकेंड बेबी के वक्त में ही वो बहुत रोता था, वो बिल्कुल भी मतलब बिस्तर पे सोता ही नहीं था, हाथों में ही सोता था। तो लोगों ने कहा कॉलिक है, गैस है, डॉक्टर्स को भी बताया। फिर धीरे धीरे वो पेल, उसकी स्किन पे येलो इश वो दिखने लगा। तो 4 महीने का जब उसका डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, रेगुलर अपॉइंटमेंट, वो बहुत रो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इतना क्यों रोता है? मैं कहा ये तो ऐसे ही रोता है। तो डॉक्टर को लगा कि नहीं, कुछ सही नहीं है। तो उन्होंने फिर सारे मेडिकल टेस्ट उसके हमें किए, और जब रिजल्ट आया तो उन्होंने वापस से हमें कैट स्कैन के लिए भेजा कि रिजल्ट डजंट लुक गुड, इसका एमआरआई और ब्लड वर्क मतलब उसका जो बिलीरुबिन था बहुत हाई था। बिलीरुबिन एक ब्लड में होता है जिससे कि वो येलोइशनेस लिवर का इशू बताता है। तो कैट स्कैन के लिए भेजा, हाँ जी, जॉन्डिस था, जॉन्डिस देख रहा था उनको। और वहां पे हमें बोला कि हो सकता है कि कोई एक सर्जरी करनी पड़ेगी उसका लिवर के लिए, तो तुम्हें वहां पे आके कोई पीडियाट्रिक सर्जन आपको डॉग हॉस्पिटल में मिलेगा। हम वहां वेट कर रहे हैं, एनेस्थीसिया था बच्चे को छोटा, क्योंकि कैट स्कैन किया था, तो हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। वहां पे पीडियाट्रिक सर्जन आया और बोला कि ये केस तो मेरा नहीं है, तुमसे ट्रांसप्लांट सर्जन आके और मिलेगा, ही नीड अ लिवर ट्रांसप्लांट। अब आप सोचिए कि छोटे बच्चे को लेके बैठे हैं पेरेंट्स, हम तो दिखाने गए थे, मेरा बड़ा बेटे को हमने डे केयर में भेजा हुआ था, मेरे पेरेंट्स थे उस वक्त साथ में क्योंकि वो मुझे हेल्प करने के लिए आए थे डिलीवरी के लिए। तो इट वॉज सो शॉकिंग कि आप क्या बोल रहे हो, ना तो कोई दवाई, ना कोई छोटी मोटी सर्जरी, आप सीधा बात कर रहे हो कि भाई बस ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हम दोनों बहुत शॉक था लाइक, लेकिन उस वक्त मैं ये कहूंगी कि ये हमारी बात है अक्टूबर की, बैक इन 1996। उसी साल में जुलाई में

0: यहाँ इंडिया में मेरे जेठ जी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था और भाभी ने अपना पार्ट ऑफ लिवर उनको डोनेट किया था। तो उनका सक्सेसफुल वो ट्रांसप्लांट जर्नी देखते हुए थोड़ी सी उम्मीद थी दिल में कि ये भी एक सॉल्यूशन है, हो सकता है ठीक, और देर इज अ चांस है, देर इज अ रोड। लेकिन बहुत शॉकिंग था, हमने बहुत टाइम तक किसी को नहीं बताया फैमिली में, बिकॉज अगर हमें इतना शॉकिंग लग रहा है तो इंडिया में पेरेंट्स को हम कैसे बताएं कि यूएस से, एक तो आप सामने बात कर सकते हो, फोन पे तो बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। तो हमें फिर सारे, हमने दूसरे हॉस्पिटल्स में भी बताया, सेकेंड ओपिनियन लिया, तो उसकी जो जर्नी है वो बस वहां से जो चालू हुआ, तो दैट वाज आवर इनिशियल आई वुड से द रिस्पॉन्स एंड न्यूज हाउ वी गॉट इट।
1: नहीं, ये तो बहुत ही शॉकिंग है। तो जब सिम्टम्स आपने बताई दिए उस बच्चे को क्या हुए थे स्किन पे, और ये भी बताया कि आपने, डॉक्टर ने आके सडनली आपको कह दिया कि ये तो ट्रांसप्लांट का केस है, तो आई
0: हाँ
1: कैन
0: जी
1: अंडरस्टैंड कि क्या स्थिति हुई होगी यार। और ये भी बात सही है कि दादा दादी नाना नानी को बताना, ऐसे बताना भी बहुत मुश्किल होता है कि ये हो रहा है हमारे साथ, ये दिक्कत आ रही है इस बच्चे के साथ। तो जब डॉक्टर्स वहां इस तरह से आके सडनली कह देते हैं लिवर ट्रांसप्लांट की बात उन्होंने कह दी, आपको कुछ मेंटली प्रिपेयर नहीं कराया उन्होंने, और ये नहीं बताया कि भाई इसको प्रॉब्लम क्या है, ऐसी कोई बात नहीं कही उन लोगों ने वहां, क्या हुआ?
0: हाँ, तो ये एक शॉकिंग था, मतलब बिकॉज यहाँ पे वैसे मेडिकल सिस्टम में तो एथिक्स के हिसाब से भी आप देखो तो पहले पूरा फैमिली को यू हैव टू गेट इट लाइक ट्रस्ट में आपको लेना पड़ता है, आराम से बताना होता है। ये हमारे लिए
1: काउंसलिंग
0: काउंसलिंग होती है प्रॉपर, वो काउंसलिंग हमारी फिर बाद में हुई, बिकॉज वो जो, तो वो दूसरा हॉस्पिटल था हमारे, लकीली हमारे घर के पास दो बहुत अच्छे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल थे, एक तो निमोर्स ड्यूपोंट का था और एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया। तो जब निमोर्स में हमें ये सब हुआ, फिर उन्होंने पूरा डायग्नोस, सारे टेस्ट किए, सब कुछ किया, फिर हमने कहा हम सेकेंड ओपिनियन के लिए एक दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, और चॉप चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया वाज मच मोर बिगर और काइंड ऑफ नंबर वन था इसमें।
1: नंबर
0: तो फिर हम जब यहाँ पे आए ना, उन्होंने हमें पूरा, यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी बहुत अच्छी थी, काउंसलिंग भी उन्होंने हमें बहुत अच्छी की, लाइक दे टुक अस अंडर देयर अम्ब्रेला, और हमें सारा, तो वो जो जर्नी जो चालू हुई ना, तो बिकॉज अभी शुरुआत हुई है तो हर 10 दिन में, मतलब 10 दिन भी नहीं बोलूंगी, हफ्ते भर में उसको क्या कि उन्होने फिर ट्राई किया कि कुछ बाइल डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने एक बैग लगाया, बट फिर उसको क्या कि हर थोड़े थोड़े टाइम में फीवर होता था, फीवर सीधा 102 डिग्री के ऊपर जाता था। तो उसके लिए क्या कि उनको आईवी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तो उसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता 14 दिन के लिए, घर पे आता 4 दिन में फिर से हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो ये जो हमारा है अगले 6 महीने बस हमारे इन आउट हॉस्पिटल के ही चक्कर लगते रहे। हमने उसी वक्त लाइक बड़े बेटे को तो यूं समझ लो कि भगवान ने उसी वक्त बड़ा कर दिया था, इतना समझदार, इतना कोऑपरेटिव हमारे साथ, उसकी तरफ से हमें बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमारा पूरा ध्यान हमारे छोटे बेटे की उसमें लग गया था कि कैसे इसको कर सकते हैं, और डॉक्टर्स हमें समझाते रहे, बस हम उस पाथ पे चलते रहे।
1: अच्छा, ये बताइए शमी, उस टाइम छोटे वाले बेटे की उम्र क्या थी जब ये सब हुआ?
0: हाँ, वो जब डायग्नोज हुआ वो 4 महीने का था, तो हाँ जी हाँ
1: 4 महीने का? ओ गॉड,
0: तो
1: इतना
0: एक
1: छोटा
0: चीज और, मैं आप
1: होगा
0: बहुत बहुत, लेकिन मैं एक चीज और
1: भाई
0: बताती चलूँ, यहाँ पे उनोज करके यूएस में, विच इज यूनाइटेड नेटवर्क ऑफ ऑर्गन शेयरिंग, एक
1: वो।
0: सोसाइटी मतलब संस्था है पूरी कंट्रोल, वो लिस्ट बनाती है, तो बच्चे के सिम्टम्स के हिसाब से, बच्चा हो या एडल्ट, मतलब जो भी ट्रांसप्लांट का वेटिंग लिस्ट में, तो बेसिकली वो वेटिंग लिस्ट बनाती है और बेस्ड ऑन द सिम्टम्स वो उसमें लिस्टेड होता है। तो उस उन्होंने उस वक्त हमारे बेटे को लिस्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने तभी हमें कह दिया कि इंतजार तो करना पड़ेगा, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। और उस पे ये था कि भाई हमने लाइव ट्रांसप्लांट वाला, हमारे पास एग्जांपल था मेरे जेठ जी का, तो हमने कहा कि मेड भी डोनेट कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, डिलीवरी के बाद कम से कम 6 महीना तो माँ को भी टाइम देना पड़ता है बिफोर यू कैन गो बैक फॉर अनदर सर्जरी। तो इसलिए था कि 4 महीने में डायग्नोज हुआ, 2-4 महीने तो हमें निकालने ही पड़ेंगे। तो इसलिए वी वर जस्ट कंटिन्यूली वेटिंग एंड ऑब्जर्विंग, हॉस्पिटल इन एंड आउट हो रहा था और बस उसके जो नंबर्स थे वो फॉलो कर रहे थे। हाँ
1: भाई, ये आपकी इस जीवन का सफर में जो जो ये मुश्किलात आई, जो जो स्ट्रगल हुई, इसको तो हम एक इसी तरह का एक गाना सुनते हैं या रुक के शमीम जी, और फिर आगे बातचीत करते हैं।

0: हाँ शमीम जी, आपके बेटे को एक नहीं बल्कि 3 बार लिवर ट्रांसप्लांट से गुजरना पड़ा। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए ये पहले ट्रांसप्लांट से लेकर थर्ड प्लांट ट्रांसप्लांट तक की जो ये पूरी जर्नी रही या पूरी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा, कुछ ब्रीफ में बताएंगे हमें क्यों हुआ ये? पहले ट्रांसप्लांट में काम क्यों नहीं हुआ, फिर तीसरे तक क्यों गई बात, बताएंगे कुछ?
1: हाँ हाँ जी. इट इज रियली डिफिकल्ट. जब वो बात सोचती, उस बात को अभी आज 19 साल हो गए. लेकिन जब भी वो तारीख आती है, हर साल वो हफ्ता आता है. ये 3 जो हुए हैं एक हफ्ते में हुए हैं, फ्राइडे टू फ्राइडे के बीच में. तो वो जब एक हफ्ता आता है तो पूरा मेरा फिर से ऐसा लगता है कि आई एम रीलिविंग दैट मोमेंट. तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो इट इज नॉट अनकॉमन जो कि फर्स्ट ट्रांसप्लांट के बाद हुआ. तो जब मेरे बेटे का फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो उसमें क्या होता है कि यूनोस में, मैंने जैसे बताया, वेटिंग लिस्ट में था. तो वेटिंग लिस्ट में ये होता है कि यहाँ पे थैंकफुली ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस काफी है. तो जब अवेलेबल होता है तो एक गिफ्ट ऑफ लाइफ करके एक संस्था है जो कि इन्फॉर्म करती है कि भाई हमारे पास ये ऑर्गन अवेलेबल है डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को. तो ऐसे एक बच्चे का आया उस वक्त. आई थिंक वो, हमें क्या पूरा डिटेल नहीं पता होता है डोनर का, बट हमें थोड़ा आइडिया मिलता है. तो वो एक बच्चे का था. तो उन्होंने कहा कि हम इसको ट्रांसप्लांट के, उस तब तक मेरा भी इवेल्युएशन हो चुका था. मैं भी तैयार थी कि भाई मेरा अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना पार्ट ऑफ लिवर अपने बच्चे को डोनेट कर दूंगी. लेकिन वो हमें आ गया कैडावर. कैडावर इज लाइक आफ्टर डेथ कोई फैमिली ऑप्ट करती है कि भाई हम डोनेट करेंगे. तो बच्चे का ट्रांसप्लांट हो गया. डॉक्टर्स, और ट्रांसप्लांट सर्जरी 8 घंटे की होती है वो छोटे बच्चे पे, तो इट टेक्स टाइम टू रिकवर. तो आईसीयू में था, डॉक्टर्स फॉलो कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था. 2-3 दिन बाद, तीसरे दिन, डॉक्टर्स और सब उसकी टीम ने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, हम इसको कल नॉर्मल उसमें ट्रांसफर कर देंगे वार्ड में. तो तो हमने सोचा चलो एक रात तो हम जाके पूरी नींद ले सकते हैं. मतलब आप सोच सकते हैं कि एज अ
0: सही बात,
1: पेरेंट्स विथ सिक चाइल्ड क्या रही होगी.
0: नहीं, बहुत ट्रॉमा है आपको।
1: हमने घर आके, और सुबह सुबह हमें कॉल आया कि भाई वी नीड यू होम, देयर इज सम कॉम्प्लिकेशंस इन द नाइट और आप आओ. जब हम पहुंचे तो उसका जो आईसीयू कमरा था वो पूरा भरा हुआ, सर्जन्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, और वहां पे उसकी ट्रांसप्लांट सर्जन थी, वो बैठी हुई थी. जैसे ही मैं अंदर गई, वो मैं उनके पास जाके बैठी, तो उसने मेरे हाथ पे हाथ रखकर बोला कि इस तरह से रात को जब इसका वो, बिकॉज यूरिन मेजर कर रहे थे, छोटा बच्चा है बोलेगा तो नहीं, तो देवर ऑल मेजरिंग उस पल्स एंड ऑल दैट. तो उसमें उनको पता चला कि इसका यूरिन बनना बंद हो गया, मतलब किडनी फेलियर है. और किडनी फेलियर है मतलब कि लिवर फेलियर हुआ है, तभी किडनी तक ब्लड नहीं हुआ है किडनी. तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से हमें पता चला कि इसका जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट है, इट्स नॉट वर्किंग, लिवर इज नॉट वर्किंग, किडनी इज नॉट वर्किंग, तो वी मे नीड टू गो फॉर अनदर ट्रांसप्लांट. तो

0: उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रख के बोला कि यू आर देयर राइट। उनका सवाल ये था कि अगर अभी मेरे बच्चे को लिवर की जरूरत पड़े तो मैं तैयार हूं देने के लिए, ये उसके सवाल का मतलब था।
1: मतलब
0: मैंने
1: था।
0: इमीजिएटली कहा, मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अगर जरूरत पड़े मैं अभी का भी अपने बच्चे को पार्ट ऑफ लिवर। बिकॉज उस वक्त जो उसकी हालत थी, दैट वाज कि अगर 24 घंटे में हमें दूसरा लिवर नहीं मिला तो उसको बचाना मुश्किल है। ही वाज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में। लेकिन अवेयरनेस है, बट उतना भी अवेयरनेस नहीं है कि भाई आपको इमीडिएट कोई दूसरा ऑर्गन मिल जाएगा। हर कोई इतना नहीं सोचता है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। तो हमने कहा चलो ठीक है। और रात तक में ये हुआ कि बच्चे को हमें दूसरा मिल गया। बट एक चीज और मैं बताऊं कि मैं बताया कि किडनी फेलियर भी था। तो अगर किडनी क्या करती, हमारा पानी जो एक्स्ट्रा फिल्टर करके निकालती है, अब बॉडी से फ्लूइड नहीं निकल रहा, उसका बॉडी बलून की तरह, गुब्बारे की तरह फूल चुका था। तो बहुत मुश्किल से उसको स्टेबलाइज कर रहे थे, ये कर रहे थे। बट ये कि रात तक हमें न्यूज आई कि भाई दूसरा हमें मिल गया है डोनर, तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वी विल टेक हिम एंड विल हैव अनदर ट्रांसप्लांट। ठीक है, ट्रांसप्लांट वही 8 घंटे वेटिंग वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं। डॉक्टर ने आके बोला कि भाई उसकी कंडीशन बहुत ही नाजुक थी, ट्रांसप्लांट तो हमने कर दिया, लेकिन अब भगवान भरोसे, वी विल टेक आवर बाय आवर, ही इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। हमने कहा चलो, मतलब आप ये सोच लो कि उस टाइम तक दिल से सिर्फ दुआएं निकल रही थी,
1: बस बस बस
0: और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जो साथी थे यहाँ पे, हमारे कजिन्स थे जो आसपास रहते थे, वो भी हमारे साथ वहां पे आ गए थे, वो हमारे साथ शामिल थे, हमें सपोर्ट कर रहे थे, मेरे पेरेंट्स थे। और साथ में हमने क्या किया था कि बिकॉज वी वर सो मच इन्वॉल्व विथ हिम, वी कुड नॉट टेक ऑल द फोन कॉल्स घर से और जो दोस्तों के आते थे। तो हमने एक फोरम था ऑनलाइन, वहां पे हम उसका स्टेटस अपडेट करते रहते थे कि भाई क्या चल रहा है, उसका ट्रांसप्लांट हो गया, इज आउट ऑफ इट, या वो वापस से ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग कर रहे हैं, दूसरा होगा। तो यूं समझ लो पूरी दुनिया से उसके लिए दुआएं आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे। और एक लिवर फोरम करके था जहां पे कि सारी फैमिलीज जिनके बच्चे आर गोइंग थ्रू दीज लिवर इश्यूज, उनका एक लिवर फोरम था। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा था। तो वहां से भी सब जगह से, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, इंडिया, आप मान लो कहाँ कहाँ से उसके लिए दुआएं नहीं आ रही थी। लेकिन वो दूसरा हुआ, बट कंडीशंस बहुत नाजुक थी। 2 दिन उन्होंने, मतलब जो 24 to 48 आवर्स वेट किया, लगा ये नहीं वर्क कर रहा है। उन्होंने कहा वी हैव टू रीलिस्ट हिम अगेन, वी नीड टू गो फॉर द थर्ड वन।
1: मैं तो सुन के मुझे सेवन हो रही है शमीम जी, आपकी सारी बात है। चलिए फिर, हाँ बताइए।
0: तो उस वक्त फिर मुझे लगा कि चलो अब, मतलब तीसरी बार तो आप सोच ही नहीं सकते, 2 बार ठीक है भगवान ने साथ दे दिया, आपको कैडावर डोनर मिल गया, तीसरी बार। तो मैंने उसके डॉक्टर को बोला अच्छा तीसरी बार तो अभी आप मेरा ही लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम आपका ले भी नहीं सकते, बिकॉज 2 बार उसका हो चुका है, तो तीसरी बार तो हमें कैडावर ही चाहिए, क्योंकि उसकी वेन्स इतनी कट चुकी है कि अभी हमें लंबी वेन्स लेनी होगी लिवर को जोड़ने के लिए, और वो हम लाइव पर्सन में से नहीं ले सकते। तो आप वो सोचो कि वो जो मोमेंट जब डॉक्टर ने बोला, मैं अपनी सारी उम्मीद सारी आशाएं खो चुकी। मैं क्या, हमारे पेरेंट, मतलब हस्बैंड भी, हम स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर हम अपने बच्चे का कोई ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं तो करेंगे। हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद भगवान की यही मर्जी है, एक्सेप्ट कर लिया ऊपर वाले की मर्जी। हालत तो बुरी थी, साथ वाले सब परेशान हो रहे थे, रोना और वो भी चल रहा था, एंड आई वाज लाइक टोटली इमोशनलेस। मेरे आंख उस वक्त एक आंसू का कतरा नहीं गिरा, उसके पहले मैं बहुत रो चुकी थी। बस भगवान की मर्जी मान के एक्सेप्ट कर लिया। शाम तक वापस से डॉक्टर की टीम आई कि हमारे एडजेसेंट हॉस्पिटल, जो एडल्ट हॉस्पिटल था, वहां पे किसी और के लिए ऑर्गन अवेलेबल हुआ है, लिवर अवेलेबल हुआ है। यूनोस वेटिंग लिस्ट से पता चलता था कि भाई अवेलेबल है। तो डॉक्टर की ट्रांसप्लांट टीम सेम थी, सर्जन टीम। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पार्ट ऑफ लिवर इसको बड़े पेशेंट को देते हैं, छोटा जो लेफ्ट लोब है हम यंगर पेशेंट को दे देंगे, तुम्हारे बेटे को दे देंगे। मैंने कहा लाइक उस वक्त भी मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो बोले ओ, और पता है तब मैं अपना, मेरा बेटा है सामने, बट उस वक्त क्या कि हम हॉस्पिटल में इतना टाइम रह रहे थे ना, हमें दूसरे पेशेंट्स का भी पता था। तो मैंने कहा अच्छा वो नादिया है, उसको ओ ग्रुप उसका मिल नहीं रहा है, बहुत टाइम से वो वेट कर रही है, तो मेरे बेटे पे तो काम कर नहीं रहा है। एक दो तीसरे की बात आ गई तो मैंने कहा ये हम लिवर उसको जाने देते हैं। तब मुझे सबने डांटा कि अरे शमीम, अगर अभी किसी को जरूरत है तो तेरे बेटे को जरूरत है, देख तू कैसे सोच सकती है कि उसको दे। बट आई थिंक शायद भगवान का यही इम्तिहान था मेरे लिए कि मैं उस वक्त भी इतनी अवेयर हूं कि मुझे दूसरों का ख्याल है कि मैं मतलबी हो गई हूँ। शायद वो मैं अब मुझे बैक एंड में मुझे यही लगता है कि वो मेरे लिए इम्तिहान था। और बस वो जो पीस ऑफ लिवर जो मेरे बेटे को मिला, वो आप देखो एक लिवर से दो जाने बची है। वो आया किसी और के लिए था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मेरा बेटा जिए। तो उस टाइम थर्ड ट्रांसप्लांट के बाद वो उसका फिर आगे की जर्नी चालू हुई। तो जो सारे मैसेजेस आ रहे थे ना, उसमें एक मैसेज बहुत अच्छा आया था कि वी कैन नॉट गो बैक टू द बिगिनिंग एंड मेक अ हैप्पी एंडिंग, ओ रीस्टार्ट, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड मेक अ हैप्पी एंडिंग। और किसी ने बोला कि थर्ड टाइम इज अ चार्म, तो बस हमने वही मान लिया, दुआएं चलती रही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह के 19 साल बाद मैं आपसे ये सारी बातें कर रही हूँ
1: भाई। ये तो अल्लाह ताला की खास मेहर है आपके ऊपर। मैं तो सुन के ही, मुझे आपकी सारी ये जितना आपने सुनाया इसको सुन के मुझे यहाँ बैठ के सिरन होने लग गई कि कैसे कोई इस सारे ट्रॉमा से गुजर सकता है और एक 4 महीने 5 महीने का छोटा बच्चा, उसको इतना सब कुछ झेलना पड़ा, इतना कुछ होना पड़ा, और क्या क्या और किडनी फेल हो जाना, क्या पता वो कहते थे डायलिसिस करो इसका, इतने छोटे बच्चे का तो क्या डायलिसिस होगा।
0: हाँ, उसमें वो किडनी जो स्पेशलिस्ट आए थे उन्होंने हमसे साइन कराया था, वो वेवर साइन कराते भाई हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें बोला था कि भाई हम है ना, तो आई कैंट प्रॉमिस बट वी विल ट्राई। तो मैंने कहा बस आप अपनी कोशिश कीजिए, आगे भगवान की मर्जी। और वो जब हम वापस पोस्ट ऑफ विजिट में गए ना साल भर बाद, वो डॉक्टर अपने फेलोज के साथ, दूसरे जो रेजिडेंट्स जो होते हैं, डॉक्टर उसको बोलता है कि आई डोंट बिलीव इन मिरेकल, बट इस बच्चे को देख के कह सकता हूँ कि ही इज अ मिरेकल बेबी।
1: मेरे मिरेकल है, मिरेकल है, बिल्कुल, इससे बड़ा कोई मिरेकल नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक। तो शमीम जी चलिए, बस मैं तो अब एक छोटा सा सवाल ही बता दीजिए, ऐसी क्या शक्ति आपके अंदर थी कि आपने अपने आप को एक माँ के रूप में भी इतने दर्द के दौरान अपने को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा? कोई प्रेयर बिलीफ या थॉट था जो आपको संभालता रहता था? कोई ऐसी ताकत थी जो आपको संभालती थी? बस छोटा सा जवाब दे दीजिए इसका।
0: आप देखा जाए तो आपके सवाल में ही जवाब है, यहाँ कोई एक ताकत थी और उस ताकत पे मेरा यकीन और हमारा यकीन कलेक्टिवली आई वुड से, बट मेरा यकीन तो मतलब कह रही हूँ ना, बहुत ही शुरू से, मतलब बचपन से तो डाला ही गया था कि भगवान में यकीन, प्रेयर्स का और पूरा जो रूटीन सिस्टम था, तब तो हम जबरदस्ती करते थे, लेकिन वो जो धीरे धीरे जो देखा ना कि हाँ ऊपर वाला सुनता है, दिल से निकली हुई दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। परमपिता ईश्वर आप जिसे भी मानते हैं, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि भाई देयर इज नो गॉड बट वन, एक ही भगवान है, चाहे हम किसी भी तरीके से पूजे प्रेयर करें, आवाज तो एक ही को जा रही है और वो सबकी सुनता है। तो वो जो विश्वास था वो बांधे रखा। और मैं पढ़ती भी हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, मैं गीता भी पढ़ा हुआ है, बुद्ध का भी मैं पूरे सारा सब सुनती हूँ, आई लिसन टू ऑल द रिलीजन्स नॉट जस्ट वन, बिकॉज आई बिलीव कि मैसेज सब में एक है। तो और मैसेज एक ही है कि भाई प्यार करो और उदारता, भगवान पे विश्वास रखो। वो क्या कि जो भी करता है अच्छा करता है, और ये क्या है ना, विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। तो वहां पे जब हम आइस वेटिंग रूम और जो प्ले रूम होते थे हॉस्पिटल में भी, क्योंकि दूसरे बच्चे भी हैं तो हम मिलते थे जैसे दूसरे पेरेंट्स, और वो तो वहां पे एक ग्रैंड पा ने जब पता चला कि मैं हमारा क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी बात कही थी कि हु गेट यू टू इट विल गेट यू थ्रू इट, कि भगवान जो
1: ओके
0: तुम्हें
1: ओके
0: इस मुसीबत तक लाया है
1: मतलब
0: वही इस
1: लाया है
0: मुसीबत से
1: वही
0: तुम्हें निकालेगा।
1: निकाले ब्यूटीफुल बहुत
0: तो
1: बढ़िया
0: वो जो विश्वास था ना, बस वही एक विश्वास था। और फिर जो मैंने बताया थर्ड टाइम तक, तो मैंने कि हमने एक्सेप्ट कर ली थी कि अच्छा ठीक है अल्लाह तेरी अगर यही मर्जी है तो हमें यही
1: यही अल्लाह
0: मंजूर है,
1: की
0: शायद तूने
1: कुछ
0: हमारे लिए कुछ सोच रखा है, शायद इस बच्चे के लिए कुछ सोच रखा है। तो
1: सोच
0: वो जो
1: रखा
0: एक यकीन होता है ना, कि जो माँ बच्चे माँ बाप में करते हैं, बस मैं अपने ऊपर वाले में बस मेरा उतना ही यकीन, मेरे को पूरा जर्नी जो है मेरे, बस एक ही दुआ
1: बात
0: करती हूँ मैं ऊपर वाले से कि कोई भी मुसीबत आए बस तू मेरा साथ मत छोड़ना।
1: तो चलिए ऐसी अल्लाह ताला के नाम पे और आपके इस विश्वास और ट्रस्ट के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं।

0: अच्छा शमीम जी, अब ये बताइए कि इस सारे ट्रांसप्लांट्स के बाद में क्या अभी भी कोई प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे इम्यूनिटी केयर, आइसोलेशन, या कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं बच्चे की लाइफ में बाद में आए आपके साथ, आपको ध्यान रखना पड़ता है उसका?
1: हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है ना कि आपका फॉरेन ऑर्गन आपकी बॉडी में है, तो इम्यूनिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज। बॉडी में थोड़ा सा भी जब अपने बैक्टीरिया होता है तो कैसे फाइट करके, फीवर आता है और बॉडी ट्राई टू रिजेक्ट इट, तो देयर वाज अ बिगेस्ट फियर कि बॉडी रिजेक्ट नहीं करे, तो इम्यूनो सप्रेसेंट। और जब वो आया था हॉस्पिटल से तो 14-15 मेडिसिन्स, पता नहीं क्या क्या पूरा वो सिस्टम चल रहा था उसके साथ। और तो उसमें हमारा सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये था कि किसी से हम ज्यादा मिले नहीं, बिकॉज अगर किसी और को थोड़ा सा भी सिकनेस
0: इन्फेक्शन,
1: है तो
0: राइट,
1: इसको इन्फेक्शन का डर था।
0: इन्फेक्शन
1: तो
0: इन्फेक्शन आएगा.
1: हाँ, और अभी ये लोग समझ सकते हैं क्योंकि कोविड में सबने किया है। तो कोविड में जब लोगों को जब 2-4 महीने जो या साल भर जो अंदर रहना पड़ा था बंद के, महीना कुछ, वो हमने 3 साल ऐसे निकाले उस टाइम में कि बिल्कुल हमें किसी से मिलना नहीं है, उसका घर में ही। बट फिर सारी थेरेपीज चली थी उसकी, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिकॉज बच्चा तो बेड पे था। उसका सारा जो विकास होता है बचपन में, जो अपन बोलते हैं गोड़ी घिसना, थोड़ा सा पकड़ना, ताली बजाना, आ आ दादा बोलना, ये सारे जो विकास हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, ये बहुत जरूरी होते हैं, और वो उसका हुआ नहीं था। तो ही हैज टू गो थ्रू ऑल द थेरेपीज। 3 साल तक रिगरस थेरेपीज होती थी। उसने पता है गोरी घिसना पानी में सीखा, उसने चलना पहले पानी में सीखा, बिकॉज उसके पाँव में नर्व में सेंसेशंस नहीं थे। ही डिड नॉट टच द फीट ऑन द ग्राउंड, पूरा टाइम वो बिस्तर पे था। तो उसकी थेरेपिस्ट चॉप में, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो उसने सोचा कि ये बच्चा पाँव रखते ही चिल्ला के रोता है जैसे कि कांटे चुभ रहे हो। तो उसने क्या किया कि फ्लोटिंग मैट लगाई, उनके वहां पूल होता था छोटा वाला, उसपे फ्लोटिंग मैट पे उसने गोरी घिसना सीखा, फिर उसी पूल में उसने धीरे धीरे पकड़ के चलना सिखाया। आई मीन लाइक इस बच्चे ने तो सारी पता नहीं मतलब पूरे हिस्ट्री ही गाड़ दी अपनी एक के बाद एक। कि अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई मेरे बच्चे ने पानी पे गोरी घिसना सीखा है, पानी में चलना सीखा है, तो बोलेंगे क्या है ये, वाटर बेबी है। बट दिस वॉज ऑल द डिफरेंट वे वी हैड ट्राई। और प्रिकॉशन तो ये कि अभी एक दो दवाइयां हैं जो इसकी अभी भी चलती है, जो कि उसको जिंदगी भर लेनी है, और तो वो हम ध्यान रखते थे। फिर वॉमिटिंग भी काफी होती थी, उसके बाद भी एक आध और थोड़ा सा क्या कहते हैं सर्जरी, मतलब छोटी मोटी एक और हुई थी, बट चला था, बहुत टाइम लगा था उसको, 3-4 साल तो, जस्ट टू गेट इट बैक टू एज अप्रोप्रिएट होने में बहुत टाइम लगा
0: सही
1: था।
0: बात, सही बात. तो चलिए, आपको पता बहुत ही कैसा सुकून लगता होगा जब आप अपने बेटे को कॉलेज जाते हुए देखती है, न्यूरो साइंस पढ़ती है, पढ़ने पढ़ते हुए देखती है, ईगल स्काउट के रूप में देखती है, तो कैसा अंदर से तो बड़ा ग्रेटिट्यूड ही फील होता होगा, कैसा लगता है शमी?
1: एब्सोल्युटली, लाइक जिसका हम सोच नहीं पा रहे थे कि हम फर्स्ट बर्थडे मना पाएंगे, उसका हर दिन ग्रेटिट्यूड में हमारा थैंक्स, अल्लाह को थैंक्स करते हुए निकलता है। और हम ही नहीं, सब जने। उसके बाद आप ये देखो कि हमारे फ्रेंड्स भी हमें कॉल करते हैं, जब उनको अगर कोई मेडिकल इश्यू ही होता है, वो बोलते हैं शमीम ये सर्जरी थी, या ये दर्द हुआ था, या ये कोई बीमार था, लेकिन हम तुम्हारा और बच्चे का सोच के हम है ना, तो हमें तसल्ली होती है कि अगर वो हो गया, अगर वो इतना मुश्किल से निकला है, ये हमारी मुश्किल तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। तो एक जो संभावना मिलती है, अब हमें अब ये लगता है कि दुनिया के हर प्रॉब्लम सब छोटे लगते हैं, राइट? तो ग्रेटिट्यूड जो एक आया है, दूसरा हमने बच्चे को भी बताया है कि भाई ये तेरी जिंदगी बहुत बेशकीमती है, काफी लोगों ने अपने उससे बचाई है तुझे, तो तुझे जो ये अंग दान गिफ्ट ऑफ लाइफ मिला है, इट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ लाइफ यू हैव गॉट, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ इट। बट हमने कभी भी उसको ये नहीं किया कि उसको बबल में रखा, जिंदगी नॉर्मल जीनी है, स्कूल नॉर्मल होगा, एजुकेशन, ग्रेड्स, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। इवन बॉय स्काउट्स का भी इसलिए भी ज्वाइन किया क्योंकि मैं खुद भी इंडिया में प्रेसिडेंट गाइड रह चुकी हूँ। आई हैड रिसीव प्रेसिडेंट गाइड अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन इन 1991।
0: अच्छा, यू आर प्रेसिडेंट गाइड, अरे वंडरफुल।
1: हाँ जी, तो
0: ओके
1: स्काउट गाइड में है ना इतनी सारी चीजें सिखाते हैं, लाइक एक इंसान को मुकम्मल पूरा ट्रेन कर देते कि आप जिंदगी कैसे जियो। तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे को भी वैसा ही मिले, तो यहाँ पे हमने यूएस में ज्वाइन कराया था। तो उसने, और उसने बहुत मन से, शौक से वो जाता था, कैंपिंग्स भी जाता था, समर कैंप्स भी जाता था, वो अपनी दवाइयां साथ लेके जाता था, उसको पता था कि मेरे को ये करना है। बट कभी भी उसको ये महसूस नहीं होने दिया कि तेरे को कोई लिमिटेशंस है। दवाई का रहता था कुछ, एक खाने पीने का ज्यादा नहीं था, पर दवाइयों का थोड़ा था कि भाई ये दवाई ले सकता है, ये नहीं ले सकता है, वो उसको प्रिकॉशंस पता थे। फिर ईगल स्काउट की जो जर्नी है ना, बहुत हाईएस्ट रैंक है यूएस में भी, वेरी प्रेस्टीजियस। हमें सीनेटर से, प्रेसिडेंट से भी लेटर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस के आए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक आपको प्रोजेक्ट करना होता है गिविंग बैक टू कम्युनिटी, दैट इज द थीम, कि आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें कि आप वापस से जितना आपको कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, आप क्या कर रहे हो उनके लिए। तो मेरे बेटे ने उसके एलिमेंट्री स्कूल के लिए आउटडोर क्लासरूम बनाया। उसके, थैंकफुली उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि सब जने आके सबने हेल्प किया, वो भी सबकी हेल्प करता है, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब हाई स्कूल खत्म हुआ, अभी उसने जस्ट कॉलेज ज्वाइन किया है, और आगे भी उसकी इच्छा है कि गिविंग बैक टू कम्युनिटी वाला, जैसे मेरे में बीज जड़ा था बचपन में, इसके भी है। और अल्लाह ने चाहा तो इसको मेडिकल प्रोफेशन में ही जाना है कि
0: चलिए,
1: बस
0: हम भी
1: जिंदगी भाई आगे सेवा में
0: ये
1: ही देनी
0: दुआएं।
1: है उसको। हाँ
0: ठीक,
1: जी, हाँ जी, तो बस अभी वही चल रहा है।
0: आप शमीम जी मुझे बताइए कि मोहन फाउंडेशन और गिफ्ट ऑफ लाइफ यूएस के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ, और ऑर्गन डोनेशन के लिए जो आप इससे जुड़ी हैं पूरी मुहिम से, इसमें आगे आप कैसे काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं?
1: हाँ जी, तो गिफ्ट ऑफ लाइफ तो बिकॉज उन्होंने हमें सपोर्ट किया, दैट्स हाउ वी कम टू नो कि भाई ट्रांसप्लांट के लिए कैसे डोनर और डोनी को जोड़ते हैं। तो जब मैं वहां पे यूएस में, तो हम सिंस हिज ट्रांसप्लांट 2007 से जुड़े हुए हैं। फिर ये हुआ अचानक कि मतलब वो कहते हैं ना कॉल भगवान की तरफ से, कि मैं ये इतनी मुसीबत से मैं गुजारा, इसका कोई पर्पज होगा। बस उस पर्पस को हमने, मैंने अपनी जिंदगी का पर्पस बना लिया, मकसद बना लिया है। तो मैं इंडिया में देख रही थी कि इंडिया में भी काश कोई ऐसी संस्था होती जो कि इस तरह से डोनर डोनी को जोड़े, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे काम करे। और जब सर्च किया तो देन आई फाउंड दिस मोहन फाउंडेशन। तो ये मोहन जो है ये कोई नाम नहीं है, ये सिंबल है, इसका फुल फॉर्म है मल्टी ऑर्गन हार्वेस्ट एड नेटवर्क। तो ये जो मोहन फाउंडेशन है, इसको डॉक्टर सुनील श्रॉफ चेन्नई, उन्होंने आई थिंक इनिशिएट किया है। और फिर इसका जो जयपुर सिटीजन फोरम है, MFJCF, जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, उनकी भावना जगवानी जी से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि वो कैसे करते हैं, क्या अवेयरनेस के लिए वो लोग काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक ग्रुप से जोड़ा, ये मोहन फाउंडेशन से। उसके थ्रू में पल्लवी कुमार जी, गोविंद गुरवानी जी, और जो अनिल कुमार जी जो कि नोटो के है मेन करता धरता। और नोटो क्या है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये रजिस्ट्री का काम करती है। तो
0: नहीं,
1: इसमें क्या
0: अच्छा,
1: है,
0: बाय द वे शमी, मैं आपको बताऊं कि भावना जगवानी भी हमारे प्रोग्राम पे आने वाली है, उनसे बात हो गई है, वो भी एक इंटरव्यू देने
1: अरे
0: वाली
1: वाह,
0: हमें।
1: चलो चले, तो बहुत अच्छा।
0: और
1: तो वो आपको
0: हाँ
1: मोहन फाउंडेशन के बारे में
0: हाँ
1: बहुत कुछ बता
0: वो
1: सकती
0: बता
1: है।
0: देंगी, और पल्लवी कुमार को भी मैं जानता हूँ, वो तो मेरी
1: हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है।
0: जान। ओके,
1: हाँ जी, हाँ
0: अच्छा,
1: जी, हाँ जी,
0: अब मुझे बस एक छोटा सा जवाब दीजिए, जब इतना काम करती हैं आप, तो शमीम अपने आप को रिलैक्स किस तरह से करती है? कोई हिंदी फिल्म कोई पसंद है आपको? कोई क्या करती है? कोई म्यूजिक पसंद है? क्या चीज पसंद है आपको?
1: हाँ जी, मैं म्यूजिक और मूवीज तो साथ में सुनती हूँ. म्यूजिक मोस्टली पुराना या इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, और मूवीज मोस्टली मुझे ट्रू स्टोरीज के बेस्ड पे जो होती है वो पसंद आती है.
0: यस
1: थोड़ा सा साइंस का भी हो तो उसमें अच्छा लगता है. और हॉबीज में तो बस पेंटिंग बना के थोड़ा सा रिलीव कर लेती हूँ अपने आप को.
0: वेरी गुड वेरी गुड। तो अब शमीम ये बताइए कि इस रेडियो के प्लेटफॉर्म से अगर आप सोसाइटी को एक ऑर्गन डोनेशन के बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगी तो वो क्या होगा?
1: मैं तो अपनी जर्नी से यही कहना चाहूंगी कि ऑर्गन डोनेशन, अंग दान, महादान जो हम कहते हैं, इनसे बड़ा डोनेशन, चैरिटी कोई नहीं हो सकता. और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपसे जीते जी कुछ नहीं मांग रहे हैं. बस आप अपनी जिंदगी जिए, पूरी तरीके से जिए, लेकिन एक प्लेज, एक रजिस्ट्रेशन करके जाएं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन्स किसी अगर और को जिंदगी देते हो तो जरूर दे.

0: एक पेज पे होनी चाहिए एक तरह से। काश। तो शमीम जी, आपने आज अपने जीवन की जो कहानी हमारे साथ साझा की, वह सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि हम सभी के लिए गहरी सीख है। आपने हमें सिखाया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद जिंदा रखी जा सकती है। एक माँ का साहस पहाड़ों से भी बड़ा होता है। और यह है कि ऑर्गन डोनेशन वास्तव में वह महादान है जिसपे हम कुछ खोते नहीं बल्कि कई जिंदगियां रोशन करते हैं। दोस्तों, शमीम जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन के बाद भी हम किसी और के जीवन में मुस्कान ला सकते हैं, बस जरूरत है सही जानकारी और सही निर्णय की। अगर आज की बातचीत सुनकर आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचने लगे हैं तो यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ शमीम जी का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। शमीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी और अपने बातें आपने आज जो की हैं वो सब दिल से की हैं।
1: लास्ट मैं बस यही कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, जो कि आपने कहा कि प्लीज अगर आप अभी रजिस्टर नहीं है तो इंडिया में भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, नोटो की वेबसाइट है, कुछ नहीं तो आप गूगल पे खाली मोहन फाउंडेशन डालिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे प्लेज करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे हम हेल्प करते हैं लोगों की। लेकिन ये एक सिंपल सी जोक के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अगर आप मरने के बाद भी अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का स्टेटस देखना चाहते हैं तो जाते जाते अपनी आंखें किसी को डोनेट करते जाइए, अपनी धड़कन किसी को डोनेट करते जाइए, एक जिंदगी से 8 नई जिंदगियां देते जाइए। थैंक यू।
0: बहुत बहुत शुक्रिया शमीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, आपसे विदा लेते हैं, मैं आलोक कुमार आपसे इजाजत देता हूं। सुनते रहिए हमारा रेडियो का कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के साथ। धन्यवाद।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थीं तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानर्जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अल्फाज से एहसास तक के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में। हमारी रेडियो दोस्त आरती रॉय जी लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता अल्फाजों का, गजलों का। गजल सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया होते हैं जहां मोहब्बत, यादें, खुशी और दर्द सब अपनी आवाज पाते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हर फिक्र को पीछे छोड़ दें और डूब जाएं दिल को छू जाने वाली चुनिंदा गजलों के साथ जो आरती जी हमारे लिए लेकर आई हैं। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को।
1: शाम महके तेरे तसव्वुर से
2: टूटा तारा देखकर दिल ने कहा, टूटा तारा देखकर दिल ने कहा, मांग ले तू फरियाद कोई। मैंने कहा जो खुद टूट रहा है, मैंने कहा जो खुद टूट रहा है, कैसे पूरी करेगा वो मुराद कोई। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत खुश आमदीद। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो तांतिया भील के साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, संगीत का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये दूरियों को मिटाकर दो दिलों को एक धड़कन से पिरो देता है। आज की इस सुहानी शाम को हम एक बार फिर से निकल पड़े हैं फोन की घंटियों के जरिए एहसासों के एक नए सफर पर। देश के अलग अलग कोनों से हमारे दोस्त आज हमसे फिर से जुड़ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मिलाते हैं आज के सफर की पहली फोन कॉल। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन।
3: हेलो
2: हेलो गीता, हाउ आर यू?
3: या आरती जी, नाइस, सो नाइस टू हियर यू। बोलिए
2: कैसी हैं आप?
3: हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
2: मैं भी ठीक हूँ गीता। अपने फरमाइशी प्रोग्राम के लिए अब मैंने आपको नाम सिलेक्ट किया है। मैंने सोचा अपनी गीता से भी पूछा जाए कि उनकी कौन सी फेवरेट गजल और सिंगर है, तो आप हमें बताइए कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है।
3: मेरे तो आरती जी, मेरे तो एक सिंगर फेवरेट ऐसा नहीं है, सारे सिंगर फेवरेट हैं। पर आज मैं फरमाइशी जो करूंगी वो मैं भी हजन साहब की एक गजल के लिए।
2: बहुत जरूर। तो आपके आज के फेवरेट गजल सिंगर हैं मेहदी हसन साहब, राइट? तो आप मेहदी हसन साहब की कौन सी गजल आपको पसंद है?
3: ये गजल जो है ये रोशन जमाल यार, ये हसरत मोहानी जी की, उनकी वो है लिरिक्स।
2: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो गीता जरा गा के तो सुनाओ इतनी खूबसूरत गजल।

0: ऐसा कुछ है
1: बहुत
0: मैंने ऐसा गाया नहीं गुनगुनाया
2: बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत मेहदी हसन को ऐसे गा लेना ये सबके बस की बात नहीं है गीता बहुत सुंदर गाया ये तो बताओ गीता के ये गजल आपको इतनी क्यों पसंद है
0: ये राग पटदीप पर आधारित है ना जैसे हमारा फिल्मी सॉन्ग है ना
2: जी
0: फिल्मी सॉन्ग जैसे मेघा छाए
2: अंधेरा
0: सेम राग पटदीप वेरी स्वीट मेलोडिक सॉन्ग
2: सुंदर गाया आपने बहुत खूबसूरत तो ये इस राग बेस्ड है इसलिए आपको पसंद है तो इससे आपका रागों के बारे में हमें समझ में आ गई कि आपका बहुत नॉलेज है आपको बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा गीता इतनी खूबसूरत फरमाइश के लिए तो फिर चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की ये गजल और अपने सुनने वालों को भी सुनाते हैं अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं थैंक यू सो मच गीता थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी
0: थैंक यू आरती जी फॉर कॉलिंग मी थैंक यू सो मच
2: थैंक यू आइए दोस्तों सुनते हैं अब ये गजल

Inglês.

0: इंशाए गज़ल खान साहब मेहती हसन साहब की ये तारीखी गज़ल रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम। दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। और कमाल की बात ये है कि चेन्नई से जुड़ी हमारी बैंकर दोस्त गीता मनी जी को क्लासिकल म्यूज़िक की इतनी गहरी समझ है दोस्तों कि उन्होंने अपनी कॉल के दौरान ये भी कहा, उन्हें ये भी मालूम है कि ये गज़ल राग पटदीप पर आधारित है। अभी हाल ही में आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों हमने गीता जी की खूबसूरत गायकी का जादू तो सुना ही था। गीता आपकी गायकी की तरह आपकी पसंद भी बहुत शानदार है। आपने तो हमारी आज की महफिल में आते ही चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया गीता हमारी महफिल में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब चेन्नई से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारी अगली फोन कॉल, देखते हैं कौन है उधर। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन। हेलो
1: हेलो
0: हेलो राकेश जी, मैं आरती रॉय बोल रही हूँ।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, राकेश मुंशी दिस साइड।
0: हाँ मुझे मालूम है, गीता गीता मनी ने आपका परिचय दिया था, आपका नंबर भी दिया था कि आप हमारे प्रोग्राम में अपनी फरमाइश की गजल सुनना चाहते हैं, और इसलिए मैंने आपको फोन किया। आप गीता मनी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो अब आप हमारे भी दोस्त हुए, तो ये बताइए राकेश जी, आप दिल्ली में रहते हैं ना?
1: हाँ हाँ, हम दिल्ली के पास ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, वहीं पे ही रहते हैं। एनसीआर पार्क भी है ये।
0: हाँ हाँ ठीक है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये बताइए राकेश जी, आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
1: मेरा गजल फेवरेट तो बेगम अख्तर है, बेगम अख्तर की।
0: अच्छा
1: यस,
0: तो आज आप बेगम अख्तर साहिबा की गजल सुनना चाहेंगे, लेकिन कौन सी?
1: वो उनकी एक गजल है, फिर मुझे दीदाए तर याद आया।
0: वाह वाह,
1: वो एक वो बहुत ही टचिंग गजल है, बहुत इमोशन है उसमें, इसे वंडरफुल पीस। हालांकि उनकी नंबर ऑफ गजल्स है, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना है, मतलब कितनी मैं गजलें बताऊं उनकी, लेकिन ये पर्टिकुलरली ये तो बहुत ही
0: बहुत पसंद है,
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: तो राकेश जी जरा फिर हो जाए, एक लाइन गा के तो सुनाइए, आप इतने डाई हार्ड फैन लग रहे हैं बेगम अख्तर साहिबा के।
1: बिल्कुल, एक लाइन सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, आई डोंट नो
0: कोई नहीं
1: कैसा गाता हूँ, फिर कोशिश कर लेता हूँ।
0: हाँ हाँ बस और क्या,
1: बस

0: दीदे कर याद आया, फिर मुझे दीदे कर याद आया, दिल जिगर तश्नाए पर याद आया, फिर मुझे दीदाए कर याद आया।
1: वाह,
0: कैसी वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के घर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया।
1: क्या क्या बात है, आप कहते हैं आप गाते नहीं, आप तो खूबसूरत गाते हैं, यानी बेगम अख्तर साहिबा की गजल को अटेम्प्ट करना है, बिना गाना जाने नहीं हो सकता।
2: बेगम अख्तर की मतलब मैं एक्चुअली बेगम अख्तर, केएल सहगल, मतलब इनको बहुत सुना है, मतलब क्या टैलेंट था, क्या टैलेंट, मेहदी हसन साहब, क्या टैलेंट था हमारे पास,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: लेकिन बेगम अख्तर तो बिल्कुल, इट इज जस्ट क्लोज टू माई हार्ट, मतलब एक एक गजल क्या था, क्या अंतरा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त,
1: बहुत खूब। तो फिर अब आइए सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, आते रहिएगा। और
2: श्योर रेगुलरली आई विल बी अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर एंड लिस्टनर आल्सो।
1: थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों फिर हम सुनते हैं राकेश मुंशी जो दिल्ली से हैं और गीता मनी के दोस्त हैं, उनकी पसंद की ये गजल बेगम अख्तर साहिबा की आवाज में। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच।
2: थैंक

0: अरे वाह, दिल्ली से हमारे एक और बैंकर दोस्त जो कि गीता मनी के रेफरेंस से हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश मुंशी जी की क्या कमाल की पसंद है। मिर्ज़ा गालिब का लिखा ये तारीखी कलाम और उस पे मलिका ए गज़ल बेगम अख्तर साहिबा की वो मखमली दर्द भरी आवाज़, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। बहुत खूब, बेगम अख्तर जी की आवाज़ में जो खास हरकत और लोच है वो सीधे रूह को छू जाती है। राकेश मुंशी जी इतनी नफीस और शानदार गज़ल हमारी इस महफिल में शामिल कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हमारे SN फैमिली के मेंबर बन गए हैं और हमारे प्रोग्राम में आते रहिएगा। बहुत बहुत खुशामदीद है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब मिलाते हैं हमारी अगली कॉल और फिर उसके बाद गजल। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन।
1: हेलो
0: हेलो अनूप,
1: हाय,
0: कैसे हो अनूप?
1: बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ अनूप। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे SN रेडियो पे गजल का प्रोग्राम चल रहा है, फरमाइशी वो भी, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी गजल गाते भी हो और गजल के बहुत शौकीन हो, तो मैंने सोचा
1: बहुत शौकीन
0: तो मैंने सोचा कि बोलो।
1: मैं जगजीत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ।
0: वाह, और वाली थी
1: पिछले
0: आपका फेवरेट गजल
1: बहुत सालों से मेरा सबसे फेवरेट, और मैं ये मानता हूँ कि जगजीत सिंह जैसा गजल सिंगर जिसने की गजल आम आदमी को सिखा दी सुनना समझना और इतना आसान बना दिया कि जगजीत सिंह साहब की गजलें आप सुनो तो आप कभी बोर नहीं हो सकते हो। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने गजल को इतना मशहूर कर दिया, इतना पॉपुलर, और मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कभी भी कोई दूसरा जगजीत सिंह आएगा। ऐसे तो तमाम गायक आए चले गए, लेकिन जगजीत सिंह का जगह कोई नहीं ले पाया। उनकी डेथ को आज कितने साल हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे तो तमाम सारे लोग गए, उनकी जगह किसी न किसी ने ले ली, लेकिन जगजीत सिंह को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया।
0: बिल्कुल,
1: उनका स्थान अपनी जगह पे ऐसा है जो कि इररिप्लेसेबल है, उनका कोई मुकाबला नहीं है।
0: अब आप ये बताइए कि आपको इनकी कौन सी गजल पसंद है?
1: देखिए, गजल तो जगजीत सिंह साहब की एक से एक गजलें हैं, आप कोई एक गजल नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक गजल है जो शायद मैं बहुत बहुत मन से सुनता हूँ, गाता भी हूँ, वो है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
0: बहुत
1: ये गजल मैं चाहूंगा कि आप इसको प्ले करें और आपके सुनने वाले भी इस गजल को एंजॉय करें, जिसका एक एक लाइन मीनिंगफुल है और इतनी मेलोडी है इस गजल में, इतना स्वाद है कि आप कभी बोर नहीं हो सकते, आप चाहे कई बार सुने आप।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप एक लाइन गा के सुनाइए इसकी।
1: जी मैं बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको दो लाइनें इसकी सुनाऊं।
0: जी श्योर।
1: प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप इस गाने को, इस गजल को लोगों को सुनाएं और मेरे साथ साथ सब लोग इसको एंजॉय करें।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: और अपनी दुआएं दें और याद करें जगजीत सिंह साहब को।
0: यस यस एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, सुना आपने, मेरे बहुत खास फ्रेंड हैं ये अनूप, जो कि लखनऊ से हैं
2: और इनकी पसंद की गजल, तो चलिए फिर हम सब मिलकर सुनते हैं। थैंक यू अनूप, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू आपकी कॉल का, आपने भी मुझे बहुत बहुत खुश किया। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।
2: बाय
1: बाय बाय बाय।

0: वाह, नवाबों के शहर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े मेरे खास बहुत अजीज दोस्त अनूप श्रीवास्तव जी ने तो जगजीत सिंह साहब की इस मखमली गजल ने महफिल में मोहब्बत की ताजगी भर दी है। दोस्तों, प्यार का पहला खत लिखने को वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। अनूप जी जगजीत साहब की सादगी और इस गजल के मिठास ने हर दिल को छू लिया। लखनऊ की नफासत आपकी इस पसंद में साफ झलक रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आते रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं लखनऊ से दक्षिण भारत की तरफ और सुनते हैं हमारी अगली कॉल और फिर गजल। टन टन टन टन।
1: हेलो
2: हेलो रेखा, हाउ आर यू डार्लिंग?
1: हाय आरती जी, आई एम फाइन, आप कैसी हो?
2: मैं भी ठीक हूँ। तो रेखा, गजल के फरमाइशी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं आप?
1: हाँ।
2: तो बताइए मुझे भी और हमारे सुनने वालों को भी के आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
1: मेरे फेवरेट गजल सिंगर, मैं जब कॉलेज में थी तो तलत अजीज जी को लॉन्च किया था जगजीत सिंह जी ने।
2: अच्छा।
1: तो उनका फर्स्ट फर्स्ट एल्बम में वो पहला गाना था
2: जी,
1: कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल गाऊं तुम्हें देखने के बाद।
2: अरे बहुत
1: तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद तलत जी को मैं फॉलो करती थी, ऑल हिज सॉन्ग्स आई यूज्ड टू लिसन टू। तो he has a unique voice and his way of singing is very soft and beautiful.
2: गा के सुनाइए ना ये गजल की दो लाइनें।
1: हाँ जरूर।

0: तोड़ दो ऐहदे मोहब्बत, ये तुम्हारी मर्जी, एक है। बाद
1: जी
0: में दूसरा है वो, उन्होंने कहा था ये इतनी राहत दिल टूट जाने के बाद, इतनी राहत दिल टूट जाने के बाद,
1: जी
0: जिंदगी मिले मौत आने के बाद।
1: अरे
0: हम
1: वाह,
0: क्या होता है ये जनरली गजल में प्रिय व्यक्ति के बाद साथ बात करने का लाइक, और उसके सौंदर्य और प्रेम और वियोग उनकी ज्यादा, उनसे ज्यादा बयान होते हैं गजल में,
1: जी
0: जैसे आप जानते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: तो ये बहुत अच्छा रेफरेंस रवि साहब ने गाया था, इतनी राहत दिल टूट जाने के बाद, जिंदगी से मिले मौत आने के बाद।
1: में बताइए, ऐसे नहीं समझ आ रहा हमें।
0: अच्छा मैं नहीं बताऊंगा। और तेरी तो चांद सितारों में बात होती है, चमन चमन बहारों में होती है, वो भी है। और मैं जो आपको अभी सुनाने जा रहा, एक दो दो लाइनें में कहना चाहूंगा, आई मीन गाना चाहूंगा, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है।
1: गा के सुनाइए ना।
0: तो जरूर जरूर जरूर, ये रफी जी की काफी मशहूर गजल है, अब गीत भी है, ये फिल्म का था ये। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा।
1: क्या
0: तो ये रफी जी का है। वैसे जैसे मैंने कहा, तलत महमूद साहब भी मुझे काफी दिलचस्प, ये उनकी गजलें, जैसे मैं पागल मेरा मनवा पागल, मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे पगले।

0: करे मैं काजल, ये गलत नवल जी का है, बहुत जरूरी
1: गजल है। सुनना चाहेंगे अब आप कौन सी चाह रहे हैं कि हम एयर करें, आपकी कौन सी प्ले करें?
0: आप तो इनके पास शरद मंदिर और बहुत बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस।
1: आपने अभी जो दो गाई ना, इसमें से कौन सी सुनाए?
0: मुझे क्या सुना, रफी जी का ये सुनाइए ना प्लीज, मुझे क्या सुनाऊं मैं
1: जो आपने बाद में बोला।
0: हाँ, तुझे क्या सुनाऊं,
1: ये तो फलत साहब की है।
0: नहीं, ये रफी साहब की है, पहला मेमो जी की है, वो मैं पागल मेरा मनवा पागल एक है, और दूसरी सुजाता की फिल्म के लिए जलते हैं जिसके लिए।
1: तो अब आप कौन सी सुनना चाहेंगे ये तो बताइए।
0: ओके, मैं पागल मेरा मनवा पागल,
1: आप मैं पागल मेरा मनवा, ठीक हो गया,
0: करद मेमो जी का शहरी है,
1: ठीक है।
0: ओके,
1: थैंक यू सो मच सुभाषित। आइए फिर आपके साथ हम अपने दोस्तों को सुनाते हैं मैं पागल मेरा मनवा पागल। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच, बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।

0: क्या बात है, बेंगलोर से रेखा जी के घर से ये कौन बोले? हमारे सुभाष कामत जी, उनके हस्बैंड बेहतरीन गायक हैं। सुभाष कामत जी तो हम सब जानते हैं, और उनकी इस मखमली गजल ने तो महफिल लूट ही ली। दोस्तों, कॉल के दौरान जब सुभाष जी अपनी इतनी सुरीली आवाज में मोहम्मद रफी साहब की इतनी राहत, दिल टूट जाने के बाद तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, और तलत महमूद साहब की तेरी एक निगाह की बात है गुनगुना रहे थे, तो मानो सुरों की बारिश हो रही थी। और दोस्तों, अभी हाल ही में आपको याद होगा किशोर कुमार साहब के जन्मदिन पर जब सुभाष कामत जी की गायकी हमने सुनी, तो सुनकर मज़ा ही आ गया था। उन्होंने जिस तरह किशोरदा के गानों में समा बांधा था, ठीक वैसे ही आज तलत महमूद साहब की गज़ल मैं पागल मेरा मनवा पागल से हमारी इस महफिल में भी रूहानी रंग घोल दिया। सुभाष कामत जी इतनी सुंदर गजल सुनाने और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चेन्नई की सरजमीन से गीता मनी जी के साथ शुरू हुआ हमारा ये सुहाना सफ़र। दिल्ली में राकेश मुंशी जी की अख्तरी बाई की गज़ल यानी बेगम अख्तर साहिबा की गज़ल, और फिर लखनऊ से हमारे अनूप श्रीवास्तव जी की जगजीत सिंह जी की गज़ल, और फिर बेंगलोर में रेखा नाटकर्णी कामत जी और सुभाष कामत जी के सुरीले नगमों से होता हुआ आज यहाँ आकर ठहरता है। देश के अलग अलग कोनों से आए इन फोन कॉल्स ने आज साबित कर दिया है कि दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दूर क्यों ना हो, संगीत और एहसासों का धागा हम सबको एक साथ पिरो देता है। चलते चलते आज की इस सुहानी महफिल के नाम दो सत्रे नजर करती हूँ। फोन की घंटियों से शुरू हुआ ये सफर दिल तक पहुंच गया, फोन की घंटियों से शुरू हुआ ये सफर दिल तक पहुंच गया, अल्फाजों का हर एक नगमा एहसासों में ढल गया। दूर होकर भी आज हम सब कितने पास आ गए, दूर होकर भी आज हम सब कितने पास आ गए, संगीत का ये रिश्ता हर एक दिल को छू गया। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ अब आपकी हम नफस, आपकी रेडियो दोस्त, आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय आपसे लेती है इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए अल्फाज, कुछ नए एहसासों और आपकी पसंद के सुरीले नगमों के साथ। तो सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील। लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने के साथ बहुत मोहब्बत से रहिएगा। शबा खैर, शुभ रात्रि, रब रखा, फिर मिलेंगे।
1: वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठी।
2: तो दोस्तों, कैसा लगा ये गुलदस्ता जो आरती जी ने सजाया? तो आज की इन गजलों ने आपके दिलों को छुआ होगा और कुछ तो खूबसूरत एहसास आपके लिए छोड़ गई होंगी। अगली मुलाकात के लिए फिर लेकर आएंगी आरती जी ऐसे ही शानदार गजलें और दिलकश नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए।

0: 15 दिन के अंतराल पर इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। आज दिन की बहुत फेमस वैरायटी है और जोबनेर की वैरायटी है, पंजाब जोबनेर जो है ये वैरायटी, इसकी लीफी वैरायटी डेवल होती है, एक चौड़ी पत्ती वाली होती है, डार्क ग्रीन कलर की वैरायटी होती है जोबनेर वैरायटी जो होती है। और लेटेस्ट वैरायटियाँ जो है इसकी पूसा भारती जो है IRI रिलीज हुई है, लेटेस्ट वैरायटी है इसकी, हाई यील्डिंग वैरायटी है, 50 टन पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है, इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है।
1: आज हम बात कर रहे हैं पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा।

0: बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक सभी चरणों में वैज्ञानिक सलाह का ध्यान रखें। पालक की खेती में भी ये बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान बुआई के बाद उसकी सिंचाई पर विशेष ध्यान दें ताकि किसी भी तरह का लॉस उन्हें ना हो। आइए जानते हैं इसके बारे में।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं, पालक के बीजों को भारत के सभी क्षेत्रों में पूरे वर्ष ही लगाया जाता है, लेकिन इसकी रोपाई के लिए सितंबर और नवंबर के माह को उपयुक्त माना जाता है। जुलाई के महीने जिस दौरान बारिश का मौसम होता है, तब इसके पौधे आसानी से उगाते हैं। पालक के बीजों की रोपाई को कई तरीकों से किया जा सकता है, पहला रोपाई विधि द्वारा और दूसरा छिड़काव विधि द्वारा। रोपाई विधि में पालक के बीजों की मेड़ों पर रोपाई की जाती है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 किलोग्राम बीजों की जरूरत होती है। वहीं छिड़काव विधि में प्रति हेक्टेयर 30 से 35 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। पालक के बीजों को खेत में रोपाई करने से पहले उन्हें वाविस्टिन या कैप्टान दवा की उचित मात्रा से उपचारित कर लेना चाहिए। रोपाई विधि द्वारा बीजों को रोपाई करने के लिए खेत में क्यारियों और मेड़ को तैयार कर लिया जाता है। इन पंक्तियों को तैयार करते समय प्रत्येक पंक्ति के मध्य 1 फीट की दूरी अवश्य रखें तथा पंक्ति में लगाए गए बीजों के 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। इसके बीजों को खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में लगाना चाहिए, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से हो। इसके अलावा छिड़काव विधि से भी बीजों को खेत में लगाने के लिए खेत में उचित आकार की क्यारियों को तैयार कर उन क्यारियों में छिड़क दिया जाता है। इसके बाद हाथ या किसी औजार की सहायता से बीजों को खेत में दबा दिया जाता है।
2: सीड रेट की बात करते हैं, अगर देसी वैरायटी है, जो अर्ली वैरायटी है, जो सब हम बरसात के लिए ग्रो करते हैं, इसमें 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज का हम यूज़ करते हैं। और जो समर वाली क्रॉप है, जो गर्मी में लगाते हैं, गर्मी में 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से इसके हम बीज का यूज करते हैं।
1: किसी भी फसल के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई की जरूरत होती है, जिससे खेत में मृदा की नमी बनी रहे और बीजों का अंकुरण और विकास अच्छी तरह से हो। पालक की अच्छी फसल के लिए गर्मी के महीने में 4 से 6 दिनों के फासले पर सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि सर्दियों में 10 से 12 दिनों के फासले पर सिंचाई करें। फसलों में सिंचाई जरूरत के अनुसार ही करें। ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर पानी ना रहे, क्योंकि इससे फसल के गुणवत्ता में कमी तो आती ही है, साथ ही फसल में कीड़े और कीट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पालक की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति काफी लाभदायक होती है।

0: अगर फर्टिलाइज़र मैन्योर की बात करते हैं तो इसमें फर्टिलाइज़र मैन्योर की कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती किसान भाइयों, क्योंकि इसमें लीफी वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी ग्रोथ अधिक होती है, नाइट्रोजन इसमें हम देते हैं। और इसमें कुछ क्या करते हैं, फॉस्फोरस भी देते हैं, फॉस्फोरस देते हैं 30 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं 80 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। नाइट्रोजन कब देते हैं, जब पहली कटिंग कर लेते हैं, पहली कटिंग करने के बाद उसमें नाइट्रोजन की हाफ डोज देते हैं और इसके बाद फिर जो दूसरी कटिंग करेंगे तो बची हुई डोज नाइट्रोजन के देते हैं और इसके बाद हम पानी का सिंचाई देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो।
1: हरी सब्जियां जहां सेहत से भरपूर होती हैं, देखने में मोहक लगती हैं, वहीं कीट और बीमारियों का खतरा भी इनमें बना रहता है। ऐसे में पालक की खेती में भी बहुत आवश्यक है कि उचित तरीके से कीट और बीमारियों का प्रबंधन किया जाए ताकि फसलों में उसका नुकसान ना हो और फसलें सुरक्षित रहें। आइए जानते हैं पालक की खेती में कैसे करे किसान कीट और बीमारियों का उचित प्रबंधन।
2: अन्य किसी भी फसल की तरह पालक में भी कई तरह के कीट और बीमारियां लगने का खतरा होता है, जिनमें से एक है आर्द्र गलन। ये पालक की फसल में लगने वाली प्रमुख बीमारी है जो कि नर्सरी में नई पौधों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रकोप से पौधे मर जाते हैं तथा नीचे से मुड़ जाते हैं। इसके प्रकोप से फसल को बचाने के लिए खेत में जल जमाव से पौधों को बचाना चाहिए, साथ ही बुवाई के पहले बीज को ट्राइकोड्रमा नामक जैविक से उपचारित करना चाहिए। नर्सरी का स्थान रोग मुक्त तथा उपचारित मृदा में ही करना चाहिए। वहीं पत्ता धब्बा पालक में सरकोसपोरा वेटिकुला नामक फफूंद के द्वारा हो जाते हैं। संक्रमण के कारण पत्तियों पर बहुत से संकेंद्रीय छोटे छोटे भूरे रंग के वृत्ताकार धब्बे बन जाते हैं। आरंभिक अवस्था में ये धब्बे एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन आगे चलकर ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। बचाव के लिए बुवाई से पूर्व ही बीज को उपचारित करें। ब्लाइटॉक्स दवा के 3% घोल का छिड़काव करना लाभदायक होता है। पर्णचित्ती रोग भी पालक में लग जाते हैं, यह फाइलास्पिकता प्रजाति नामक फफूंद के कारण होता है। रोग का लक्षण हल्के पीले रंग के सूक्ष्म बिंदु के रूप में दिखता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल चक्र की विधि को अपनाना चाहिए। प्रभावित फसल पर डाइथेन Z78 के 3% घोल का छिड़काव करना चाहिए। मृद रोमिल आसिता बीमारी पालक में पेरोनोस्पेरा इफ्सा नामक कवक के द्वारा होते हैं। रोग का लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रुई की तरह उभरे हुए या सफेद या पीले रंग के फफूंद के रूप में प्रकट होता है और बाद की अवस्था में धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। रोग की उक्त अवस्था में पत्तियां सूख जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए किसान भाइयों को रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। इन सब उपचारों के अलावा किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विशेषज्ञों से जरूर संपर्क करें और विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए उचित कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए।
0: अगर उपज की बात करें तो उपज कम से कम इसकी 50 से 60 टन तक बहुत अच्छी उपज होती है पालक की। किसान भाई उसकी खेती करते हैं तो इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। पूरे वर्ष आप जहां पे क्लाइमेट कम होता है वहां ठंडी कम पड़ती है, यहां पे इसको हम पूरे वर्ष ग्रो कर सकते हैं।
1: वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आज हम बात कर रहे हैं पालक की खेती के बारे में, इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।

0: जिससे प्रतिदिन पैसा मिले, जिससे उसके परिवार, उसके साथ काम करने वाले लोग, उनको रोज पैसा मिले। गेहूं और धान और गन्ने में परंपरागत 6 महीने और 1 साल के बाद पैसा मिलता है। उसके साथ में अगर हम इस तरह से सब्जी का काम करते हैं और खासकर पालक, पालक एक ऐसी सब्जी है कि जो लगातार हर घरों में खाई जाती है और जिसका प्रयोग आप देखिएगा कि अगर पनीर बनेगा तो उसमें भी पालक पड़ेगी, पकौड़ी बनेगी तो उसमें पालक की जरूरत पड़ेगी। पालक लगातार लोग दाल के साथ पालक खाते हैं, पालक अलग अलग तरह से बनाई जाती है तो जिसका प्रयोग खाने में तरह तरह से लोग करते हैं, जिसका जैसा टेस्ट होता है। और जब आप एकड़ में लगा देंगे तो प्रतिदिन आपकी मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी आप पालक ले जाइए, आपको अच्छा रेट मिलेगा, प्रतिदिन पैसा मिलेगा। तो मेरा किसान भाइयों से सुझाव है कि आप लोग परंपरागत खेती छोड़कर इस तरह की भी खेती करें कि जिससे आपको प्रतिदिन पैसा मिले। आज जितनी दवाइयां प्रयोग करते हैं उससे ज़्यादा रोग आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती करूँ जिससे रोग कम से कम आए और साफ सुथरी सब्जी समाज को दूँ, बाजार में जाए। मेरा रेट भी अन्य लोगों से 2-3-4 रुपए किलो ज्यादा रहता है।
1: वैज्ञानिक विधि द्वारा किसी भी फसल की खेती करना बेहद लाभप्रद साबित होता है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और वैज्ञानिक सलाह। विशेषज्ञों की सलाह लेकर किसान अधिक से अधिक पैदावार हासिल करने में सफल हो सकते हैं। पालक की खेती भी वैज्ञानिक विधियों से कर किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे जल्दी तैयार होने वाले फसलों में से एक है जो लगभग 30 से 35 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी सब्जियों की तुलना में कम लागत लगती है। किसान पालक को पोषण मूल्य को ध्यान में रखते हुए पालक की खेती बड़े पैमाने पर कर सकते हैं।
2: तो सालो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपुई बात हामली सब्जी वर्गी खेती नी, इनामा आपुई लौकी एतरे नई नी खेती नी बात करी, करेला नी खेती नी वातियो हामलियो, अने जाता जाता आपुई पालक नी खेती नी पण विस्तार पूर्वक वातियो हामलियो। तो किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में बस एतरी बात, केम के हाव समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमो नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कहता हामलता रहेजो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर। तमारा आज रेडियो खतवार आरजे राकेश नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत छे तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबवानी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश, अने रोजनी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो छे। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तिना समाधान नी वातियो लीने रोज इनाज समय पर हाजिर थातो रहूं छे। तो किसान भाइयों, अने आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपणो चर्चानो विषय रहे सब्जी नी खेती मा सफल किसान अने काला नमक सावल देखी किसान उत्पादक संगठन केवी रीते फल फूली रह्यो, ये वातियो आज आपु इना कार्यक्रम मा हामलवाना छे। अने किसान भाइयों, ये बधी वातियो आपुन वतारे कृषि था जोड़ायेला अनुभवी अने विशेषज्ञ लोग अने हाथे हाथ एवा किसान भाई त्या यू काम करीने घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रह्या छे। तो सालो किसान भाइयों, आज ना कार्यक्रम मा आपु हामली खेतीवाड़ी नी तकनीकी वातियो।
3: हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप उनकी दास्तान को जानें और आप भी अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सके। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले एक किसान से। बता दें आपको, ये पहले भी पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि खेती किसानी में क्यों ना कुछ हटकर किया जाए, और इसी सोच के साथ ये आगे बढ़े। इन्होंने अपनाया

0: लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। भारतीय किसान विभिन्न परंपरागत और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फसल की बीज उत्पादन, जल संरक्षण तकनीक, कृषि मशीनरी, सूखे से लड़ने के लिए बुनियादी ढांचे जैसे कि जल संचयन एवं समय पर समाधान की तकनीक। आज का किसान समय के साथ बदल रहा है और खेती किसानी को नया रूप दे रहा है। गाजियाबाद। जी हाँ, गाजियाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जो NCR क्षेत्र में आता है। यहाँ के किसान शहरों के चकाचौंध वातावरण से हटकर गांव के वातावरण में रहना पसंद करते हैं। गाजियाबाद जो कि अपनी कृषि और औद्योगिक सक्रियता के लिए काफी प्रसिद्ध है, यहाँ के किसानों ने कृषि को अपना मुख्य आजीविका स्रोत बनाया है। गाजियाबाद के किसान अपनी मेहनत और समर्पण के साथ भूमि की संपत्ति को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं और न केवल अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। खेत में फसलों की देखभाल करते किसान हैं सूबे सिंह यादव, जो खेतों में दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और खुद में मगन रहते हैं। खेती की परंपराओं के बारे में बता रहे हैं आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव जी।
1: पहले समय में हम पारंपरिक खेती करते थे, जैसे करते आए हैं, तो उस समय हमें सब्जी की, फल की ऐसे जरूरत पड़ती रहती थी कि क्या करे जाए। लेकिन गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा इनसे उब चुके थे। लेकिन धीरे धीरे हम सब्जी की तरफ मूवमेंट करा, हम सब्जी बोने लगे। सब्जी के बाद में कुछ नींबू के बाग लगाए हैं 5 बीघे में, तो उस नींबू के बाग से आमदनी बढ़ी। नींबू के बाग का हमने शुरुआत में, जब से लागत के बारे में बताऊँ थोड़ी सी, तो 30,000 की लागत आई उसमें। जैसे उसमें पेड़ आए, कुछ मजदूर लगे, खाद लगा, तो उसमें वो होती रही। उसके बाद में जैसे भी वो चलता रहा, तो इसमें अब आमदनी, इसमें मसूर और मूंग ये सारी चीज़ बोते रहे, तो आमदनी की अच्छी आमदनी हुई इसमें। अब तीसरी साल में इसमें 45,000 के नींबू बिके पिछले साल। अब के साल को अब डिलीवरी करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा बिकेंगे, तो ये भी अच्छा रहा। दूसरी है सब्जी के लिए, सब्जी में जैसे आलू बोए हैं, आलू के बाद में हमने पेठा बो दिया। पेठे में हमने मूली बीच बीच में जो 10 फुट का डिफरेंस है उसमें मूली बोई, और मूली के साथ में धनिया बोया। तो मूली और धनिया में उसकी लागत तो हमें वसूल हो चुकी है, बाकी अब पेठा रहेगा, पेठा चलता रहेगा इसमें, तो वो भी आमदनी बढ़ी है इसमें।
0: कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। गाजियाबाद के किसान इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। कृषि का क्षेत्र किसानों के लिए अनमोल है। गाजियाबाद के किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित करते हैं, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, अरहर, मसूर, मिलेट्स और आलू शामिल हैं। आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव भी खेती को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इनका मानना है कि खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। इन्हीं सोच के साथ सूबे सिंह यादव आगे बढ़े और एक पॉली हाउस का निर्माण किया, जिसमें वे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।
1: पीछे जो पॉली हाउस है मेरे दिखाई हो रहा होगा, इस पॉली हाउस में हमने ये सोची कि भाई कुछ प्योज बनाने के लिए सिस्टम बनाया जाए इसके लिए। जैसे तो प्योज बनाने के लिए मक्खी मच्छर दवाई की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए हमने नेट हाउस लगाने के बाद में हमें कीड़े मच्छर की इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, और इसमें बेहतरीन सब्जी भी होंगे, तो सब्जी होते हैं 6 महीने कम से कम टमाटर चल रहे हैं, आज इसमें मिर्ची की बढ़िया चल रही है, नर्सरी इसमें उगाते हैं। ये अपने पर्सनली अपने रिस्क के अनुसार हमने ये आमदनी के लिए बनाई। सब्जी हम और ले रहे हैं, टमाटर होगी, मिर्च होगी, खीरा होगा, घिया होगी, तोरी भी हैं, ये समय समय के अनुसार ये लगाई रखते हैं जिसमें चलती रहे। टिंडे भी हैं, भिंडी भी बोते हैं कभी, तो इन सब्जियों की खेती कर रहे हैं। आलू का सीजन के बाद धान और गेहूं ये तो हमारी मेन क्रॉप है ही हैं, लेकिन सीजनेबली जैसे आलू बो दिए, आलू के बाद में सब्जियां बो दी, सब्जी के बाद कुछ चारा बो दिया, कुछ ऐसी सरसों की भी फसल साथ में चल रही है, तो ये सब सब्जियों का हमें ब्यौरा रखकर।
0: पॉली हाउस एक विशेष प्रकार की संरचना है जो फसलों के उत्पादन और संरक्षण के लिए डिजाइन की जाती है। ये एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है जिसमें उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाली फसलें उत्पन्न होती हैं।

0: पॉली हाउस में फसलों की उत्पत्ति वातावरणीय प्राथमिकताओं के अनुसार नियंत्रित की जाती है। सफल किसान सूबे सिंह यादव भी पॉली हाउस के महत्व को समझ चुके हैं और इसके लिए भविष्य की रणनीति भी तैयार करके रखे हुए हैं।
1: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान से हम जानेंगे कि इस दिशा में बढ़ने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इनोवेटिव फार्मर के सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आइए इन सब के बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करें हमारे सफल किसान का, उनसे जाने उन्होंने ट्रेनिंग के लिए किस ओर अपने कदम बढ़ाए थे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड उन्हें कब और किस लिए दिया गया था। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान का।
1: किसान खेत में जी तोड़ मेहनत के साथ नवाचार को भी अपनाता है ताकि खेती में कुछ बदलाव लाया जा सके। इसी सोच के साथ सफल किसान सूबे सिंह यादव जी आगे बढ़े और नवाचार अपनाकर खेती में कुछ अलग करने की ठानी। सूबे सिंह यादव जी ने कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ली और अन्य फसलों का उत्पादन करने लगे। इसके लिए इन्हें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
2: हमें 2017-18 में एक इनोवेटिव अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, जिसका पूरा श्रेय केवी के मुरादनगर गाजियाबाद को जाता है। वहाँ के डॉक्टरों ने एक थोड़ी सी बात हमें कही, हमने पहले सब्जी बोने के इरादे था और हम सब्जी के लिए तो तैयार थे, खेत खाली है हमारा, लेकिन उस समय उन्होंने कही कि भाई आपने मसूर दाल के लिए आपको दाल बोनी पड़ेगी हमारे डैमो के लिए। मुझे ठीक है, हम दाल बोएंगे और मसूर की दाल बोई हमने, लेकिन उनके बगैर बताए हमने उसमें बीच में नाली बना कर और हमने लो टनल में खीरा लगा दिए, क्योंकि हमारी प्लानिंग पहले से ही खीरे की ही। तो लो टनल में जैसे ही हमने खीरा लगाए तो वे 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद में देखने को केवी के डॉक्टर आए, तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है मगोदी, ये तो आपके बगैर बताए हमने कर दिया, लेकिन देख लो अब चल जाए तो नगर नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। तो हमें और ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में हमें उसी खीरे में घिया की बेल लगा दी, घिया की प्योत बनाकर घिया के वो लगा दिए। जैसे ही लोटन नल को हमने कवर्ड करा, जैसे खीरा लगाया, तो उसमें उसके अंदर हमने पालक और धनिया दोनों बीच में नीचे नाली में डाल दिया, जिससे हमें पालक और धनिया से भी आमदनी हुई, खीरे की आमदनी हुई, खीरे के बाद में घिये से आमदनी हुई। तो हमारे यहाँ ICR पूसा की टीम आई, उन टीम ने ये इनोवेटिव अवार्ड के लिए वो करा, उसे ट्रेनिंग भी दी हमें। और उसके बाद में 18 मार्च 2018 को हमें एक अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें ट्रेनिंग भी देते रहे। अब वहाँ हम जाते भी रहते हैं, ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ और हैं, जैसे KVK होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है हमारी मोदीपुरम में, वहाँ भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं, जाते रहते हैं, डॉक्टर भी यहाँ आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं और उनके भी अवार्ड से हम सम्मानित हुए हैं। यूनिवर्सिटी से भी, KVK से भी सम्मानित हुए हैं, ICR पूसा से भी सम्मानित हुए हैं और जिले लेवल में तो हमें कई बार सम्मान हो रहे हैं। हमारी ये तो हमारी दिनचर्या रही है।
1: किसान को सही खेती तकनीकों की शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपनी खेती को सही और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित कर सकें। ये उन्हें अद्वितीय उत्पादकता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए साझा तकनीकों के लाभ का अनुभव कराता है। सफल किसान सूबे सिंह यादव भी ट्रेनिंग के महत्व को समझते हैं और आज ट्रेनिंग लेकर खेती किसानी को नया रूप दे रहे हैं और आसपास के किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं ना, अगर एक किसान सफल हो तो उन्हें देखकर आसपास के किसान भी प्रेरित होते हैं।
2: हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से बीज के बारे में ट्रेनिंग ही, हम बीज भी लेते हैं, BDF का धान का बीज लेते हैं ज़्यादातर, ICR पूसा का गेहूं का बीज ज़्यादातर लेते हैं, सब्जियों के बीज वहाँ से ज़्यादातर लेते हैं। कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि इस टेम्परेचर में कौन से समय में कौन सा बीज बोया जाए, क्योंकि हम ज़्यादातर खीरा घिया पेठक और टमाटर मिर्ची ये सब ज़्यादातर फसलें लगाते हैं, तो उनके बीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान देते रहते हैं। समय समय पर ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं और गांव के लोगों को भी प्रोत्साहन करते हैं। इसमें हमारे साथ में गांव के लोग बहुत जुड़े रहते हैं, हम गांव से एक बस भर कर भी KVK की तरफ से यूनिवर्सिटियों में घूमने के लिए, करनाल घूमने के लिए, ऐसे टूर पे भी गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ जाते भी हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं और सपोर्ट भी करते हैं।
3: सूबे सिंह यादव जी, मैं यहाँ ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो वही सीखने के लिए मैं आया हूँ, इनको कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, और देख के मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं तो उसमें काफी अच्छा लगा, तो सोचा कि मैं भी करूं जाके, क्योंकि थोड़ी जमीन है उधर राजस्थान में, तो सोच रहा हूँ वहाँ पे अभी। हाँ ये थोड़ा सा मछली पालन के लिए भी यहाँ एक तालाब खुदवाने की सोच रहे हैं, तो एक मछली पालन करने की भी सोच रहे हैं, तो उसके भी देखते हैं उसका क्या होता है। तो मछली पालन का भी हमारा चल रहा है प्रोग्राम, अभी मछली पालन भी किया जाए, ऑर्गेनिक तो चल ही रहा है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है।
1: सफल किसान सूबे सिंह यादव जी आज लगभग 12 एकड़ की भूमि पर खेती करते हैं, जिनमें सब्जी, गेहूं व दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं। इन सब बातों का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि सूबे सिंह यादव जी सिंचाई के लिए सोलर पैनल सेट लगाए हुए हैं, जिससे इन्हें बिजली की बचत होती है और इनका सारा काम आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने गोबर गैस संयंत्र भी लगा रखा है, जिससे जैविक खेती करने में काफी मदद मिलती है।
2: 12 एकड़ जमीन है जो हम जैविक से भी कर रहे हैं, कुछ रासायनिक से, जो जैविक से पूर्ति ना हो रही है तो उससे रासायनिक से भी खेती कर रहे हैं, और विविधीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देकर हम विविधीकरण की खेती

0: ज्यादा कर।
1: विविधीकरण में क्या क्या ले रहे हैं?
0: विविधीकरण में हम धान भी है, आलू भी है, उसके बाद में पशुओं के लिए चारा है, मूंग भी बोते हैं और निसंग सब्जी भी बो रहे हैं, जैसे कद्दू की सब्जी है और नींबू की फसल भी आ रही है, उसमें नींबू के साथ में किन्नों के पेड़ हैं, कुछ आड़ू के पेड़ हैं, कुछ ऐसे अपने नींबू के पेड़ ज़्यादा हैं, बाकी अपने घर गृहस्थी के लिए आड़ू के पेड़ भी। हमने बिजली की व्यवस्था, पहले बिजली ही हमारे, लेकिन बिजली का लाइन कटा के हमने ये सौर ऊर्जा की 3 HP की मोटर लगवाई, जिससे हमें ड्रिप लाइन और स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई करते थे, कर भी रहे हैं, अब भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम के तापमान की वजह से हमने दूसरी 3 HP की और सोलर पंप लगाया, जिससे 6 HP से अब हमारी सिंचाई सोलर से ही हो रही है, संपूर्ण सोलर, घर की बिजली भी सोलर से काम कर। और उसके बाद में हम जैसे हमने गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है, तो जैसे गोबर गैस प्लांट में हमने जैविक के तरीके से सैलरी को खेती में ही यूज कर रहे हैं, जो पानी के साथ में सैलरी को बहा देते हैं, तो जैविक विधि से उसे हो रही है। इसमें जीवामृत भी बना के डालते हैं और भी जैविक के जो भी प्रोसीजर हैं वो करके ही डालते हैं, जो जैविक खेती पर आधारित है पूरी संपूर्ण 4 एकड़ जमीन।
2: सफल किसान सूबे सिंह यादव जी खेती के सभी गुर को समझ चुके हैं। आज इनके फार्म हाउस में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि विभाग की मदद से सोलर पैनल सेट एवं ट्रैक्टर के साथ अन्य प्रकार के कृषि यंत्र भी मुहैया कराए हैं, जिससे उन्हें खेती किसानी में काफी सहूलियत मिलती है।
3: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं।
4: बाय।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका के बारे में, किस तरह से वो किसानों को जोड़ रहे हैं प्राकृतिक और जैविक खेती से।
1: प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें रसायनों का प्रयोग न करके घरेलू संसाधनों के उपयोग मिलाकर खेती में प्रयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है एवं पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। इस प्रकार से किए गए खेती के प्रकार उन्नति के माध्यम से साथीकृत नवाचार और परंपरागत ज्ञान का मिश्रण प्रदान करता है। प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर जगनीश शर्मा।
2: हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में हमारे सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 30 दिवसीय सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिसमें हम प्लस टू तक के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के ऊपर। सर्टिफिकेशन के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाई जाती है और उनको कहीं भ्रमण पर भी ले जाया जाता है। तो इस तरह से 30 दिन में उनको एक्सपोज किया जाता है सभी प्रकार के जैविक खेती में प्राकृतिक खेती की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब उनसे उनको अवगत कराया जाता है। 20 लेक्चर्स रखे जाते हैं जो हमारे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, वो चाहे साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों IARI के या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनको हमने एम्पैनल और एक्सपर्ट्स को अपने पैनल में रखा होता है, उनको बुलाया जाता है इन ट्रेनिंग्स को करवाने के लिए। इसके साथ साथ हम कंपाइलेशन करते हैं डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा वैलिडेटेड टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का न्यूज़लेटर भी है, बायोफर्टिलाइजर न्यूज़लेटर भी है, जो साल के दो बार हम पब्लिश करते हैं और किसानों तक ही नहीं सभी स्टेक होल्डर्स तक वो पहुंचता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये न्यूज़लेटर उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हमारा संस्थान ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाता है। एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो किसानों के लिए किया जाता है, खेत में जहाँ पर किसान गाँव में कोई मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है उनके इन एंड अराउंड हम ये ट्रेनिंग रखते हैं और 50 किसानों को इसमें भागीदार बनाते हैं और उनको भी एक दिवसीय ट्रेनिंग में एक्सपोज किया जाता है जैविक खेती में प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण और गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो किस तरह से चलती हैं ये सारी चीज़ों के।
1: किसान की मेहनत तभी सार्थक होगी जब कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालय का पूर्ण सहयोग मिलता है। खेती में बदलाव लाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों के हित के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है ताकि किसान खेती किसानी में कुछ नया कर सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं जो किसान की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के सिंह बता रहे हैं।
3: विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD ये सब प्रोग्राम हैं और शोध कार्य है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण लेकर के अपना कोई न कोई रोजगार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों।
4: विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों के लिए काफ़ी जागरूक परक कार्यक्रम संचालित करते हैं, जैसे जिस प्रकार से हम पहले जागरूकता कैंप आयोजित करते हैं उसमें फिर जो भी किसान जिस प्रकार की खेती के लिए उत्सुक होते हैं उनके अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं। जैसे हमारा एक समूह जैविक खेती का है कि जो भी हमारे विभिन्न जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जो किसान भाई जैविक खेती के प्रशिक्षण के इच्छुक होते हैं तो उनका हम अलग से क्लस्टर बनाकर उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एक जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से हम किसानों और युवाओं का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हमने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन सबसे पहले हम जैविक खेती के कृषकों या प्रशिक्षणार्थियों को सबसे पहले ये सलाह देते हैं कि जो हमारा जैविक खेती का आधार स्तंभ है, हमारा FIM और वर्मी कंपोस्ट, उसकी जानकारी देते हैं कि उसको कैसे तैयार करें, कैसे उसको परिवर्धित करें, और उसके पश्चात चूँकि हम जैविक साधनों का ही प्रयोग कर सकते हैं तो अलग अलग चरण पर किस फसल में किस चरण पर क्या प्रयोग किया जाए उसका विस्तार से प्रशिक्षण और उनको प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की तकनीकी जानकारी देते हैं।
1: सूबे सिंह यादव एक प्रेरणा स्रोत और अग्रणी किसान बन चुके हैं जिन्होंने खेती के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। इन्होंने नवाचार तकनीकों एवं ज्ञान के साथ साथ कौशलों का प्रयोग करके खेती को एक नई ऊर्जा और प्रगति का क्षेत्र बनाया है। सूबे सिंह यादव की खेती में बदलाव का प्रमुख कारण उनकी निरंतर रुचि और उत्साह है जो उन्हें नए और उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इनसे प्रेरित होकर अन्य किसान भी खेती को नए आयाम दे रहे हैं जिससे खेती के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके।
5: हूँ से आरजे राकेश
6: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
5: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
7: तो सालो किसान भाईयो हाल ही एक नानो ब्रेक अने हामली आपड़ा झाबवा जिला मा आदिवासी समुदाय भील मा जब लाडो पहने अने तीन मा जो गीत गावे त्यू मजानु गीत हामली ने पासा भेला था हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी मा।

0: બરાબર.
1: હું છે આરજે રાકેશ
2: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
1: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. બ્રેક ના બાદ એક વખત ફેર દેખી સ્વાગત છે તમારું સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ. તો કિસાન ભાઈઓ, કાર્યક્રમ ખેતીવાડીને આગાડી વડાવી અને હામળી કાલા નમક ચાવલ અને કિસાન ઉત્પાદક સંગઠનની વિસ્તાર પૂર્વક વાત્યો.
3: मैं आदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं. हमारे इस कार्यक्रम में हम कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे किसानों और साथ ही साथ संस्थानों से आपको मिलवाते हैं. हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं. आज की हमारी इस कड़ी में एक ऐसी ही संस्था नाबार्ड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र के जो जिले हैं वहां पर विलुप्त होने की कगार पर पहुंची काला नमक की खेती को दोबारा से प्रोत्साहित करने का. जी हां, यहां पर FPO से जुड़े जितने भी किसान हैं उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा काला नमक चावल की खेती करें. और आज हाल ये है कि काला नमक चावल की जो खुशबू है वो देश विदेश तक पहुंच रही है. और इसी FPO से जुड़े हुए हैं रामचेत चौधरी जी, जिन्होंने इस कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. तो फिर आइए इन्हीं के सफर को जानने के लिए, काला नमक चावल की खुशबू को पहचानने के लिए और इसकी खेती की महत्ता को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का.
4: काला नमक चावल, जी हाँ, काला नमक धान से निकला काला नमक चावल. बात काला नमक धान की हो तो इस विशिष्ट धान के बारे में भी जानना जरूरी है. काला नमक चावल एक सर्वश्रेष्ठ सुगंधित एवं पौष्टिक गुणों वाला चावल है, जिसकी खेती पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश में की जाती है. इसकी खेती का लिखित इतिहास करीब 3000 वर्ष पुराना है. काला नमक का इतिहास भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में प्रारंभ होता है. उस समय से अभी तक इस काला नमक धान की खेती नेपाल से सटे इस तराई इलाके में होती आ रही है. उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है, लेकिन आज यहाँ का इलाका काला नमक चावल की खेती के लिए भी मशहूर है. उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में काला नमक चावल की खेती की जाती थी, लेकिन कम उत्पादन के कारण किसानों से इसकी खेती करने से मुंह मोड़ लिया था, जिससे इसकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी. भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में जान जाने वाला काला नमक चावल की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिक रामचेत जी के नेतृत्व में चल रहे किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से नाबार्ड ने एक परियोजना चलाई, जिससे काला नमक धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. नाबार्ड द्वारा प्रायोजित PRDF की कोशिश के चलते काला नमक की खेती के लिए चलाई जा रही परियोजना सफल हो रही है. आज परियोजना से जुड़े 100 किसान 100 एकड़ में काला नमक की खेती कर रहे हैं. इस बारे में जानते हैं रामचेत जी से ही.
5: पहले किसानों को 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया कि आखिर रासायनिक खेती जो अभी तक करते आ रहे हैं उसके क्या नुकसान हैं. उनको प्रशिक्षित किया गया कि किस तरह से वो जो जीवामृत निमास्त्र ये सारी चीज़ें अपने घर पर बना सकते हैं, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से और बेसन और गुड़ से. वो भी आपको उनको जो है वो बताया गया. तो ये किसान प्रभावित हुए हैं और उनको दो फसल, ये जो क्षेत्र है यहाँ का कुशीनगर जिले का, ये धान और गेहूँ का क्षेत्र है. तो धान में हमने जो काला नमक की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है काला नमक किरण, उसका बीज दिया. गेहूँ में रबी के मौसम में जो यहाँ की सबसे अच्छी गेहूँ की है पूसा संस्थान की, वो है HD 2967 इसका बीज दिया गया. और ये खेती लोग लगातार करते आ रहे हैं. तो 100 गांवों के 100 किसान जो 100 एकड़ खेत में ये चार गांवों के जो किसान हैं, ये इसकी खेती कर रहे हैं।
4: कुशीनगर में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग कर खेती कर रहे किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर मुड़ना इतना आसान नहीं था। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए किसानों को फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद से किसान जैविक खेती की ओर मुड़े और आज ये प्रशिक्षण के बाद जैविक खेती करते हुए काला नमक धान की खेती करते हुए लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित PRDF के प्रयास से कुशीनगर में काला नमक की खेती से किसानों की आमदनी दोगुनी तिगुनी हुई है। किसानों को मालूम हो चुका है कि जैविक खेती से आमदनी और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी होती है। नाबार्ड का प्रयास सफल रहा है।
5: खरीफ के मौसम में काला नमक धान की एक प्रजाति है, काला नमक किरण, और गेहूँ की एक प्रजाति

0: थे जो रबी मौसम में कर रहे हैं HD 2367, तो इनके लाभ इनको मिल रहे हैं और इनको प्रशिक्षित किया गया है। और कोई भी ये उपादान या इनपुट जिसको कहते हैं, ये बाजार से नहीं खरीद रहे हैं, अपने घर पर ये लोग बनाते हैं, चाहे वो पोषक तत्व देने वाले जीवामृत हों या जो कीड़ों बीमारियों से बचाने के लिए सारे हैं, सब घर पर बनाते हैं। तो इनको इसी तरह इनकी लागत कम होती है, क्योंकि उनको बाज़ार से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। परियोजना के तहत इनको बीज भी दिया जा रहा है, तो एक तरह से कहिए कि लागत इनकी खाली मेहनत और इनके खेत की है, दूसरी कोई लागत इनकी नहीं है। जहाँ तक लाभ की बात करें तो इनका जितना भी उत्पाद है, पहले तो ये लोग स्वयं अपने परिवार को खिलाते हैं, और जो भी कुछ मार्केटेबल सरप्लस है या बाजार में बेचने के लिए, उनका सब का सब बिकवा दिया जाता है। अभी काला नमक की फसल इनकी कटी है और सारा का सारा उत्पाद इनका बिक चुका, खरीदा जा चुका, या जो कुछ इन्होंने अपने खाने के लिए रखा है वो रख लिए हैं।
1: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे काला नमक चावल उत्पादक किसानों को मिलने वाले जैविक प्रमाण पत्र के बारे में, और साथ ही साथ इन किसानों के अनुभवों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब जानते हैं कि काला नमक चावल उत्पादक किसानों को जैविक प्रमाण पत्र जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है और उसके लाभ क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ इसकी खेती कर रहे किसानों के अनुभव भी जानने हैं। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: प्राकृतिक खेती कर काला नमक उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पाद को जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे उनके उत्पाद की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। इस प्रमाण पत्र को मिलने के बाद किसानों को कई फायदे मिलते हैं। किसानों का उत्पाद खेत तक ही सीमित न रहकर एक ब्रांड बनता है। इस बारे में बता रही है काला नमक चावल का प्रमाणीकरण उपलब्ध कराने में मदद करने वाली अंजलि साहनी।
2: मैं पीआरडीएफ संस्था जो कि रीजनल काउंसिल है पूरे पूर्वांचल में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का परीक्षण करके उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने में, जिसके माध्यम से वे बाजारीकरण करेंगे। भारत सरकार की एक योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना एवं नमामि गंगे, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में यह किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि किस तरह वो अपने खेती की जो मिट्टी मर चुकी है उसमें उसको जीवन दें और उसमें केचुए जो हम आंखों से देख सकते हैं ऐसे जीवाणुओं को उपलब्ध करें। इसके साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, नव युवक ही नहीं जो किसान है वो भी अपनी आमदनी दुगनी से तिगुनी कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारे किसान सिर्फ खेतों तक ना रहें, वो बाजार तक पहुंचे और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं हमारी संस्था की, तो हम एज ए रीजनल काउंसिल किसानों के खेत पे जो धान या चावल जो भी उत्पादन वो लगाते से किसान में अपने खेत में लगाते हैं और जो भी उनसे उपज निकल कर आती है उसके बाजारीकरण के लिए ये सामान्यतः मांगा जाता है कि ये जैविक है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है। मान लीजिए अगर मैं ही 10वीं पास हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप 10वीं पास हो, इसका क्या साक्ष्य है मेरे पास, तो मुझे अपना 10वीं का रिजल्ट दिखाना होगा। उसी तरह जब किसान से पूछा जाता है कि आपका जो जैविक उत्पाद है वो जैविक है या आप सिर्फ मुंह से कह रहे हैं, इसके लिए हमारी संस्था जो रीजनल काउंसिल है ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 साल का प्रोसेस होता है। इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष में पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेच तो सकते हैं, लेकिन ये बताते हुए कि आपका प्रोडक्ट अभी जैविक नहीं हुआ है, जैविक होने के क्रम में है। लेकिन जब आपका तृतीय वर्ष शुरू हो जाता है और वो अंतिम क्रम में आ जाता है 3 साल पूरे होने पर, तो आप अपने उत्पाद को जैविक पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से बाजार में बेच सकते हैं।
1: खेतों में लगी फसल को परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत उत्पादित जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र मिलने के बाद काला नमक चावल का बाजारीकरण बेहद आसान होता है और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। इस बारे में बता रही हैं अंजलि साहनी।
2: हमारे जो समूह हैं उनका नाम है, समूह का नाम दिया गया है पंजीकरण नंबर, कि जिसके माध्यम से आप इसकी पूरी जानकारी एवं इतिहास देख सकते हैं। उनका गांव, जनपद, समूह द्वारा उत्पादित जो उत्पाद है उसका नाम, किसान का नाम, और ये जो हमारे उत्पाद हैं 4 उत्पाद आप इसमें देख सकते हैं, गेहूं, चावल और दालें। यहाँ भी पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा हुआ है, जिसका अर्थ है कि ये पूर्ण रूप से जैविक हो गया है। 3 साल इसको पूरे हो चुके हैं और ये उत्पाद अब जैविक के होने के साथ साथ अब बाजार में बिकेगा और किसान की आमदनी दुगनी होगी। नीचे यहाँ पे कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, क्योंकि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आता है इसलिए यहाँ पर कृषि विभाग उत्तर प्रदेश और हमारी संस्था का नाम लिखा हुआ है। ये उत्पाद ऐसे बाजार में बेचा जाता है ताकि जो भी उपभोक्ता इसको खरीदे वो इसके साथ साथ इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं, और अगर किसी को इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो संपर्क सूत्र विभाग से, कृषि विभाग से या हमारी संस्था से वो प्राप्त कर सकते हैं।
1: आज के दौर में किसी भी उत्पाद की ऑनलाइन मार्केटिंग हो तो इसकी मांग में बढ़ोतरी होती है। इसे देखते हुए काला नमक चावल की मार्केटिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं पीआरडीएफ से जुड़े देवेंद्र पटेल। देवेंद्र पटेल बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर युवा अपना भविष्य बना सकते हैं और बिना पैसे लगाए सीधे उपभोक्ता से जुड़ सकते हैं।
3: हम लोग जो है कि काला नमक की मार्केटिंग करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और जो कि सरकार सपोर्ट भी करती है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, और सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि आपके प्रोडक्ट को लोग जाने। पीआरडीएफ भी जो है कि किसानों से डायरेक्ट बाय करती है और उनका जो है कि मार्केटिंग करती है, और इनके एफपीओ के थ्रू जो किसान संगठन है जो अपने एफपीओस बनाए हुए हैं उनके थ्रू भी इसका मार्केटिंग करती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसका जो है कि मार्केटिंग करते हैं, इसके वजह से आपका प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचता है, जो एंड कंज्यूमर है उनके तक पहुंचता है और वो सीधे आप उनसे जुड़ पाते हैं।
1: प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित काला नमक और दूसरे प्रोडक्ट से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। खेत की दशा और किसानों की आमदनी बेहतर हुई है। नाबार्ड की मदद को किसान बेहद उत्साहवर्धक मानते हैं। नाबार्ड की परियोजना के बारे में बताते हुए किसान कहते हैं,
4: मैं नाबार्ड से जुड़ा हूँ और इसमें मैं काला नमक खेती के बारे में मुझे अच्छी जानकारी दी गई है और मैं उसको करता हूँ विधिवत रूप से, और इसमें लागत भी कम पड़ती है, बहुत ना के बराबर है, और उसे रासायनिक चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसको काला नमक धान के ऊपर बताया गया है और मैं इसी को करता हूँ और खाता भी हूँ, इसको पूरे परिवार को भी खिलाता हूँ। और जो है कि इसके बारे में डॉक्टर चौधरी साहब के द्वारा मुझे पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि मैं ऐसे ऐसे करना है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ और उससे मुझे बहुत लाभ है और इसको आगे भी और भी बढ़ाऊँगा।
0: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कुशीनगर जैसे इलाके में काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड के क्या क्या प्रयास रहे, और साथ ही साथ नाबार्ड के अधिकारियों से जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इसकी खेती के अलावा और भी ज्यादा जो अन्य उत्पाद हैं उनकी खेती के लिए कैसे किसानों को प्रोत्साहित किया है।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आइए अब आपको बताते हैं कि कुशीनगर में नाबार्ड के क्या प्रयास रहे जिससे काला नमक चावल की खेती को यहां पर बढ़ावा दिया जा सका। आइए जानते हैं कि और कौन से उत्पाद हैं जिनकी खेती को यहां पर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
1: पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों से, किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। नाबार्ड ने भी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के नुकसान से किसानों को परिचित कराया है और उन्हें प्राकृतिक व जैविक खेती के लिए प्रेरित किया, जिससे खेत और किसानों की दशा में सुधार आया। इस बारे में कुशीनगर में कार्यरत नाबार्ड के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार यादव बताते हैं।
2: आज इस आधुनिक युग में अंधाधुंध कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है। जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ना करके हम नीमा शास्त्र अग्निशास्त्र का प्रयोग करके कीट को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई रसायन का प्रयोग हम पौधों पर करते हैं तो पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे हमारी मिट्टी भी खराब होती है, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक नीमा शास्त्र और नेचुरल जो भी हमारे पास कीटनाशक है उसका प्रयोग करें। अगर क्रॉप में फसल में किसी भी फसल में कोई अगर रोग लगता है तो उसमें हम छाछ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि छाछ में क्या होता है, ये छाछ के प्रयोग करने से जो भी रोग लगने वाला है वो उसके जो है स्पोर को एक्सेप्ट नहीं करने देता है।
1: खेतों में जैविक अनाजों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के लिए नाबार्ड लगातार प्रयास कर रही है। नाबार्ड कृषि के मामले में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। किसानों को जानकारी देने के लिए नाबार्ड के अधिकारी भी खेत तक पहुंच रहे हैं और किसानों के उपज की मार्केटिंग में भी मदद कर रहे हैं। नाबार्ड के DDM सूरज शुक्ला कहते हैं कि जल्द जैविक खेती से उत्पादित उत्पाद रासायनिक मदद से उत्पादित उत्पाद के बराबर पहुंच जाएगा। आइए इस बारे में नाबार्ड के DDM सूरज शुक्ला से ही जानते हैं।
3: अभी ये जो परियोजना है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2021 में स्वीकृत की गई थी। यह 3 वर्षों की परियोजना है जिसमें कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज ब्लॉक के 4 गांवों में 100 किसानों को चिन्हित करके और प्रति किसान 1 एकड़ यानी कि 100 एकड़ में प्राकृतिक खेती के माध्यम से धान और गेहूं के उत्पादन से जुड़ी हुई ये परियोजना है। इसमें नाबार्ड अपनी व्यय करके PRDF संस्था के साथ मिल करके ये प्रदर्शन करने का कोशिश प्रयास कर रहा है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी अच्छा उत्पादन किसान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के उत्पादन से ना केवल भूमि की ह्रास कम होगी बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव जो रसायनों का पड़ता है वो इसमें नहीं पड़ेगा। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को तमाम तरह की सहायताएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि बीज ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर विजिट अन्य संस्थाओं में, उनके एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर स्थापित किए गए हैं जो कि समय समय पर उनको गाइडेंस प्रदान करते रहते हैं कि उनको कोई अगर यदि रोग लग जाता है तो उससे कैसे डील करना है, अगर सिंचाई किस प्रकार से करनी है, किस समय कौन सा चीज़ें डालनी है खेत में, इन तमाम तरह की जो सहयोग हैं ये 3 वर्षों के लिए हैं। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से भी कम से कम 3 महीने में एक बार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि इन खेतों में किस तरह से प्रगति हो रही है। इसमें जो हमारा अनुभव है वो ये है कि प्रथम वर्ष, चूंकि ये परियोजना लगभग 3 वर्षों से चल रही है, प्रथम वर्ष जरूर कुछ जो उत्पादन में कुछ कमी थी रसायन से और प्राकृतिक खेती में शिफ्ट करने पे, लेकिन जैसे कि अभी तीसरा वर्ष चल रहा है, अब धीरे धीरे वो जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया है और हमें यह उम्मीद है कि अगले 1 वर्ष या 2 वर्षों के अंदर जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो उत्पादन है वो रासायनिक खेती के माध्यम से उत्पादन के लगभग बराबर पहुंच जाएगा। और तो इसका मतलब जो पूरा साइकिल है वो 3 से 4 वर्षों का है। यदि 3 से 4 वर्षों तक किसान प्राकृतिक खेती करते रहें तो उनको रसायनों के उत्पाद प्रयोग की जरूरत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।
1: केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए FPO यानी किसान उत्पादक संगठन की अवधारणा बनाई है। इस संगठन में सदस्य किसान ही होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों के पीछे अवधारणा ये है कि किसान जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं समूह बना सकते हैं और भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत कर खेती से जुड़ी गतिविधियां जैसे फसल उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग आदि कर सकते हैं। इसमें सरकार संगठनों की आर्थिक मदद भी करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बने इस FPO को नाबार्ड ने काला नमक चावल की प्राकृतिक खेती के लिए चुना, जिसका फायदा किसानों को हो रहा है। ऐसे में दूसरे क्षेत्र के किसान भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसान अपनी आमदनी को FPO के माध्यम से दोगुनी चौगुनी कर सकते हैं।
4: तो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आज ना खेतीबाड़ी कार्यक्रम में अपनी बात हमली सब्जियों की खेती में सफल किसान नी बात। कार्यक्रम खेतीबाड़ी नी बीजी कड़ी में अपनी बात हमली काला नमक चावल अने किसान उत्पादक संगठन केवी रीते काम करे ये बात आज अपनी कार्यक्रम में हामलियो। किसान भाइयों, हमू रोज तमारी हारू एवी असल थी असल तकनीकी खेती नी जानकारी लावी से अने आशा करी से कि हमारा झाबुआ जिला ना किसान भाई ये बड़ी बातों सांभळे अने आपड़ी खेतीवाड़ी में सुधार करे अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो किसान भाइयों, आ सारू वजे एतरी वात केम की हाउ समय थई गयो छे बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कहता हमलता रेजो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबवानी आवाज तमारा ज रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाते।
5: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।
6: आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, कई प्रोडक्शन हाउसेज हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से।
7: जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो है जो दो और दो पांच बना दे।
6: आज के कलाकार के इस बेहद बेहद खूबसूरत, बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद रोचक एपिसोड में आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरे साथ आज मेरे बहुत अच्छे मित्र कृष्ण कुमार जी मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन बेहतरीन गायक हैं, एक टैलेंट हैं। बाकी बेहतर होगा कृष्ण जी अपने बारे में खुद बताएं। तो कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
8: जी, नाम तो मेरा आपने बता ही दिया सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार बहुत।
6: जी
8: जी, मेरा पूरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा है और मुझे दोस्त लोग प्यार से के बोलते हैं।
6: जी, स्वागत है।
8: जी जी हाँ, और जो सर मैं टीचर हूँ सर एक्चुअली।
6: बहुत खूब।
8: ये बेसिक शिक्षा परिषद जो स्कूल होते हैं उत्तर प्रदेश के,
6: जी
8: उसमें मैं मिडिल क्लास में टीचर हूँ सर, गवर्नमेंट टीचर हूँ।
6: जी,
8: और झांसी में रहता हूँ सर मैं।
6: बहुत बढ़िया। हाँ, दोस्तों
8: सर प्रॉपर वीरांगना लक्ष्मीबाई नगर से।
6: बहुत बढ़िया। झांसी के बारे में दोस्तों हम सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को भला कौन नहीं जानेगा।
9: बड़ा ही खूबसूरत शहर है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मिला है झांसी को देखने का। बड़ी बहुत ही खूबसूरत परिवेश है वहां का, पत्थर पहाड़। आप भी कभी अगर मौका मिले, आज की डेट में तो गूगल बाबा है ना, उनको गूगल कर लीजिए, झांसी की परिवेश आपको दिखाई दे जाएगी। बहुत बढ़िया,
8: बिल्कुल सही।
9: तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को कृष्ण कुमार जी के ही गाए हुए इस बेहद बेहद खूबसूरत

0: प्रोग्राम को शुरू करता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं,
1: जी
0: ये गायकी का, गाना गाने का, इस प्रतिभा को, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का शौक आपको कब से हुआ?
1: सर, जहाँ तक शौक की बात है तो मुझे याद है, मैं क्लास सिक्स में था जब, सर,
0: जी
1: तो एक स्कूल के फंक्शन में मैंने गाया था सबसे पहले।
0: जी
1: हाँ, सिक्स में था क्लास में, तो उस समय मैंने स्कूल के फंक्शन में गाया, तो उस समय मुझे वहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे, डॉक्टर चौधरी, मुझे याद आ रहा है,
0: जी
1: तो उन्होंने तुरंत अपने जिसको भी बोला हो मेरे लिए एक पेन सेट मंगाया उन्होंने, बड़ा खूबसूरत था।
0: ओहो
1: हाँ, और मुझे वो गिफ्ट में दिया गया, तभी से मेरे को बहुत अच्छे से याद है, तभी से थोड़ा सा गाने गाने का और शौक बढ़ा, उसके बाद फिर बढ़ता ही चला गया होगा, पता नहीं, अभी तक मैं गा रहा हूँ,
0: वाह,
1: शौक तभी से है गाने का सर।
0: बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात कही कृष्ण जी। आप तो वैसे भी कलम के योद्धा हैं, आप अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, नए बच्चों को कलम पकड़ना सिखाते हैं, उन्हें सिखाते हैं कलम में कितनी ताकत होती है, और उस दिन उन महानुभाव ने आपको कलम ही गिफ्ट की, कलम का ही
1: हाँ जी जी जी
0: आशीर्वाद दिया,
1: बिल्कुल,
0: और
1: हाँ
0: बस वो
1: जी जी
0: आशीर्वाद
1: हाँ
0: आपको इतना प्यारा लगा कि आप संगीत की इस रास्ते पर, इस यात्रा पर निकल पड़े। क्या कहा
1: हाँ
0: जाए
1: जी
0: साहब, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, बहुत ही प्यारी सोच, बहुत ही प्यारी मोटिवेशन आपको मिला उनसे, बहुत बहुत
1: हाँ बिल्कुल
0: शुक्रिया।
1: सर, बिल्कुल सही है, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं आगे जाकर टीचर बन जाऊंगा।
0: बताइए तो साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जो मैं उन महानुभाव को ही डेडिकेट करना चाहूंगा जिन्होंने कृष्ण कुमार जी की जिंदगी में गायकी की ज्योत जलाई। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी गायकी। कृष्ण जी
1: जी,
0: मुझे बताएं, आप बहुत सारी कलाएं सीखना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले, या फिर किसी एक कला में महारत हासिल करना चाहेंगे? कहते हैं ना, गलत कुछ भी नहीं है, एक्सपर्ट ऑफ वन और जैक ऑफ ऑल, वो वाली जो बात होती है कि आप सब सीखना चाहेंगे या किसी एक कला में महारत हासिल करना चाहेंगे, और वो कला कौन सी होगी अगर ऐसा हो तो?
1: हाँ जी, देखिए सर, कला में महारत हासिल करने के लिए तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है,
0: जी
1: है ना। तो वैसे भी मेरा सिंगिंग का शौक ही है, एक ही शौक है मेरा,
0: जी
1: और दूसरा टीचिंग का सर,
0: जी
1: एक टीचिंग भी एक कला है सर।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: तो अभी हाँ, और ये सिंगिंग तो बचपन से मतलब कर पाया जितना कर पाया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के इस दौर में ये दोनों को कर पाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। अभी तक सीख ही रहा हूँ सर, इन दोनों कलाओं को पूरा नहीं कर पाया हूँ। तो मैं सिंगिंग ही सीखना चाहूंगा सर।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। दोस्तों आपने सुना, कृष्ण कुमार जी सिंगिंग को ही और शार्प करना चाहेंगे और बेहतरीन बनाना चाहेंगे, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे उसको सीखने के लिए। बड़ी ही प्यारी बात, दोनों ही बातें सही होती हैं। बहुत सारी चीजों की जानकारी कई बार कंफ्यूज भी कर देती है, और किसी एक कला के पीछे शिद्दत से, बहुत ही प्रतिज्ञा से लग जाना भी अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है। तो कृष्ण कुमार जी ने चुना है कि वो महारत हासिल करना चाहेंगे गायकी में, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और हो जाए फिर एक प्यारा सा गीत कृष्ण कुमार जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी गायकी कृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण जी, आपको संगीत में क्या पसंद है? गाने पसंद हैं, मतलब गाने मतलब फिल्मी होना चाहिए या नॉन फिल्मी भी चलेंगे, या कुछ गजल्स, कुछ भजन, शास्त्रीय संगीत, या क्या, कौन सी विधा आपको सबसे ज्यादा पसंद है संगीत में?
1: संगीत में तो सर वैसे मेरे ख्याल से जो मुझे पसंद है,
0: जी
1: जिस भी गाना कोई भी हो, सॉन्ग हो, म्यूजिक हो, जिसमें कानों को बिल्कुल कानों में जो रस घोल दे,
0: ओहो,
1: है ना, और हाँ बिल्कुल कानों में जो रस घोल दे, जिसका म्यूजिक बहुत ही प्यारा हो, वही मुझे पसंद है सर। चाहे वो नॉन फिल्मी हो, फिल्मी हो, गजल हो, कुछ भी हो सर, मुझे सभी पसंद है। बस संगीत अच्छा होना चाहिए, बोल अच्छे होने चाहिए, तभी मैं सुनता हूँ सर। और ये मेरे को जो क्या बोलते ना, वो म्यूजिक जो बहुत ज्यादा हड़बड़ वाली, वो पसंद नहीं है
0: मेरे ख्याल से
1: हाँ
0: अगर मैं
1: मुझे, हाँ
0: जी
1: बोलिए सर।
0: मुझे जो अंदाजा लग पा रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो रैप म्यूजिक होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब बिना उतार चढ़ाव के जो चलता रहता है, शायद उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कृष्णा जी?
1: हाँ जी सर, वो मेरे को पसंद नहीं है। और वैसे भी जो मतलब बहुत ज्यादा जो शोरगुल वाले गाने होते हैं,
0: जी
1: हाँ जिसका रिदम बहुत तेज होता है, तो वो मेरे को कम पसंद आता है सर।
0: बहुत खूब
1: हाँ
0: दोस्तों
1: बाकी कोई
0: जी,
1: नॉन फिल्मी हो, फिल्मी मुझे सब पसंद है सर, लेकिन बस जो कानों को कर्ण को ये होना चाहिए सर वो।
0: बहुत खूब कहा आपने साहब, बिल्कुल सही। संगीत की वैसे भी कोई भाषा नहीं होती।
1: जी
0: हमारा
1: सर,
0: जो आज के कलाकार रीजनल प्रोग्राम चलता है, जिसमें हमारे देश की सभी रेस्पेक्टेड भाषाओं में संगीत आ रहा है, हमारे कलाकार आ रहे हैं, कई बार कई का कई बार क्या करीब करीब सारी ही बार हमें भाषा समझ नहीं आती, लेकिन
1: जी
0: वो
1: सर,
0: संगीत इतना मैस्मराइजिंग होता है, इतना सम्मोहित होता है कि हम बस उस गीत
1: जी
0: को
1: सर,
0: या उस म्यूजिक को सुनते रहते हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: भाषा से
1: बिल्कुल
0: कोई
1: सही
0: लेना देना
1: बोला,
0: नहीं, शब्दों से
1: जी
0: कोई
1: जी
0: लेना देना नहीं, लेकिन वो
1: जी सर,
0: संगीत ही इतना प्यारा होता है। बड़ी
1: जी सर,
0: प्यारी बात कही साहब आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों चलिए इस प्यारी बात पर एक प्यारा सा गीत सुनते हैं कृष्ण कुमार जी की ही आवाज में।

0: कृष्ण जी, आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा त्योहार है हमारे देश का, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, कौन सा फेस्टिवल है?
1: सर, वैसे फेस्टिवल तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं। वैसे हमारे जो हिंदू धर्म का त्योहार जो दीपावली है सर,
0: जी,
1: अब वो मुझे सबसे प्यारा लगता है।
0: जी
1: और इसकी एक कारण ये भी है कि सर, ये माँ लक्ष्मी जी से पूजन से संबंधित है,
0: जी
1: तो इसकी तैयारी बहुत पहले से ही होती है। घर में बड़ा अच्छा माहौल होता है सर, और इसकी तैयारियों के लिए सर क्या बोले हैं?
0: जी
1: क्या वो सैलरी भी बहुत खर्च होती है। सबके लिए नए नए कपड़े लाना, सब चीजें होते हैं के लिए, और घर की जो ये और भी चीजें होती हैं दीपावली पे हम लोग खरीदते हैं।
0: जी जी जी
1: हाँ, तो उसकी तैयारी के लिए एक अलग ही जुनून सा रहता है,
0: बिल्कुल
1: वो पसंद है। और ये क्या है सर, प्रकाश का पर्व है, सभी जानते हैं,
0: जी
1: हम आप सभी जानते हैं प्रकाश का पर्व है। वर्ष में एक बार इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक और उम्मीद की जाती है माँ लक्ष्मी से, उनसे हम मांगते हैं कि सर सबके जीवन में, किसी के जीवन में अंधेरा ना हो, प्रकाश रहे। और ये पैसा, माँ लक्ष्मी जो पैसा है, ये दुनिया उसी से चलती है, तो उसी की हम आराधना करते हैं, उसके लिए, माँ लक्ष्मी की। तो
0: जी
1: ये त्योहार इसीलिए मुझे पसंद है सर।
0: बहुत प्यारी बात कही साहब, बहुत प्यारी बात कही। मैं बिल्कुल मानता हूं, ये रोशनी का त्योहार है, ये खुशहाली का त्योहार है, सभी के मन में उमंग होती है। हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में और ज्यादा समृद्धि आए।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: पूरे साल हम इंतजार करते हैं नए कपड़े या जो कुछ भी, एक खुशी का, उल्लास का माहौल होता है, वो होता ही है, करीब करीब सभी त्योहारों में है। लेकिन ठीक है, दिवाली की बात थोड़ी सी अलग है। बहुत बहुत खूब कहा साहब, बहुत खूब कहा कृष्ण जी।
1: जी सर।
0: तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हुए ऐसा ही जगमगाता हुआ, ऐसा ही रोशन करता हुआ ये गीत सुनते हैं कृष्ण जी की आवाज में।

0: बहुत सुंदर। कृष्ण जी, आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है भला बताइए, और क्यों?
1: अरे सर, ये तो आपने सवाल थोड़ा सा, क्या बोलूं सर,
0: पर्सनल पर्सनल हो गया।
1: नहीं सर, ऐसी आज की ये क्या है भागदौड़ की जिंदगी में सर
0: जी,
1: है ना, पत्नी जो बना के दे देना
0: ओहो
1: पसंदीदा बन जाता है सर।
0: जी जी जी, फिर भी कभी तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते होंगे कि भगवती आज ये बनवा दो।
1: हाँ सर, मुझे पता, वैसे मीठी मीठी चीज ज्यादा पसंद है थोड़ी सी, जिससे मैं मीठा बोलता रहूं और मेरे वाणी से रस टपकता रहे, तो मैं मीठा मीठा थोड़ा सा पसंद करता हूँ। जैसे खीर के लिए उनको बोलता हूँ कि खीर बना दीजिए, तो या फिर मिठाई में जैसे उनने कहा आज रस मलाई लेके आना यार,
0: खाते हैं क्या बात।
1: ये थोड़ी सर एक दो चीजें हैं, और ज्यादा तो आज सभी भोजन तो भोजन होता है सर,
0: बिल्कुल सही फरमाया,
1: भोजन पसंद है सर। हाँ, बाकी आज का जो है पत्नी हमारी जो बना के देती है वो मेरा पसंदीदा बन जाता है
0: जी, बिल्कुल सही है सर, आपने हमारे दिल की बात कही। हमारे क्या, मुझे लगता है इस संसार के सभी जो मर्द हैं उनके दिल की बात कही है आपने, कि
1: जी।
0: भगवती जो पका दे बस हमें वही पसंद है,
1: बेहतर है उनके। हाँ,
0: क्योंकि वो पूछने चलेंगी कि साहब दाल बना दूं, तो आप कहेंगे दाल बना दीजिए तो कली बनी थी, छोले बना दूं तो छोले तो गैस बनाते हैं, गोभी बना दूं तो गोभी आजकल अच्छी आती नहीं है, आलू टमाटर तो आलू टमाटर भी भला कोई सब्जी हुई, सब्जी में सब्जी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली ये होता कि भगवती जो तुम्हारी इच्छा वही बना दो, हम वही खा लेंगे।
1: जी जी सर,
0: जी तुम हमेशा उन्हीं की होनी है। तो चलिए, खाने पीने की इस मानसिकता, इस प्यार, इसी छेड़छाड़ के नाम ये गीत सुनते हैं, कृष्ण जी की आवाज में ही गाया हुआ।

0: बड़ी ही सुंदर गायकी साहब, बड़ी ही सुंदर गायकी। कृष्ण जी मुझे ऐसा बताइए कि क्या ऐसी कोई जगह है आपके सोच में है, दिमाग में है, जहां आप कभी ना कभी ट्रैवल करके यात्रा करके जाना चाहेंगे? कौन सी जगह है ऐसी?
1: सर अब क्या बोलूं सर इस संबंध में। वैसे मेरा कश्मीर का मन है बस जाने का,
0: ओहो जी
1: अभी तक मैं गया नहीं सर वहां पर, लेकिन बस क्या बोलते हैं टीवी में ही देखा है मैंने।
0: जी
1: हाँ मैं गया तो हूँ, पटनी टॉप तक गया हूँ।
0: जी जी जी जी
1: हाँ पटनी टॉप तक गया हूँ मैं। वहाँ वहाँ की वादियों में मैंने गाया भी है, आवाज गूंजती है वहाँ।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: हाँ,
0: बड़ी
1: तो
0: सुंदर
1: मैं
0: बात कही साहब।
1: हाँ इतना अच्छा पेड़ था वहाँ पर एक, तो मैं उसकी डाली पर ऐसे लेट गया और
0: ओहो
1: वो गाना गाया मैंने, तो आवाज टकरा के आ रही थी।
0: आहा क्या
1: हाँ
0: बात
1: तो
0: है,
1: वहां
0: क्या
1: पर
0: बात है।
1: और भी लोग घूम रहे थे, तो बोले बंस मोर बंस मोर।
0: ओ
1: याद आ गया मेरे को सर,
0: अरे
1: तो
0: वाह,
1: मैं वहीं पर फिर से जाना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ की वादियों की खूबसूरतियां सर, प्राकृतिक सुंदरता, तो बहुत प्राकृतिक सुंदरता होती है सर,
0: जी बिल्कुल सही
1: भगवान की
0: फरमाया
1: बनाई हुई। तो ऐसी ही जगह जहाँ पर शांति मिले मन को सर, मैं वहीं जाना चाहूंगा,
0: भाई, बहुत
1: कोई भी जगह हो
0: खूबसूरत,
1: सर। हाँ
0: बड़ी खूबसूरत बात कही साहब आपने। कृष्ण जी मैं भीमताल में रहता हूँ, ये भी चारों तरफ पहाड़ हैं, नैनीताल है, खूबसूरत जगह है।
1: अरे वाह वाह वाह
0: कभी
1: सर,
0: आपको मौका मिले आपका स्वागत है, आइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सब ये बिल्कुल
0: मैं झील के किनारे बिल्कुल सन्नाटे में बैठ के आपका गीत सुनना चाहूंगा साहब, जैसे वो गूंजा उन वादियों में, यहां भी गूंजवाइए जरा,
1: बिल्कुल बिल्कुल सर
0: आइए
1: बिल्कुल।
0: आपका स्वागत
1: हाँ
0: है।
1: जी सर, ओके
0: तो चलिए दोस्तों
1: सर,
0: आगे बढ़ते हुए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं कृष्ण जी की आवाज में।

0: बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर गायकी। तो कृष्ण जी मुझे ये बताइए कि ऐसा कोई गीत, कोई गाना, कोई नगमा, कोई ऐसा रचना है जो आपकी पर्सनालिटी पर पूरी तरीके से सूट करती हो? मतलब हम उस गीत को सुने तो हमें याद आ जाए कि आहा, ये तो कृष्ण कुमार जी हैं। ऐसा कोई गीत है आपके जहन में?
1: गीत तो बहुत सारे पसंद है मुझे।
0: आपको पसंद वाली बात अलग हो गई, आपके ऊपर सूट करने वाला जी।
1: ये तो सर बड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे।
0: कोशिश कीजिए, अध्यापक हैं आप।
1: नहीं तो हाँ सर, देखिए जी, मैं अगर अपनी जिंदगी से रिलेटेड कहूँ
0: जी,
1: तो मेरे को एक गाना बहुत अच्छा लगता है जो मैं शुरू से गाते रहता था उसको
0: जी।
1: हालांकि वो किशोर दा का है सर, एक रास्ता है जिंदगी,
0: ओहो
1: तो कुछ नहीं।
0: बहुत खूब,
1: ये गीत मुझे बहुत पसंद है सर।
0: बड़ा ही प्यारा
1: ये मेरी जिंदगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है अपने जीवन में
0: जी,
1: तो यही महसूस किया है कि एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: ओहो, बड़ी ही सुंदर गायकी थी साहब इसकी, और बहुत ही सुंदर संदेश था इसका। बड़ी ही प्यारी बात कही आपने साहब। तो दोस्तों आपने सुना कि कौन सा ऐसा गीत है जो कृष्ण कुमार जी की पर्सनालिटी पर, शख्सियत पर सूट करता है, फिट होता है। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं कृष्ण कुमार जी की आवाज में।

0: बहुत खूब, बड़ा ही प्यारा संगीत, बहुत ही प्यारी गायकी। कृष्ण जी, हमारे सुनने वालों के लिए, आपके ऑडियंस के लिए, आपके प्रशंसकों के लिए और जो नए सिंगर्स हैं उन सब के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: हाँ जी सर, सुनने वालों से ही और अच्छा गाने की प्रेरणा मिलती है सर। अगर
0: जी
1: सुनने वाले हैं, हमें सुनने वाले हैं तो उनसे और हमें मैं तो प्रेरणा लेता हूँ, मतलब सुनने वालों को और दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैं, और अच्छा गाने की कोशिश करता हूँ, है ना, जिससे मेरे मेरी गायकी के वो अच्छे से आनंद ले सकें, उनको अच्छा लगे, तो उनसे मैं प्रेरित होता हूँ सुनने वालों से सर,
0: जी
1: और उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें ढेर सारी खुशियां दे, वो स्वस्थ रहें।
0: जी, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए साहब, कृष्ण जी हम सब के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। बड़ी ही प्यारी बात। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
2: तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।
3: नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रभु

0: अभी तक आपने जो कुछ भी बताया ना, मुझे तो उसमें सारा अध्यात्म, सारी स्पिरिचुअलिटी सुनाई दे रही है, आपकी कसम। देखिए ना, आपने म्यूजिक की बात करी, आपने उस यूनिवर्सिटी की बात करी या शायद उस कॉलेज की बात करी जहां पर आप इंडियन सिस्टम्स पढ़ाने के लिए उसको पूरा एस्टैब्लिश किया आपने। फिर आपने बात करी उस संस्था की जहां पर आप संगीत सिखा रहे हैं, जो कि शुद्ध स्वर है, बिल्कुल शुद्ध स्वर। अब हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते भी हैं कि म्यूजिक या संगीत अपने आप में ही एक मेडिटेशन है, आध्यात्म है, क्योंकि जब व्यक्ति संगीत से जुड़ जाता है तो फिर वो गलत सोच ही नहीं पाता ना। तो जब गलत नहीं सोच पाता तो आदमी शुद्ध हो गया ना, व्यक्ति शुद्ध हो गया।
1: सही है,
0: वही तो स्पिरिचुअलिटी है, हम उसी के बारे में तो आज बात करने वाले थे। तो आप ही ने मुझे इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए कि मैं उन्हीं के ऊपर आपसे घंटों बात करता रह सकता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपने अभी कहा कि आप कुछ टॉक्स देते हैं इंडियन ईथोस के ऊपर, एम आई राइट सर, है ना?
1: यस, सही।
0: उसमें जो आपने दो तीन सब्जेक्ट्स के नाम लिए, मैं पर्सनली आपसे मतलब रादर मैं ये टॉक्स जरूर अटेंड करना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं इस वक्त पूरी जो हमारे सुनने वाली जनता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर मेरे मन में कोई एक प्रॉब्लम है तो हो सकता है हमारे सुनने वालों के मन में भी हो, तो वो चीज अगर हम यहां बात कर लेंगे तो उनके लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी, मेरे लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी।
1: सही बात है।
0: चलिए अभी तो हम लोग टच करते हैं अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को। तो जितना आपने बताया सुरेश सर, उसी के हिसाब से, आपके हिसाब से अध्यात्म की परिभाषा क्या है?
1: तो आप इस वाक्य को ही ले लीजिए, अध्यात्म, इसको अगर दो भाग करेंगे, एक तो अध्य और दूसरा आत्मा। जो अध्य उसका मतलब होता है फर्स्ट, आत्मा जो अपना इनर सेल्फ है, जो अपना इनर सेल्फ है, जो अपनी अंतरात्मा है, जिसको अंतरात्मा कहते हैं हिंदी में, साधारण लैंग्वेज में हम कहते हैं अंतरात्मा कहते हैं। तो द इनर सेल्फ, जिसकी वजह से मैं हर चीज अपने जीवन में महसूस कर पाता हूं। यदि वो जीवन का जो इनर सेल्फ, वो जो इनर सेल्फ है अगर नहीं होता तो मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता हूं। मेरे हाथ हैं लेकिन मैं किसी को छू नहीं सकता हूँ, मेरी जीवा है लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ, मेरा नाक है लेकिन मैं कुछ सूंघ नहीं सकता हूँ। मतलब द कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ विच वी आर अलाइव इज माई इनर सेल्फ, ये हुआ आत्मा। और जो अध्य फाउंडेशन फर्स्ट, उसको एक्चुअली कहा जाता है फर्स्ट है, जो फर्स्ट इज ऑलवेज द फाउंडेशन, तो उसके बगैर मैं हूं ही नहीं। तो जिसके बगैर मैं नहीं हूं, मैं रह के भी मैं नहीं हूं, दैट इज अध्यात्म। तो उसका, उसकी जानकारी यदि ना हो तो जीवन जी के क्या लाभ। तो उसका जानना जरूरी है कि मैं क्या हूं, हु एम आई, एक सवाल, सिंपल सा सवाल है, मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है। हम लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैं, आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हो, मैं कहूंगा मैं सुरेश सुब्रमण्यन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये फलाना करता हूं, डिम का, ये मेरा विजिटिंग कार्ड हुआ। लेकिन ये मैं नहीं हूं, मैं इसके अंदर हूं। उसको जानने के लिए अगर मैंने चेष्टा ही नहीं की तो इस जीवन का क्या लाभ। तो दिस इज अध्यात्म मेरे हिसाब से।
0: बहुत बहुत सुंदर सुरेश सर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेरे मन के ही सारी बातें कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप सिर्फ मेरे लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी कसम। द वेरी फर्स्ट थिंग, जितना मैं समझा था, जितने भी मैंने लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को सुना, जैसे मीना मैम ऑफकोर्स, संजीवनी जी हैं, बहुत सारे लोगों को सुना मैंने, तो टाइम एंड अगेन अध्यात्म की जो डेफिनेशन निकल निकल के आ रही थी वो यही थी कि अपनी आत्मा का अध्ययन। वी नीड टू यू नो लर्न अबाउट अवर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद बात करें ना। तो वही चीज आपने बहुत खूबसूरती से कुछ अलग शब्दों में हमें बताई, लेकिन मुद्दा यही है कि हम अपने आप को तो पहचाने। सेकेंड, बहुत बहुत ही मजेदार बात कही आपको आपने, जिस वजह से मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूं, आई एम हाईली हाईली इंप्रेस्ड। सर, काफी समय पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, द आई फैक्टर, वैन मूडी एक प्रीचर हैं, उन्होंने ये बुक लिखी थी, द आई फैक्टर। मैं इस बुक के टाइटल से अट्रैक्ट हो गया था। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ये

ई फैक्टर क्या चीज है, और जाहिर सी बात है आपने जो बात कही ना प्रिसाइसली बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड उसमें ये चीज लिखी हुई थी, और इसके बाद मैंने उसको अपनाया। सालों साल गुजर चुके हैं, मैं लोगों को छेड़ने के लिए पूछता भी हूं, लेकिन आज आप में मुझे पहला व्यक्ति मिला है जिसको एक्चुअली उसका मतलब पता है। वो ये कि जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो, तो आप बोलते हो कि आप सुरेश सुब्रमण्यम साहब हो, चार्टर्ड

0: यही एक गलत क्या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है. तो जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा, तो मैं कौन हूं, अभी इसमें दो फ्रेजेस के साथ में, इंग्लिश के फ्रेजेस के साथ में आपको इसकी इसका एक कुछ रिलेट कर पाऊंगा मैं. इफ यू से आई थिंक सो आई एम, आई थिंक सो आई एम, अभी इसको रिवर्स कीजिए, आई एम सो आई थिंक.
1: ओके,
0: थिंकिंग इज एन एबिलिटी, मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, मतलब वैसे प्राणी है और उसमें बुद्धि है, तो बुद्धि के हिसाब से वो सोच सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, ये सोच सकता है. लेकिन मैन इस वो है, तो आई एम सो आई थिंक, मैं हूं तभी तो मैं सोच पाता हूं. क्या मैं सोचने की वजह से मैं हूं? अक्सर लोगों में यही

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल के प्रोग्राम में दोस्तों मैं आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है सुरेश सुब्रमण्यम सर। बाकी जाहिर से बात है मैं सुरेश सुब्रमण्यम सर से ही प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन है वो।
2: नमस्कार समीर जी, आपको और आपके जो श्रोता हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं बंबई में हूं और आई एम 64। बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लगभग अभी क्वालिफाई किए हुए आज समझ लीजिए कितने 45 साल हो गए। 45 साल नहीं, सॉरी, अबाउट 42 इयर्स। और लगभग 33-34 साल तक मैं सीए का प्रैक्टिस करता रहा और लगभग समझ लीजिए अभी आज एक 10-11 साल पहले मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उतरा फॉर चिन्मया मिशन। तो चिन्मया विश्वविद्यापीठ करके एक यूनिवर्सिटी था जिसके आइडिया से लेकर उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लाके उसमें जो इनिशियली जो लोग टॉप लीडरशिप बैठाना था वो सब करने के बाद में मैं वहां से निकल पड़ा। और पिछले अभी 8 सालों से मैं अपना एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ जिसका नाम है शुक्त स्वरा करके एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ। शुक्त इन मराठी मीन्स शुद्ध, स्वर जो हम बोलते हैं, जो गाते हैं। तो मेरा पूरा ध्येय यही है कि जो हम करते हैं, जो हम बात करते हैं, जो हम गाना गाते हैं वो शुद्ध हो। तो इस प्लान से ये एक प्लेटफॉर्म बनाया था शुक्त स्वरा। और ये एक मेरे एक पिताजी के नाम पे एक फाउंडेशन बनाई है मैंने, जो चैरिटेबल फाउंडेशन है उसी के अंदर है। जो आज पिछले 8 साल से मैं जो भी कर रहा हूँ सारा का सारा उसी फाउंडेशन में है। इट इज ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एट लार्ज। और अभी फिलहाल में अगर मैं क्या कर रहा हूँ बताऊं तो मैं लोगों को गाना सिखाता हूँ एक इसी प्लेटफॉर्म में। मैं लगभग अभी तक 250-300 स्टूडेंट्स मुझसे सीख चुके हैं और रेगुलर मेरे क्लासेस चलते हैं हफ्ते में, मंथली एक बार तो स्टूडेंट्स का एक शो होता है। और मतलब समझ लीजिए साल में 10-12 शोज तो हमारे होते हैं, म्यूजिक शोज होते हैं। और उसके अलावा मैं कॉलेजेस में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स से बच्चों को, मतलब बच्चे मतलब 18 साल से 20 साल के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाउ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कैन इम्पैक्ट देयर लाइफ, अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए कैसे वो काम आएगा,

0: इसके लिए एक कोर्स चलाता हूँ विच इज कॉल्ड इंडियन इथोस इन प्रैक्टिस. और इसके अलावा एडल्ट्स के लिए मैं रेगुलरली टॉक्स करता हूँ. हर महीने एक टॉक सेशन मेरा चलता है विच इज कॉल्ड वॉक द टॉक सीरीज. और इसमें जैसे कोई भी टॉपिक हो जिसमें हमें रुचि हो या फिर किसी में किसी की शंका हो उसको लेके चलते हैं. जैसे डर है या फिर गुस्सा है, एंगर है. अभी हाल फिलहाल में मन की तीन क्वालिटीज उसको लेके एक टॉक लिया था. तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में जो जीवन में हमें काम आएगा, जो हमसे जीवन साक्षात कर जीवन को अच्छा हम कर सकते हैं उसके लिए कुछ टॉक्स है वो करता हूँ. सो दिस इज माई लाइफ टूडे इन मुंबई.
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा साधुवाद, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, शुक्रिया है आपका सुरेश सर. अभी तक आपने जो कुछ भी बताया ना, मुझे तो उसमें सारा अध्यात्म, सारी स्पिरिचुअलिटी सुनाई दे रही है आपकी कसम. देखिए ना, आपने म्यूजिक की बात करी, आपने उस यूनिवर्सिटी की बात करी या शायद उस कॉलेज की बात करी जहां पर आप इंडियन सिस्टम्स पढ़ाने के लिए उसको पूरा एस्टैब्लिश किया आपने. फिर आपने बात करी उस संस्था की जहां पर आप संगीत सिखा रहे हैं जो कि शुद्ध स्वर है, बिल्कुल शुद्ध स्वर. अब हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते भी हैं कि म्यूजिक या संगीत अपने आप में ही एक मेडिटेशन है, आध्यात्म है. क्योंकि जब व्यक्ति संगीत से जुड़ जाता है तो फिर वो गलत सोच ही नहीं पाता ना. तो जब गलत नहीं सोच पाता तो आदमी शुद्ध हो गया ना, व्यक्ति शुद्ध हो गया.
0: सही है,
1: वही तो स्पिरिचुअलिटी है. हम उसी के बारे में तो आज बात करने वाले थे. तो आप ही ने मुझे इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए कि मैं उन्हीं के ऊपर आपसे घंटों बात करता रह सकता हूं. बहुत खूब, बहुत खूब. और आपने अभी कहा कि आप कुछ टॉक्स देते हैं इंडियन ईथोस के ऊपर, एम आई राइट सर, है ना?
0: यस यस यस, सही है.
1: उसमें जो आपने दो तीन सब्जेक्ट्स के नाम लिए, मैं पर्सनली आपसे मतलब रादर मैं ये टॉक्स जरूर अटेंड करना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा. क्योंकि अगर मैं इस वक्त पूरी जो हमारे सुनने वाली जनता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर मेरे मन में कोई एक प्रॉब्लम है तो हो सकता है हमारे सुनने वालों के मन में भी हो. तो वो चीज अगर हम यहां बात कर लेंगे तो उनके लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी, मेरे लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी.
0: सही बात है, सही बात है, सही बात.
1: चलिए अभी तो हम लोग टच करते हैं अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को. तो जितना आपने बताया सुरेश सर, उसी के हिसाब से, आपके हिसाब से अध्यात्म की परिभाषा क्या है?
0: तो आप इस वाक्य को ही ले लीजिए, अध्यात्म. इसको अगर दो भाग करेंगे, एक तो अध्या और दूसरा आत्मा. जो अध्या उसका मतलब होता है फर्स्ट, आत्मा जो अपना इनर सेल्फ है, जो अपना इनर सेल्फ है, जो अपनी अंतरात्मा है, जिसको अंतरात्मा कहते हैं हिंदी में, साधारण लैंग्वेज में हम कहते हैं अंतरात्मा कहते हैं. तो द इनर सेल्फ, जिसकी वजह से मैं हर चीज अपने जीवन में महसूस कर पाता हूं. यदि वो जीवन का जो इनर सेल्फ, वो जो इनर सेल्फ है अगर नहीं होता तो मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता हूं. मेरे हाथ हैं लेकिन मैं किसी को छू नहीं सकता हूँ. मेरी जीवा है लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ. मेरा नाक है लेकिन मैं कुछ सूंघ नहीं सकता हूँ. मतलब द कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ विच वी आर अलाइव इज माई इनर सेल्फ. ये हुआ आत्मा. और जो अध्या फाउंडेशन फर्स्ट, उसको एक्चुअली कहा जाता है फर्स्ट है, जो फर्स्ट इज ऑलवेज द फाउंडेशन. तो उसके बगैर मैं हूं ही नहीं. तो जिसके बगैर मैं नहीं हूं, मैं रह के भी मैं नहीं हूं, दैट इज अध्यात्म. तो उसका, उसकी जानकारी यदि ना हो तो जीवन जी के क्या लाभ. तो उसका जानना जरूरी है कि मैं क्या हूं, हु एम आई. एक सवाल, सिंपल सा सवाल है, मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है. हम लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हो, मैं कहूंगा मैं सुरेश सुब्रमण्यम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये फलाना करता हूं, डिमका, ये मेरा विजिटिंग कार्ड हुआ. लेकिन ये मैं नहीं हूं. मैं इसके अंदर हूं. उसको जानने के लिए अगर मैंने चेष्टा ही नहीं की तो इस जीवन का क्या लाभ. तो दिस इज अध्यात्म मेरे हिसाब से.
1: बहुत बहुत सुंदर सुरेश सर. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेरे मन के ही सारी बातें कह रहे हैं. ऐसा लग रहा है आप सिर्फ मेरे लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी कसम. द वेरी फर्स्ट थिंग, जितना मैं समझा था, जितने भी मैंने लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को सुना, जैसे मीना मैम ऑफकोर्स, संजीवनी जी हैं, बहुत सारे लोगों को सुना मैंने, तो टाइम एंड अगेन अध्यात्म की जो डेफिनेशन निकल निकल के आ रही थी वो यही थी कि अपनी आत्मा का अध्ययन, वी नीड टू यू नो लर्न अबाउट अवर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद बात करें ना। तो वही चीज आपने बहुत खूबसूरती से कुछ अलग शब्दों में हमें बताई, लेकिन मुद्दा यही है कि हम अपने आप को तो पहचाने। सेकंड, बहुत बहुत ही मजेदार बात कही आपको आपने, जिस वजह से मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूं एंड आई एम हाईली हाईली इंप्रेस्ड। सर, काफी समय पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, द आई फैक्टर, वैन मूडी एक प्रीचर है, उन्होंने ये बुक लिखी थी, द आई फैक्टर। मैं इस बुक के टाइटल से अट्रैक्ट हो गया था। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ये आई फैक्टर क्या चीज है, और जाहिर सी बात है आपने जो बात कही ना प्रिसाइसली, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड उसमें ये चीज लिखी हुई थी, और उसके बाद मैंने उसको अपनाया। सालों साल गुजर चुके हैं, मैं लोगों को छेड़ने के लिए पूछता भी हूं, लेकिन आज आप में मुझे पहला व्यक्ति मिला है जिसको एक्चुअली उसका मतलब पता है। वो ये कि जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो, तो आप बोलते हो कि आप सुरेश सुब्रमण्यम साहब हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं किसी से भी पूछता हूं कि आप कौन हो, तो वो कहते हैं मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं आर्मी पर्सनल हूं, मैं पुलिस वाला हूं। मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई साहब ये वो काम है जो आप करते हो, दिस इज आपने इसको बहुत खूबसूरती से कहा कि दैट इज माय विजिटिंग कार्ड, ये वो काम है जो आप करते हो, एक्चुअली आप कौन हो?
0: करेक्ट।
1: तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने काम को ही अपना समझ बैठते हैं।
0: सही बात है, सही बात है। लोगों में यही यही एक गलत क्या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा, तो मैं कौन हूं, अभी इसमें दो फ्रेजेस के साथ में, इंग्लिश के फ्रेजेस के साथ में आपको इसकी इसका इसका एक, एक कुछ रिलेट कर पाऊंगा मैं। इफ यू से आई थिंक सो आई एम, आई थिंक सो आई एम, अभी इसको रिवर्स कीजिए, आई एम सो आई थिंक।
1: ओके,
0: थिंकिंग इज एन एबिलिटी, मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, मतलब वैसे प्राणी है और उसमें बुद्धि है, तो बुद्धि के हिसाब से वो सोच सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, ये सोच सकता है। लेकिन मैन इस वो है, तो आई एम सो आई थिंक, मैं हूं तभी तो मैं सोच पाता हूं। क्या मैं सोचने की वजह से मैं हूं? अक्सर लोगों में यही धारणा, ये सोचते हैं, जब भी आप किसी को पूछते हैं कि आप कौन हो, तो ये सोचते हैं कि मैं कौन हूं। अच्छा, मैं सोएंसो का बेटा हूं, अच्छा मैं सोएंसो का भाई हूं, अच्छा मैं सोएंसो काम करता हूं, अच्छा मैं सोएंसो मैंने काम पढ़ाई की है। दे आर ऑल यूर एक्सटेंशंस, दे आर नॉट यू।
1: अमेजिंग, ये बिल्कुल ही एक नई बात आपने बताई सर। देखो दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझ लीजिएगा जो सुब्रमण्यम सार साहब ने बताई है।
0: यू डोंट, आप मुझे आराम से सुरेश जी कहिए, क्योंकि सुब्रमण्यम इज माय फादर्स नेम।
1: ओह ओके, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू योर फादर ऑफ कोर्स सुरेश जी,
0: एब्सोल्युटली।
1: हम सोचते नहीं है कि हम क्या हैं, हम हैं इसलिए हम सोचते हैं। वाह, क्या बात कही, बहुत खूब। चलिए सुरेश जी, बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुन के अब मैं वापस आता हूं आपके पास।
0: जरूर जरूर जरूर, मैं भी एंजॉय करूंगा।
1: तो दोस्तों, हम भजन पेश करते हैं जो हमारे ही मेहमान सुरेश सर ने ही गाया।